0: ये जो जीवन की लय है सब कुछ पहले से ही तय है, इसलिए जय रघुनंदन जय सियाराम।
1: श्री रामचंद्र आशीष
0: पारिजात, तुम्हें प्रणाम। आप सुन रहे हैं समय।

जय रघुनंदन, जय सिया राम। आप सुन रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रेडियो का ये खास प्रोग्राम हमारे संग संगीता माल्या दुबई से। और जब राम जी

आप सुन रहे हैं पायो जीवनी राम रतन मोहन पायो प्रोग्राम राम रेडियो से डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये राम रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान। आज की पायलट सिंगर

अद्भुत अनुपम छवि श्रीराम की और अपने शब्दों से अपनी आवाज से

ऐसा ही सुख हमें मिला है इस प्रोग्राम को सुन के संगीता जी। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। बहुत आभार इस प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट को साथ।

0: डिजिटल वॉइसवर राम रेडियो का विशेष आयोजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
1: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और स्वयं।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर

यमुना तटटीले रेतीले घास फूस का घर डंडे पर गोबर से लीपी आंगन में तुलसी का बिरवा घंटी स्वर माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले आओ मन की गांठे खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठे खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्ति में प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जागो शंभू।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहां भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जपले।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरूर सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत

ने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय।

0: वाह संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मोन्द्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्ते।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमय प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ गया।
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा?
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
1: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
4: तवा बुधी रहा हूं जयपुर रेडियो ते।

0: जो सुरों से बंधा, जिसमें दोस्ती परवान चढ़ी और दिल खुद ब खुद करीब आ गए। ये वो रास्ता है दोस्तों, जिसकी मंजिल का पता किसी को नहीं था, पर हर कदम पर ऐसा लगा जैसे मेरी मंजिल यही है, इसी पल में है। और जब हर मोड़ पर मंजिल का एहसास हो तो वो राह मंजिल से भी खूबसूरत हो जाती है।
1: किसी ने क्या
0: आपने महसूस किया होगा ना, ये भी
1: ईश्वर से कुछ मांगे नहीं,
0: और यही है आज का हमारा शो।
1: निकटता बढ़,
0: दिल
1: सब कुछ आपको बिना मांगे ही मिलने लग जाएगा। जब हम ईश्वर के समीप हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं भी स्वतः शांत हो जाती हैं और मन को एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है। ईश्वर के सान्निध्य में रहकर व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करना सीख जाता है। जब मनुष्य का विश्वास ईश्वर पर दृढ़ होता है तो उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती और वह वर्तमान में आनंदित रहना सीख जाता है। ईश्वर की कृपा से जीवन की हर कठिनाई सरल बन जाती है और हर मार्ग पर प्रकाश फैलने लगता है। जो व्यक्ति प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में हमने जाना कि मनुष्य का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वे कौन सी दिव्य विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में शांति एवं संतोष पा सकता है। अब श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि मनुष्य के कर्म, भोजन, यज्ञ, तप और ज्ञान इत्यादि को किस प्रकार 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया गया है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ और तप मनुष्य के लिए हितकारी एवं उचित होते हैं और कौन से उसके लिए अनुकूल नहीं होते। तो चलिए मित्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की दिव्य शिक्षाओं की इस अलौकिक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। मित्रों, आपको याद होगा कि 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी और यह भी बताया था कि किस प्रकार ये 3 गुण मनुष्य के विचार, व्यवहार और कर्मों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वहीं 16वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, मित्र और शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य काम, क्रोध और लोभ जैसे विनाशकारी दोषों का त्याग कर देता है, तभी उसके जीवन में सच्चे कर्म, ध्यान, चिंतन और साधना का आरंभ होता है। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक भी अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं शिक्षाओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो। श्रद्धा मनुष्य की मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य हिस्सा है, परंतु मन की प्रवृत्ति और भीतर विद्यमान गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व, विचार और जीवन भी बन जाता है। उसकी श्रद्धा ही उसकी जीवन शैली, कर्म पद्धति और आत्मिक विकास का निर्धारण करती है। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धायान्विता, तेषा निष्ठा तू का कृष्ण सत्तमा हो रजस्तमा, अर्थात हे कृष्ण, वे लोग जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हुए भी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ और यज्ञ तप करते हैं, उनका क्या होता है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक होती है या राजसिक अथवा तामसिक? अर्जुन यह भी स्पष्ट करते हैं कि हे भगवान, आपने पिछले अध्याय में कहा था कि जब मनुष्य काम, क्रोध और लोभ जैसे दोषों को त्याग देता है तभी सच्चा कर्म प्रारंभ होता है, किंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं, ईश्वर में विश्वास भी करते हैं, परंतु वे शास्त्रों में बताए गए नियमों और विधियों का पालन नहीं करते। वे अपनी इच्छा से अपने मन के अनुसार पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? उनका मार्ग कौन सा है? क्या उन्हें सात्विक कहा जा सकता है या वे राजसिक और तामसिक कहलाते हैं? शास्त्र विधि का अर्थ है वह नियम और अनुशासन जो वेद, उपनिषद, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। जो व्यक्ति इन विधियों की अनदेखी करके केवल अपनी कल्पना से पूजा करता है उसका भाव तो श्रद्धापूर्ण होता है, लेकिन उसकी दिशा सही नहीं होती। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रुणु। अर्थात हे अर्जुन, प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति के अनुसार श्रद्धा धारण करता है। यह श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब तुम मुझसे इनका विस्तार से वर्णन सुनो। भगवान आगे समझाते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसकी आंतरिक प्रकृति और मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार ही होती है। कोई भी मनुष्य श्रद्धा विहीन नहीं होता, लेकिन जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही बन जाती है। जो सात्विक स्वभाव का होता है उसकी श्रद्धा भी सात्विक होती है, वह शांत, शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित होती है। जो राजसिक स्वभाव का होता है उसकी श्रद्धा भोग, यश और सफलता की इच्छा से प्रेरित होती है। वहीं जो तामसिक स्वभाव का होता है उसकी श्रद्धा अंधविश्वास, भय और हिंसा से युक्त होती है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस योग में वास्तव में एक ही क्रिया है, आराधना, ध्यान और साधना। किंतु जो अविवेकी लोग होते हैं, जिनका विवेक नष्ट हो चुका होता है, जो अपनी बुद्धि में अनेक प्रकार की भ्रांतियां और मिथ्या धारणाएं पाल लेते हैं, वे इस एक साधना को छोड़कर अनगिनत बाहरी और दिखावटी क्रियाओं का विस्तार करते चले जाते हैं। वे इन आडंबरपूर्ण क्रियाओं को ही धर्म मान बैठते हैं और उनका प्रदर्शन भी करते रहते हैं। ऐसी दिखावटी बातें जब दूसरों तक पहुंचती हैं तो उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और अंततः ऐसा व्यक्ति न स्वयं कुछ पा पाता है न दूसरों को कुछ दे पाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को यह गूढ़ रहस्य समझाना चाहते हैं कि मनुष्य की जो श्रद्धा होती है वह उसकी आदतों, संस्कारों और मानसिक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती है। यह श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है, जैसे उसके विचार और जीवन जीने की शैली होती है, वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। व्यक्ति का मन और उसका विश्वास ही उसे देवतुल्य, असुरतुल्य या प्रेततुल्य बना देते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सात्विक स्वभाव वाले लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, उनका मन ईश्वर, धर्म, करुणा और लोक मंगल की ओर प्रवृत्त होता है। वे सेवा, दया और करुणा में आनंद अनुभव करते हैं। राजसिक स्वभाव वाले लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, उनका झुकाव भोग, शक्ति, यश और वैभव की ओर होता है। वे पूजा भी इसलिए करते हैं कि उन्हें धन, प्रसिद्धि या सांसारिक सफलता प्राप्त हो सके। तमसिक स्वभाव वाले लोग भूत प्रेत पिशाच और अंधकारमय शक्तियों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मन भय मोह आलस्य और क्रोध से ग्रस्त होता है। भगवान यह भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों से दूर रहकर केवल अपने मन की प्रेरणा से कठिन और कठोर निर्णय लेते हैं तथा हर प्रकार के कर्म को ही तप समझकर करते हैं, वे भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी श्रद्धा विवेक और शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन से रहित होती है। सच्चा तप तभी सार्थक होता है जब वह शुद्ध भाव शास्त्र ज्ञान और निस्वार्थ सेवा से युक्त हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भोजन को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं और बताते हैं कि भोजन भी हमारी मानसिक वृत्ति और जीवन शैली को प्रभावित करता है। लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भोजन का चयन करते हैं। सात्विक भोजन, सात्विक स्वभाव वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु बल सत्वगुण स्वास्थ्य प्रसन्नता और संतोष की वृद्धि होती है। ऐसा भोजन रसीला सरस पौष्टिक स्वच्छ और प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होता है, जैसे ताजे फल सब्जियां दूध घी अनाज आदि। राजसिक भोजन अत्यधिक कड़वे खट्टे नमकीन गरम तीखे शुष्क और मिर्च युक्त दाहकारक व्यंजन राजसिक प्रवृत्ति वाले लोगों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोजन से शरीर में पीड़ा उत्तेजना बेचैनी दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। तामसिक भोजन अधिक पका हुआ बासी सड़ा गला प्रदूषित बेमौसम और अशुद्ध भोजन तमसिक स्वभाव वाले लोगों को भाता है। ऐसा भोजन शरीर को जड़ता मन को आलस्य और आत्मा को अज्ञान की ओर ले जाता है। भोजन के बाद भगवान यज्ञ के विषय पर आते हैं और यह बताते हैं कि प्रकृति के इन तीनों गुणों के प्रभाव से यज्ञ भी तीन प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ जो शास्त्र सम्मत नियमों से निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। राजसिक यज्ञ जो केवल दिखावे या फल की कामना से किए जाते हैं। और तामसिक यज्ञ जो नियमों को त्याग कर अज्ञानवश या दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु किए जाते हैं। इस अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण तपस्या और दान के विषय में विस्तार से बताते हैं। वे पहले शरीर वाणी और मन के तप की व्याख्या करते हैं और फिर दान के तीन प्रकारों पर चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार और फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्तव्य भाव से किया जाता है वह सात्विक यज्ञ होता है। जो यज्ञ केवल फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है वह राजस यज्ञ, और जो यज्ञ शास्त्र विधि के विपरीत बिना दान व श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए किया जाता है वह तामस यज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार जो तप फल की इच्छा से रहित होकर आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। जो तप किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति सम्मान या यश की इच्छा से किया जाता है वह राजस तप, और जो तप किसी को हानि पहुंचाने या केवल शरीर को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तामस तप कहलाता है। दान के संदर्भ में भगवान बताते हैं कि जो दान किसी भी प्रकार का श्रेय लिए बिना केवल कर्तव्य समझकर और योग्य व्यक्ति को उचित समय व स्थान पर श्रद्धा सहित दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। जैसे भूखे को भोजन कराना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना या अकाल ग्रस्त क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान फल की आशा प्रसिद्धि या स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से या बदले में उपकार पाने की भावना से दिया जाता है वह राजस दान, और जो दान बिना सम्मान के अपमान पूर्वक बलपूर्वक या किसी अयोग्य को दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जब यज्ञ तप और दान श्रद्धा तथा निष्काम भाव से केवल जगत कल्याण के लिए किए जाते हैं तभी वे मनुष्य को संसार की माया से मुक्त कर मुझे प्राप्त कराते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणों से भी आगे जाकर ओम तत्सत इन तीन दिव्य शब्दों की महत्ता बताते हैं जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। ये तीनों शब्द सभी वैदिक यज्ञों, तपों और दानों की शुद्धता, दिव्यता और पवित्रता को दर्शाते हैं। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार, सर्वव्यापी और शाश्वत रूप की अभिव्यक्ति है। तत् शब्दांश का प्रयोग उन सभी कर्मों, यज्ञों और तपों के लिए होता है जो परमपिता परमात्मा को समर्पित भाव से किए जाते हैं, और सत् शब्दांश का तात्पर्य है सनातन भगवान, सत्य तथा धर्माचरण। जब ये तीनों शब्दांश ओम तत् सत् एक साथ उच्चारित किए जाते हैं तो वे मनुष्य को अलौकिकता, परम सत्य और ईश्वरीय चेतना की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ, तप या दान श्रद्धा के बिना केवल दिखावे या मजबूरी से किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। ऐसे कर्म न तो इस लोक में फल देते हैं और न ही परलोक में, वे व्यर्थ हो जाते हैं। मित्रों, इस अध्याय में आपने जाना कि हर कर्म के तीन प्रकार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कर्म से नहीं बल्कि उस कर्म के पीछे की भावना और उद्देश्य से निर्धारित होता है। सात्विक कर्म सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं जबकि तामसिक कर्म सबसे अधम। सात्विक कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूर्ण मनोनिवेश और स्थिर चित्त के साथ केवल आत्मशुद्धि और लोक कल्याण के लिए करना, बिना परिणाम की चिंता किए और बिना उसका श्रेय स्वयं को दिए। लेकिन आज के समय में हम प्रायः अपने कार्य केवल व्यक्तिगत लक्ष्य, लाभ या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम परिश्रम तो करते हैं परंतु मन में पहले से ही परिणाम को लेकर चिंता और भय पाल लेते हैं। इसलिए मित्रों, आप भी प्रयास करें कि सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर बने रहें। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्द ही हम मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय की इसी प्रकार आसान और रोचक व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सदैव ईश्वर की भक्ति में रमे रहें। जय श्री राधे कृष्णा।
2: संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण। भक्तों, जब संसार में धर्म कमजोर पड़ने लगता है, जब मनुष्य सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली हो जाता है, तब केवल एक ही चीज उसे बचा सकती है, भगवान की कथा। और ऐसी ही अमर कथा है श्रीमद् भागवत पुराण। आज आप सुनने जा रहे हैं भागवत पुराण का प्रथम स्कंध, वो स्कंध जहां से भगवान की नहीं मनुष्य की आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ये कथा शुरू होती है नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में। हजारों ऋषि एकत्र हैं, उनके चेहरे पर चिंता है, उनके हृदय में एक ही प्रश्न कलयुग में जहां लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, वहां मनुष्य का उद्धार कैसे होगा। तभी वहां आते हैं महान कथावाचक सूद गोस्वामी। ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे सूद जी, आपने जो सबसे पवित्र, सबसे सरल, सबसे कल्याणकारी ज्ञान सुना है वही हमें सुनाइए। और यहीं से श्रीमद् भागवत पुराण की अमरधारा बहने लगती है। अब कथा पहुंचती है महर्षि वेदव्यास के आश्रम में, व्यास जी जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, अनेक पुराण लिखे, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। क्यों? क्योंकि ज्ञान बहुत था, कर्म भी था, लेकिन भक्ति नहीं थी। तभी वहां आते हैं देवर्षि नारद। नारद जी व्यास से कहते हैं, आपने धर्म सिखाया, कर्म का मार्ग बताया, ज्ञान समझाया, लेकिन भगवान की प्रेममयी कथा नहीं सुनाई, इसीलिए आपका हृदय आज भी खाली है। ये शब्द व्यास जी के हृदय में उतर जाते हैं। व्यास जी ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में वे एक दिव्य दृश्य देखते हैं, भगवान श्री हरि और उनके पीछे खड़ी माया और जीवात्मा। तभी व्यास जी समझ जाते हैं, जीव दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने भगवान को भुला दिया है और उसी क्षण श्रीमद् भागवत पुराण का जन्म होता है। एक ऐसा ग्रंथ जो डर नहीं देता, जो दंड नहीं देता, बल्कि प्रेम से भगवान तक पहुंचाता है। अब कथा आती है एक महान राजा की। राजा परीक्षित, धर्मात्मा, न्यायप्रिय सत्य के पक्ष में खड़ा रहने वाला राजा। लेकिन एक दिन अज्ञानवश वे एक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल देते हैं और उसी भूल का परिणाम श्राप मिलता है कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के दंश से उनकी मृत्यु होगी। लेकिन राजा परीक्षित डरते नहीं, वे सिंहासन छोड़ देते हैं, राज्य त्याग देते हैं और गंगा तट पर बैठ जाते हैं। उनका प्रश्न केवल एक होता है कि अब जब मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तभी वहां आते हैं महान ब्रह्मज्ञानी सुखदेव। राजा परीक्षित विनम्रता से पूछते हैं कि हे महात्मन, मृत्यु सामने हो तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है। सुखदेव उत्तर देते हैं, भगवान की कथा सुनो, उनका नाम स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, और वही कथा है श्रीमद् भागवत पुराण। यही प्रथम स्कंद हमें सिखाता है। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब मन भगवान में लीन हो जाता है। अब भागवत का संदेश सुनिए। कर्म बिना भक्ति अधूरा है, ज्ञान बिना प्रेम अहंकार बन जाता है, और कथा आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला सेतु है। कलयुग में ना यज्ञ संभव है, ना कठोर तप, बस एक ही मार्ग है, भगवान का नाम और उनकी कथा। आज के मनुष्य के लिए भागवत का स्पष्ट संदेश है। हर दिन थोड़ी देर भगवान की कथा सुनो, अहंकार छोड़ो, जिज्ञासा रखो और मृत्यु से नहीं अज्ञान से डरो। कल्पना कीजिए, आज नहीं कल नहीं बल्कि ठीक 7 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। कोई उपाय नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चमत्कार नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि कैसे बचा जाए, अब सवाल यह है कि अब जिया कैसे जाए। राजा परीक्षित आज राजमहल में नहीं है, वे बैठे हैं मां गंगा के तट पर। ना मुकुट, ना सिंहासन, ना सेना, एक राजा, लेकिन पूरी तरह अकेला, जिसके सामने हजारों सिर झुकते थे, आज वो स्वयं जीवन के सामने सिर झुकाए बैठा है। चारों ओर ऋषि है, मुनि है, ज्ञानी है, लेकिन वातावरण में कोई शोर नहीं है, क्योंकि जहां मृत्यु बैठी हो वहां शब्द अपने आप चुप हो जाते हैं। राजा परीक्षित सोचते हैं, मैंने युद्ध देखे, राज्य चलाया, धर्म निभाया, मैंने स्वयं भगवान कृष्ण को देखा, लेकिन क्या मैंने जीना सीखा। जब मृत्यु सामने आती है तो उपलब्धियां बोलना बंद कर देती है, तब केवल चेतना बोलती है, और तभी राजा परीक्षित वो प्रश्न पूछते हैं जिससे भागवत प्रकट होती है। हे मुनिवर सुखदेव, मेरे पास अब समय बहुत कम है, बताइए मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। यह प्रश्न किसी राजा का नहीं है, यह प्रश्न हर उस इंसान का है जो जानता है कि एक दिन सब समाप्त होगा। सुखदेव जी धीरे से बोलते हैं, राजन, जिसने जीवन भर भगवान को टाल दिया वो मृत्यु के समय किसी भी उपाय से शांत नहीं हो सकता, और जिसने जीते जी भगवान को पकड़ लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक क्षण है। सच ये है, मृत्यु से डर नहीं लगता, डर लगता है अधूरेपन से, डर लगता है इस बात से कि मैं सब कुछ होते हुए भी खाली रह गया। इसीलिए आज का मनुष्य हर चीज की तैयारी करता है, पैसा, घर, भविष्य, लेकिन अंतिम दिन की नहीं। इसीलिए है राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय डर से मुक्त होना चाहता है उसे चाहिए भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम स्मरण करना और मन को इस संसार से हटाकर ईश्वर में स्थिर करना, क्योंकि मृत्यु के समय जो स्मरण में होता है अगला जीवन उसी दिशा में जाता है। भागवत मृत्यु की कथा नहीं है, ये मृत्यु से पहले जागने की प्रक्रिया है, और स्कंद दूसरे का पहला अध्याय यहीं से आपको जगाना शुरू करता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर भागवत इतनी शक्तिशाली है तो हर कोई इसे सुनकर बदल क्यों नहीं जाता। इसी रहस्य को सुखदेव जी अगले अध्याय में खोलने वाले हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न हवा में नहीं खुला था, वो प्रश्न हर ऋषि के हृदय में गूंज रहा था, लेकिन सुखदेव जी तुरंत उत्तर नहीं देते। वे पहले राजा को देखते हैं और फिर सुनने वालों को। और तभी एक बहुत कड़वा सत्य कहते हैं, राजन हर कोई भागवत सुनने योग्य नहीं होता। ये सुनकर सभा चौंक जाती है क्योंकि भागवत तो सबके लिए है, फिर ये कैसी बात। सुखदेव जी धीरे धीरे समझाते हैं, भागवत कान से नहीं सुनी जाती, भागवत मन से सुनी जाती है। और जिस मन में अहंकार भरा हो, जिस मन में मैं जानता हूं भरा हो, वहां भागवत प्रवेश नहीं करती। राजन अगर मन भरा हुआ है तो भगवान कहां आएंगे। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा यही भूल करता है, वो सुनता है लेकिन स्वीकार नहीं करता, वो कथा देखता है लेकिन खुद को नहीं देखता। इसीलिए भागवत सब सुनते हैं पर बदलते बहुत कम है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भागवत सुनने की पहली योग्यता है विनम्रता, ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता, मैं अधूरा हूं और मुझे मार्गदर्शन चाहिए। दूसरी योग्यता है जिज्ञासा, मन में सवाल जीवित हो, केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सत्य की भूख हो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता श्रद्धा, अंधी श्रद्धा नहीं बल्कि अनुभव करने की तैयारी। राजन जिस दिन मनुष्य ये सोचकर भागवत सुनता है कि मैं क्या सीख सकता हूं, उस दिन भागवत उसके भीतर जीवित हो जाती है। लेकिन जिस दिन वो ये सोचकर सुनता है कि देखते हैं इसमें क्या खास है, उस दिन भागवत केवल शब्द बनकर रह जाती है। आज का मनुष्य सब कुछ तेजी से चाहता है, तेज ज्ञान, तेज परिणाम, तेज मुक्ति, लेकिन भागवत धीमी प्रक्रिया है।

अब मैं तुम्हें भगवान का वो स्वरूप बताऊंगा जिसे जानकर अहंकार अपने आप झुक जाता है। अगले अध्याय में भगवान मूर्ति नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड बनकर प्रकट होंगे। सुखदेव जी कुछ क्षण मौन रहते हैं, जैसे जो कहने वाले हैं वो शब्दों से बड़ा है। फिर धीरे से कहते हैं, राजन अब तक तुमने भगवान को मूर्ति समझा होगा, नाम रूप आकार में बांधा होगा, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देगा। राजन भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान यही है। इस समय भी जिस आकाश को तुम ऊपर देखते हो वही भगवान का मुख है, जिस वायु में तुम सांस लेते हो वही भगवान का प्राण है, जिस सूर्य की रोशनी तुम्हारी आंखें खोलती है वो भगवान की दृष्टि है, और जो चंद्रमा तुम्हारे मन को शांत करता है वो भगवान का मन है। राजन जिस पृथ्वी पर तुम बैठे हो वही भगवान के चरण है, जिस दिशा में तुम देख रहे हो वही भगवान का विस्तार है। अब ध्यान से सुनो, ये ब्रह्मांड भगवान में नहीं है, भगवान ही ये ब्रह्मांड है। जिसमें तुम छिपना चाहते हो, जिससे तुम बचना चाहते हो, वही भगवान का शरीर है। राजन जब साधक इस विराट स्वरूप का ध्यान करता है तो भगवान को देखने के लिए नहीं बल्कि अपने मैं को गलाने के लिए करता है, क्योंकि जब तुम्हें ये दिखने लगे कि मैं छोटा हूं और ये सृष्टि असीम है तो अहंकार अपने आप झुकने लगता है। राजन तुम कहते हो मैं करता हूं, लेकिन जब सूर्य उगता है तो क्या तुम्हारी अनुमति लेता है? जब मृत्यु आती है तो क्या वह तुमसे पूछती है? ये विराट स्वरूप यही सिखाता है कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम प्रवाह में बह रहे हो, और जिस दिन मनुष्य इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है उस दिन उसका डर खत्म होने लगता है। राजन जो व्यक्ति इस विराट स्वरूप का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है वो संकीर्ण शरीर में नहीं जाता, वो विस्तार में विलीन होता है। इसीलिए ये ध्यान डरावना नहीं है, ये मुक्त करने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, विराट स्वरूप को केवल कल्पना मत समझना, ये चेतना की प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिससे मनुष्य छोटा सोचने से मुक्त होता है। राजन अब तक तुमने सुना भगवान कैसे संपूर्ण सृष्टि है, अब अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा जब यही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले कौन प्रकट होता है और क्यों सृष्टि शोर से नहीं मौन से शुरू होती है। सुखदेव जी धीरे से बोलते हैं, राजन अब तक तुमने जाना भगवान का विराट स्वरूप, अब मैं तुम्हें उस क्षण तक ले चलता हूं जहां कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना प्रकाश, ना अंधकार, केवल एक अनंत शांति। उस शांति में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। ये नींद थकान की नहीं थी, ये चेतना की पूर्णता थी। राजन जब मनुष्य थककर सोता है तो वो अचेत होता है, लेकिन जब भगवान योग निद्रा में होते हैं तो वे सबसे अधिक सचेत होते हैं। उस मौन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, और फिर भी सब कुछ उत्पन्न होने वाला था। राजन भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, धीरे धीरे शांत स्थिर, कोई शोर नहीं, कोई विस्फोट नहीं। उस कमल पर एक चेतना जागी, वही थे ब्रह्मा। राजन ध्यान से समझो, सृष्टि किसी संघर्ष से पैदा नहीं हुई, सृष्टि किसी युद्ध से नहीं निकली, सृष्टि मौन से उत्पन्न हुई। आज का मनुष्य सब कुछ शोर से बनाना चाहता है, नाम, पहचान, सफलता, लेकिन भगवान दिखाते हैं जो सबसे बड़ा है वो सबसे शांत होता है। ब्रह्मा कमल पर बैठे हैं, चारों ओर अनंत शून्य, ना ऊपर ना नीचे ना दिशा ना संकेत। राजन यही वो क्षण है जहां ज्ञान भी डर जाता है, क्योंकि जहां कोई आधार ना हो वहां अहंकार टिक नहीं पाता। ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता, और तभी उन्हें ये समझ आने लगता है मैं कुछ नहीं जानता। राजन यही स्वीकार ज्ञान की शुरुआत है। जब तक मनुष्य ये कहता रहता है मैं जानता हूं, तब तक वो सीख नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा से कुछ नहीं कहते, कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं, क्योंकि सृष्टि आदेश से नहीं समझ से रचती है। राजन अब अगले अध्याय में तुम देखोगे जब सृष्टिकर्ता स्वयं भ्रमित हो जाता है तब भगवान किस एक शब्द से उसे दिशा देते हैं, और वही शब्द मनुष्य को भी अंधकार से बाहर लाता है। ब्रह्मा अब भी

कमल पर बैठे हैं। चारों ओर असीम शून्य ना, कोई दिशा ना, कोई संकेत ना, कोई सहारा। राजन, यही वो क्षण है जहां सृष्टिकर्ता भी डर जाता है, क्योंकि जिसने अभी अभी जन्म लिया हो और जिसके सामने अनंत फैला हो, उसके लिए ज्ञान भी काफी नहीं होता। ब्रह्मा सोचते हैं, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं और अब मुझे क्या करना चाहिए? राजन, ये प्रश्न केवल ब्रह्मा का नहीं है, ये वही प्रश्न है जो हर मनुष्य अकेलेपन में अपने आप से पूछता है, जब चारों ओर भीड़ हो लेकिन भीतर खालीपन हो। तब यही प्रश्न उठता है। ब्रह्मा कमल की नाल के भीतर झांकते हैं, नीचे उतरते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ना आदि मिलता है ना अंत। राजन, यहां सुखदेव एक गहरी बात कहते हैं, जब तक मनुष्य बाहर उत्तर ढूंढता है तब तक वो भटकता रहता है, क्योंकि सृष्टि का रहस्य बाहर नहीं भीतर छुपा होता है। ब्रह्मा थक जाते हैं और पहली बार वे ये स्वीकार करते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। राजन, यही क्षण है जहां अहंकार टूटता है, और जैसे ही अहंकार टूटता है वैसे ही एक ध्वनि प्रकट होती है, ना कोई आवाज ना कोई शब्दों की गूंज, बस एक स्पष्ट अनुभूति। तब राजन, ये कोई आदेश नहीं था, ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक दिशा थी। तब का अर्थ ये नहीं कि शरीर को कष्ट दिया जाए, तब का अर्थ है मन को स्थिर करना, इच्छाओं को शांत करना और चेतना को गहरा करना। ब्रह्मा समझ जाते हैं, जब तक मैं शांत नहीं होता तब तक सृष्टि प्रकट नहीं होगी, और वे तप में लीन हो जाते हैं। राजन, ध्यान रखो, भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते, वे पहले मनुष्य को तैयार करते हैं, क्योंकि अधके मन को सत्य दे दिया जाए तो वो उसे भी भ्रम बना लेता है। तप के साथ साथ ब्रह्मा का अंतर्मन शुद्ध होने लगता है, और तभी उसी मौन में, उसी शांति में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन आंखों के सामने नहीं, चेतना के भीतर। राजन, यही नियम मनुष्य के लिए भी है, जब तक मन शोर करता है भगवान मौन रहते हैं, और जब मन मौन होता है भगवान बोलते हैं। अब अगले अध्याय में तुम सुनोगे भगवान ब्रह्मा को क्या ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान कैसे पूरी सृष्टि का आधार बनता है। तब के उस गहन मौन में ब्रह्मा अब अकेले नहीं है, कुछ बदल चुका है, वही शून्य वही शांति, लेकिन अब डर नहीं है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो शून्य खाली नहीं लगता। राजन, तभी ब्रह्मा के भीतर एक प्रकाश जागता है, कोई रूप नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन स्पष्ट अनुभूति, भगवान अब निकट है। और उसी क्षण भगवान ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान शब्दों में नहीं था, ये सीधे चेतना में उतरा। राजन, भगवान कहते हैं, मैं ही सृष्टि से पहले था, मैं ही सृष्टि के समय हूं, और मैं ही सृष्टि के बाद रहूंगा। जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम नहीं देख पा रहे, सब मुझसे ही उत्पन्न है, और जो कुछ मुझसे अलग दिखाई देता है वो भ्रम है। राजन, यही भागवत का सबसे गहरा सत्य है। भगवान कहते हैं, मुझे तर्क से मत पकड़ो, मुझे कल्पना से मत बांधो, मुझे अनुभव करो, क्योंकि जहां अनुभव है वही मैं हूं। ब्रह्मा समझने लगते हैं, सृष्टि किसी योजना का परिणाम नहीं, ये चेतना का स्वाभाविक प्रसार है। राजन, भगवान आगे कहते हैं, भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, लेकिन जब दोनों एक साथ चलते हैं तब मुक्ति स्वाभाविक हो जाती है। ये सुनकर ब्रह्मा का अंतर्मन बाहर आता है, क्योंकि पहली बार उन्हें ये दिखता है कि वे अलग नहीं है, कि उनका अस्तित्व भगवान से जुड़ा हुआ है। राजन, यही ज्ञान मनुष्य को डर से मुक्त करता है, क्योंकि जो ये जान लेता है कि मैं अलग नहीं हूं, वो खोने से डरता नहीं। भगवान अंत में एक गहरी बात कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लेता है उसके लिए कर्म बंधन नहीं बनते, वे सेवा बन जाते हैं, और जो मुझे जीवन से हटा देता है उसके लिए कर्म भारी बोझ बन जाते हैं। देव जी बोले, राजन, ब्रह्मा जी ने इसी ज्ञान के आधार पर फिर से जगत की रचना की। उन्होंने समय का विभाजन किया, युगों की गणना की, और देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, लेकिन ये सब करते हुए भी वे हमेशा उस चतुश्लोकी भागवत के सार को अपने हृदय में धारण किए रहे। यही कारण है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के स्वामी होकर भी उसके मोह में नहीं बंधे।
सुखदेव जी ने परीक्षित को ध्यान की विधि समझाते हुए कहा, हे कुरुनंदन, यदि तुम उस निराकार तक नहीं पहुंच पा रहे तो भगवान के चरणों से ध्यान शुरू करो। पहले उनके चरणों का चिंतन करो, फिर उनकी जंघाओं का, फिर उनकी कटी का और अंत में उनके मुस्कुराते हुए मुखारविंद का। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, तुम्हें अनुभव होगा कि जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो वो तो तुम्हारे हृदय के आकाश में ही विराजमान है। परीक्षित अब पूरी तरह ध्यान मग्न थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सुखदेव जी के शब्द केवल कान से नहीं बल्कि सीधे उनकी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा की गति अब फिर से तेज होने लगी। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सृष्टि की ये प्रक्रिया बड़ी जटिल है। ब्रह्मा जी ने जब रचना शुरू की तो उन्होंने पहले अविद्या के 5 पर्व बनाए, फिर सनकादि ऋषियों को जन्म दिया। लेकिन सनकादि ऋषियों ने सृष्टि बढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि वे तो जन्म से ही विरक्त थे। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उस क्रोध से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। फिर स्वयंभुव मनु और शत्रुपा आए जिनसे मानव वंश चला। लेकिन समस्या तब आई जब पृथ्वी रसातल में समा गई। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल के गहन अंधकार में छुपा दिया। बिना आधार के सृष्टि कैसे चलती? ब्रह्मा जी फिर से चिंता में डूब गए। वे सोच रहे थे कि अब पृथ्वी को बाहर कौन लाएगा? क्या वो विराट पुरुष फिर से कोई अवतार लेगा? क्या इस अंधकार का अंत होगा? सुखदेव जी के शब्द अब उस महाशक्तिशाली वरा अवतार की ओर संकेत कर रहे थे, जिसके आने की आहट से पाताल का राजा हिरण्याक्ष भी कांपने वाला था। पृथ्वी डूब रही थी और पूरा ब्रह्मांड एक रक्षक की प्रतीक्षा कर रहा था। पृथ्वी रसातल की अथाह गहराइयों में समा चुकी थी और चारों ओर केवल प्रलयंकारी जल का सन्नाटा था। ब्रह्मा जी चिंता के सागर में डूबे थे, लेकिन इस महागाथा का एक सिरा हस्तिनापुर के उन गलियारों से भी जुड़ा है जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। सुखदेव जी बोले, राजन, जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के मोह और दुर्योधन के अहंकार ने सारी सीमाएं लांघ दी थी, तब महात्मा विदुर ने शांति का अंतिम प्रयास किया था। लेकिन जब दुर्योधन ने उन्हें दासी पुत्र कहकर अपमानित किया और महल से निकल जाने को कहा, तो विदुर जी ने बुरा नहीं माना। उन्होंने अपना धनुष द्वार पर रखा और इसे भगवान की इच्छा मानकर तीर्थाटन पर निकल गए। विदुर जी का ये त्याग ही उन्हें उस ज्ञान की ओर ले गया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी तरसते हैं। भ्रमण करते हुए विदुर जी की भेंट यमुना के तट पर भगवान के परम सखा उद्धव से हुई। वहां उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर चुके हैं। इस समाचार से विदुर जी का हृदय फट गया, लेकिन उद्धव ने उन्हें ढांढस बंधाया और बताया कि भगवान ने अंत समय में विदुर जी को याद किया था और मैत्रेय ऋषि को आदेश दिया था कि वे विदुर को तत्वज्ञान का उपदेश दें। इसी आज्ञा का पालन करते हुए विदुर जी हरिद्वार पहुंचे, जहां गंगा के पावन तट पर महर्षि मैत्रेय विराजमान थे। विदुर जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे ऋषिवर, संसार के लोग सुख के लिए कर्म करते हैं पर उन्हें केवल दुख ही मिलता है। कृपा कर मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मनुष्य शांति पा सके और मुझे उस आदि पुरुष के अवतारों की कथा सुनाए। मैत्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। सुनो, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तब उनके मानस पुत्रों, सनकादि ऋषियों और स्वयंभुव मनु ने तो अपना कार्य संभाल लिया, लेकिन पृथ्वी का कहीं पता नहीं था। हिरण्याक्ष नामक महाबली दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर रसातल के गहरे और गंदे जल में छुपा दिया था। ब्रह्मा जी व्याकुल होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। वे सोच रहे थे कि अब इस संकट से कौन उबारेगा। तभी एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र नाक से अचानक एक अंगूठे के आकार का नन्हा सा वराह सुअर प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह नन्हा जीव आकाश में बिजली की तरह बढ़ा और पल भर में एक विशाल पर्वत के समान विशाल हो गया। उसकी गर्जना से दसों दिशाएं कांप उठीं। आकाश में स्थित जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के ऋषि मुनि इस अद्भुत रूप को देखकर स्तुति करने लगे। वह वरा अवतार कोई साधारण जीव नहीं बल्कि साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु थे। उनकी देह वेद की ऋचाओं से बनी थी, उनके रोम कुश के समान थे और उनकी आंखें सूर्य के समान चमक रही थी। भगवान वराह ने एक बार फिर भयंकर गर्जना की और अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर प्रलय के जल में छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि जल दो भागों में विभक्त हो गया।
उन्होंने अपनी दिव्य नासिका से पृथ्वी की गंध को पहचाना और पाताल की अतल गहराइयों में उतरते चले गए। वहां उन्होंने देखा कि पृथ्वी असहाय भाव से जल के भीतर पड़ी है। भगवान ने अपने विशाल दांतों दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लिया और ऊपर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी वहां हिरण्याक्ष पहुंचा, कश्यप और दिति का वह पुत्र जिसे वरदान मिला था कि उसे कोई भी ज्ञात जीव नहीं मार पाएगा। अहंकार में अंधा था, उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और अब वो वरुण देव को चुनौती देकर लौट रहा था। हिरण्याक्ष ने जब देखा कि एक विशाल वराह उसकी चुराई हुई पृथ्वी को ले जा रहा है तो वो अट्टहास करने लगा। उसने ललकारते हुए कहा, अरे ओ जंगली पशु, रुक जा, ये पृथ्वी मेरी संपत्ति है, तू इसे कहां ले जा रहा है? तू देवताओं की माया है, आज मैं तेरा वध करके इस जल को तेरे रक्त से लाल कर दूंगा। भगवान वराह ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका पहला कर्तव्य पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था। वे निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते रहे जबकि हिरण्याक्ष अपनी गदा लेकर उन पर प्रहार करने की कोशिश करता रहा। जैसे ही भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर उसे उसकी कक्षा में स्थापित किया, वे हिरण्याक्ष की ओर मुड़े। समुद्र के भीतर एक ऐसा महायुद्ध छिड़ गया जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए। हिरण्याक्ष कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसके पास मायावी शक्तियां थी। उसने भगवान पर अपनी भारी गदा से प्रहार किया लेकिन भगवान वराह ने खेल खेल में ही उसे अपनी गदा से दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष का क्रोध सातवें आसमान पर था। उसने अपनी गदा फिर उठाई और भगवान के मस्तक पर प्रहार करना चाहा लेकिन भगवान ने उसे अपने पैर से ऐसे हटा दिया जैसे कोई हाथी किसी मच्छर को हटा देता है। हिरण्याक्ष ने अब अपनी माया का प्रयोग करना शुरू किया। आकाश में अचानक पत्थर बरसने लगे, चारों ओर घना अंधकार छा गया और भयंकर चक्रवात चलने लगे। असुर ने त्रिशूल से वार किया पर भगवान ने उसे अपनी दाढ़ों से पकड़कर तोड़ दिया। हिरण्याक्ष ने अब अपनी मुष्टिकाओं से प्रहार करना चाहा। उस समय भगवान की आंखों में वह तेज था जो प्रलय काल की अग्नि में होता है। भगवान ने असुर के साथ थोड़ा मनोरंजन करने के बाद उसके कान के नीचे अपनी हथेली से एक ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई और वह निष्प्राण होकर जल में गिर पड़ा। साक्षात लक्ष्मीपति के हाथों मृत्यु पाकर वह दैत्य भी मुक्त हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पृथ्वी माता ने अपने उद्धारक की स्तुति की। मैत्रेय जी बोले, विदुर, भगवान के इस वराह रूप ने न केवल पृथ्वी को बचाया बल्कि संसार को ये संदेश भी दिया कि जब भी अधर्म की शक्ति सत्य को दबाने की कोशिश करेगी, भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर उसका सहार करेंगे। हिरण्याक्ष के वध के बाद ब्रह्मा जी का कार्य सुगम हो गया। इसके बाद स्वयंभुव मनु ने अपनी दो पुत्रियों और तीन पुत्रों के माध्यम से वंश बढ़ाना शुरू किया। उन्हीं की एक पुत्री थी देवहूति। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें भगवान जैसा ही पुत्र प्राप्त हो सके। कर्दम ऋषि और देवहूति की ये कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। कर्दम जी ने अपनी तपस्या के बल पर एक दिव्य विमान बनाया था जिसमें बैठकर उन्होंने और देवहूति ने कई वर्षों तक गंधर्व लोकों का भ्रमण किया। लेकिन देवहूति का हृदय केवल सांसारिक सुखों में नहीं था, वह तो साक्षात भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती थी। समय आने पर भगवान विष्णु ने स्वयं देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। उनका नाम पड़ा कपिल। भगवान कपिल साक्षात ज्ञान के अवतार थे। उनके जन्म के समय आकाश से दिव्य दुंदुभियां बजी और ऋषियों ने उनका स्वागत किया। विदुर जी ने उत्सुकता से पूछा, हे मुने, साक्षात भगवान ने माता देवहूति को क्या उपदेश दिया? सांख्य शास्त्र क्या है जिसने माता को मोक्ष दिला दिया? मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, विदुर, कपिल मुनि ने अपनी माता को जो ज्ञान दिया वो इस संसार के बंधनों को काट देने वाली कुल्हाड़ी के समान है। उन्होंने बताया कि ये मन ही है जो बंधन का कारण है और यही मन मोक्ष का द्वार भी है। जब मन विषयों में लगा रहता है तो जीव दुखी होता है और जब वही मन ईश्वर में लग जाता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान कपिल का वो शांत और तेजस्वी मुखमंडल अब विदुर की आंखों के सामने तैरने लगा। माता देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा था, पुत्र, इस अंधेरे संसार में मेरा मन भटक रहा है, मुझे प्रकाश दिखाओ। कपिल मुनि के शब्द अब उस सांख्य योग की गहराइयों में उतरने वाले थे जहां आत्मा और प्रकृति का भेद स्पष्ट हो जाता है।
विदुर जी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे कि कैसे एक पुत्र ने अपनी माता को ही गुरु बनकर मोक्ष की राह दिखाई। कथा अब भक्ति और ज्ञान के उस शिखर पर पहुंचने वाली थी जहां से संसार बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। क्या देवहूति अपने ही पुत्र के चरणों में बैठकर उस परम सत्य को पा सकेंगी जो ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है? मैत्रेय जी की वाणी अब उस अलौकिक संवाद का अनावरण करने जा रही थी। मैत्रेय जी बोले, विदुर, बिंदु सरोवर के तट पर वह दृश्य अत्यंत अलौकिक था, जहां साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार कपिल मुनि अपनी माता देवहूति के सामने एक गुरु के रूप में विराजमान थे। कर्दम ऋषि ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुत्र प्राप्ति के बाद संन्यास ले लिया था और वे वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अब माता देवहूति अकेली थी, लेकिन उनके पास संसार की सबसे बड़ी निधि थी, उनके पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा का ज्ञान। देवहूति ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे प्रभु, मैं इस अविद्या रूपी अंधकार में भटक रही हूं। मेरा मन इन इंद्रियों और विषयों के जाल में फंसा हुआ है। आप ही वो सूर्य हैं जो मेरे अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे ये संसार रूपी भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। भगवान कपिल ने अपनी माता की व्याकुलता देखी और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहना शुरू किया, माता, जीव की मुक्ति और बंधन का एकमात्र कारण उसका मन है। जब ये मन सांसारिक गुणों और विषयों में आसक्त होता है, तब ये बंधन का कारण बनता है। लेकिन जब यही मन भगवान में अनन्य प्रेम के साथ लग जाता है, तो ये मोक्ष का द्वार खोल देता है। ज्ञान और वैराग्य दो ऐसी तलवारें हैं जिनसे मोह के जाल को काटा जा सकता है। कपिल मुनि ने सांख्य योग का गहन रहस्य समझाते हुए बताया कि ये सृष्टि 24 तत्वों से बनी है, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और एक मन। यही वह क्षेत्र है जहां जीव भटकता रहता है। लेकिन इन सबसे परे 25वां तत्व पुरुष, जो साक्षात ईश्वर है और इस प्रकृति का स्वामी है। कपिल देव की वाणी बिजली की तरह तीव्र थी। वे एक के बाद एक रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम। इन गुणों के प्रभाव में आकर ही जीव स्वयं को कर्ता मानने लगता है और कर्मों के फल में बंध जाता है। उन्होंने काल, समय की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि काल ही भगवान की वह शक्ति है जो बड़े बड़े ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है और फिर उन्हें लीन कर देती है। उन्होंने भक्ति के 9 प्रकारों का वर्णन किया, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। कपिल मुनि ने स्पष्ट किया कि जो भक्त मेरे अवतारों की कथाएं सुनता है, मेरा नाम जपता है और हर प्राणी में मेरा ही रूप देखता है, उसे योग की कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं स्वयं उसे संसार सागर से पार ले जाता हूँ। कथा की गति और तेज हुई जब कपिल मुनि ने जीव की उस भयंकर अवस्था का वर्णन किया जब वो माता के गर्भ में होता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा सा जीव माता के पेट में मलमूत्र के बीच पड़ा होता है, उसे भयंकर पीड़ा होती है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नग से बाहर निकालिए, मैं बाहर जाकर केवल आपका ही भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, माया का पर्दा उस पर गिर जाता है और वह फिर से उन्हीं खिलौनों और संबंधों में उलझ जाता है जिनसे वह छूटने की कसमें खा रहा था। ये चक्र अनंत है जब तक कि जीव को अपनी वास्तविक पहचान का बोध न हो जाए। माता देवहूति मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उनके भीतर का मोह धीरे धीरे गल रहा था। कपिल मुनि ने अंत में अष्टांग योग की विधि भी समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे यम, नियम, आसन और प्राणायाम के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है। उन्होंने भगवान के उस चतुर्भुज रूप का ध्यान करने को कहा जो कमल के समान कोमल चरणों वाला है, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जिसका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा शीतल है और जिसकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा है। उन्होंने कहा, माता, जब साधक का मन पूरी तरह भगवान के रूप में तल्लीन हो जाता है, तो उसे ये भी भान नहीं रहता कि उसका शरीर कहाँ है और वो क्या कर रहा है। वो अवस्था ही परमानंद की अवस्था है। माता देवहूति के हृदय में अब न कोई प्रश्न शेष था, न कोई इच्छा। उन्होंने अपने पुत्र के तेजस्वी मुख को देखा, जो ज्ञान का साक्षात पुंज था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके सामने बैठा ये बालक केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि वह संपूर्ण अस्तित्व है जिसकी वे वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी।
उनके भीतर एक अपूर्व शांति छा गई। बिंदु सरोवर का जल स्थिर हो गया था, पक्षियों का कलरव थम गया था।

और मंद पवन चलने लगी थी। देवहूति ने अपनी आंखें बंद कर ली और कपिल मुनि द्वारा बताए गए ध्यान के मार्ग पर चल पड़ी। उनका चित्त अब विषयों से पूरी तरह हटकर केवल और केवल उस परम पुरुष में समा गया था। उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकलने लगी। योग की अग्नि ने उनके संचित कर्मों को भस्म कर दिया। धीरे धीरे उनका शरीर गलने लगा, लेकिन ये मृत्यु नहीं थी, ये तो ईश्वर में विलीन होने की प्रक्रिया थी। साक्षात ज्ञान की मूर्ति माता देवहूति का वो नश्वर शरीर देखते ही देखते एक पावन नदी के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे आज भी सिद्धपदा के नाम से जाना जाता है। उनका अस्तित्व अब इस पूरी पृथ्वी के कणकण में समा गया था। उन्होंने वो पद प्राप्त किया जिसे बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके भी नहीं पा पाते। भगवान कपिल ने अपनी माता का उद्धार होते देखा और फिर वे स्वयं उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए, जहां वे आज भी सांख्य योग के रूप में ऋषियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। विदुर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। मैत्रेय ऋषि ने लंबी सांस ली और कहा, विदुर, ये करदम और देवहूति का वंश था जिसने साक्षात भगवान को जन्म दिया, लेकिन इस सृष्टि का विस्तार केवल यही नहीं रुका, स्वयंभुव मनु की अन्य संतानों से भी ये संसार फला खुला। उन्हीं में से एक थे राजा उत्तानपाद और उनके भाई प्रियव्रत। लेकिन मनु की पुत्रियों के वंश में एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं और स्वयं महादेव के जीवन में उथल पुथल मचा दी। कथा का रुख अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की ओर मुड़ता है। स्वयंभुव मनु की एक और पुत्री थी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के अत्यंत प्रिय और शक्तिशाली पुत्र थे, उन्हें अपनी शक्ति और पद का बड़ा अहंकार था। दक्ष की कई पुत्रियां थी, जिनमें से एक का नाम था सती। सती ने अपनी तपस्या से साक्षात महादेव भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यह विवाह ब्रह्मांड की एक महान घटना थी, क्योंकि यह प्रकृति और पुरुष का मिलन था। लेकिन नियति के गर्भ में कुछ और ही छिपा था। मैत्रेय जी बोले, विदुर, अहंकार और भक्ति का कभी मेल नहीं हो सकता। दक्ष प्रजापति ने एक बार एक विशाल सभा का आयोजन किया था, जहां ब्रह्मा जी के साथ साथ सभी देवता और ऋषि उपस्थित थे। जब दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव अपनी समाधि में लीन होने के कारण बैठे ही रहे। महादेव का ये सहज व्यवहार दक्ष को अपना अपमान लगा। उनके भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक उठी। उन्होंने ये भूल कर कि शिव ही सृष्टि के आधार है, उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया और शाप दे दिया कि आज से महादेव को यज्ञ का कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी और भृगु ऋषि के बीच भयंकर तर्क वितर्क हुआ और सभा शाप प्रतिशाप की गूंज में समाप्त हो गई। शिव जी वहां से चुपचाप चले गए, क्योंकि वे तो द्वंद्वों से परे हैं। लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने शिव का और अधिक अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसे कनखल में रखा गया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन अपनी ही पुत्री सती और दामाद शिव को बुलावा नहीं भेजा गया। सती ने जब आकाश मार्ग से देवताओं के विमानों को जाते देखा तो उन्हें पता चला कि उनके पिता के यहां बड़ा उत्सव है। सती का मन अपनी बहनों और माता से मिलने के लिए व्याकुल उठा। उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि वे भी उस यज्ञ में चले। शिव जी ने बहुत समझाया, देवी, बिना बुलाए जाना उचित नहीं, विशेषकर वहां जहां अपमान की भावना हो। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं, वहां जाना तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए दुखदायी होगा। लेकिन सती का पुत्री हृदय नहीं माना। उन्हें लगा कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने अंततः भारी मन से सती को विदा किया और साथ में नंदी सहित अपने गणों को भेजा। सती जब दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। उनकी बहनों ने उन्हें देखकर व्यंग्य किया। पिता दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं और उनकी उपेक्षा की। केवल उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। सती ने जब यज्ञ के भाग देखे तो वहां भगवान शिव का कोई स्थान नहीं था। महादेव का ये तिरस्कार देखकर सती के भीतर की शक्ति जागृत हो उठी। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली गर्जना के साथ अपने पिता को ललकारा। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आपका अन्न खाया है उस शरीर को मैं अब धारण नहीं करूंगी। सती ने वही योगाग्नि जलाई और महादेव का ध्यान करते हुए स्वयं को भस्म कर दिया। यह समाचार जब कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया।
उनके क्रोध से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ, जिसने दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दिया। देवताओं के बीच हाहाकार मच गया और सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। विदुर जी कांप उठे, उन्हें एहसास हुआ कि एक अपमान कैसे पूरी सृष्टि को राख कर सकता है। दक्ष प्रजापति का वो विशाल यज्ञ मंडप, जो कभी वेद मंत्रों की ध्वनियों से गूंज रहा था, अब एक भयानक सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था। सती बीच सभा में खड़ी थी, उनके चारों ओर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता ऋषि और गंधर्व विराजमान थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह सती की आंखों में देख सके। दक्ष ने अपनी पुत्री की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि डाली और गरजते हुए कहा, सती तुम यहां बिना बुलाए क्यों आए हो? क्या उस शमशानवासी सर्पधारी शिव के साथ रहकर तुम्हारी मति भी वैसी ही भ्रष्ट हो गई है? वो अमंगलकारी पुरुष जो शमशान की राख मलता है, इस पवित्र यज्ञ के योग्य नहीं है। मैंने जानबूझकर उसे भाग नहीं दिया, और यदि तुम उसकी वकालत करने आई हो तो यहां से तुरंत चली जाओ। दक्ष की वाणी में अहंकार का जहर घुला था। सती ने देखा कि यज्ञ के कुंडों में हर देवता का स्थान है, लेकिन उनके आराध्य उनके पति महादेव का कहीं नामो निशान नहीं है। सती का हृदय छलनी हो गया। एक पुत्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका अपना पिता उसके पति को, जो साक्षात जगदीश्वर है, अपशब्द कह रहा है। सती की आंखों से आंसू नहीं बल्कि क्रोध की अग्नि फूट रही थी। उन्होंने सभा की ओर देखकर कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी आपने उस महादेव का अपमान किया है जो इस चराचर जगत के स्वामी है, जिन्हें केवल शिव कहने मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। आप उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जिनके चरणों की धूल मस्तक पर रखते हैं, उन परम मंगलकारी शिव का ये अनादर अब सहन नहीं होगा। सती ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। उन्हें इस बात का गहरा मलाल था कि उनका ये शरीर दक्ष के अन्न से बना है। उन्होंने मन ही मन महादेव को प्रणाम किया और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, जिस शरीर में दक्ष का रक्त बह रहा है वो शरीर अब महादेव की संगति के योग्य नहीं है। मैं इस अपवित्र देह का यही परित्याग करती हूँ। सती ने सुखासन लगाया और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह अंतर्मुखी कर लिया। उन्होंने नाभि चक्र से उदान वायु को ऊपर उठाया और उसे हृदय चक्र में स्थित किया। फिर निरंतर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हुए उन्होंने अपनी योग शक्ति से शरीर के भीतर ही अग्नि प्रज्वलित की। देखते ही देखते सती का शरीर दिव्य योगाग्नि की लपटों में घिर गया। सभा में हाहाकार मच गया। देवता अपने स्थानों से खड़े हो गए, लेकिन कोई भी उस अग्नि को शांत नहीं कर सका। क्षण भर में साक्षात जगदम्बा का वह पार्थिव शरीर राख की ढेरी में बदल गया। सती ने अपनी देह त्याग दी थी ताकि वे अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्थी बनकर फिर से शिव को पा सके, लेकिन उस क्षण पूरी सृष्टि पर शोक और भय के बादल छा गए। इधर कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे, लेकिन जैसे ही सती के प्राण निकले महादेव का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि में प्रलय काल का रौद्र रूप था। जब उन्हें पता चला कि सती ने दक्ष के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया है, तो महादेव के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने भयानक गर्जना की जिससे दसों दिशाएं हिल उठीं। क्रोध के वशीभूत होकर शिव ने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा से बिजली की कड़क के साथ दो महाभयानक शक्तियां प्रकट हुई। विशालकाय वीरभद्र और काली के समान तेज वाली भद्रकाली। वीरभद्र का शरीर आकाश को छू रहा था, उसकी हजारों भुजाएं थी और आंखों से धधकती ज्वाला निकल रही थी। महादेव ने आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, दक्ष के उस यज्ञ का सर्वनाश कर दो जिसने मेरी सती की जान ली है। किसी को भी जीवित मत छोड़ना जो उस पाप का साक्षी बना है। वीरभद्र अपने साथ शिव के गणों की सेना लेकर कनखल की ओर बिजली की गति से दौड़ा। यज्ञ मंडप में ऋषियों ने जब धूल का गुबार और भयानक चीखें सुनी तो वे कांप उठे। देखते ही देखते शिवगणों ने यज्ञशाला पर धावा बोल दिया। उन्होंने वेदी को तोड़ दिया, आहुतियों को बिखेर दिया और वहां उपस्थित देवताओं को मारना शुरू किया। भृगु ऋषि जिन्होंने शिव का अपमान किया था, उनकी दाढ़ी वीरभद्र ने उखाड़ दी। पूषा देवता के दांत तोड़ दिए गए और भग देवता की आंखें निकाल ली गई। यज्ञशाला जो कभी स्वर्ग जैसी सुंदर थी, अब शमशान बन चुकी थी। चारों ओर रक्त और विलाप था। इंद्र
वरुण और यमराज जैसे दिग्गज देवता भी वीरभद्र के प्रकोप के सामने टिक नहीं सके और वहां से भाग खड़े हुए। दक्ष प्रजापति, जो कुछ देर पहले अहंकार के नशे में चूर थे, अब थरथर कांप रहे थे। वे एक खंभे के पीछे छिपे थे, लेकिन वीरभद्र की पैनी नजरों से नहीं बच सके। वीरभद्र ने दक्ष को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए यज्ञ कुंड के पास ले आया। उसने दक्ष के सीने पर पैर रखा और तलवार के एक ही झटके से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर यज्ञ की अग्नि में स्वाहा हो गया। यज्ञ पूर्णतः विध्वंस हो चुका था। जब ब्रह्मा और विष्णु को यह समाचार मिला तो वे कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि महादेव सती के वियोग में तांडव करने की तैयारी में है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर स्तुति की और शिव के क्रोध को शांत किया। महादेव, जो अत्यंत भोले और दयालु हैं, शांत हुए और देवताओं की विनती पर दक्ष को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हो गए। चूंकि दक्ष का सिर जल चुका था, इसलिए एक बकरे का सिर उनके धड़ पर लगाया गया। दक्ष जब जीवित हुए तो उनका सारा अहंकार चूर हो चुका था। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। यज्ञ फिर से संपन्न हुआ और महादेव ने सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन सती के जाने का घाव गहरा था। शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया कि इसके बाद महादेव सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर भटकने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। कथा का ये अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन मनु के वंश की अगली पीढ़ी अब एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। स्वयंभुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने भक्ति के मार्ग पर एक नन्हे बालक को अमर बना दिया। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से अत्यंत प्रेम करते थे, जबकि बड़ी रानी सुनीति उपेक्षित रहती थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर बैठे थे। उसी समय सुनीति का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव वहां आया और उसने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई। ये देखकर सुरुचि क्रोध से लाल हो गई। उसने नन्हे ध्रुव को धक्का दिया और अत्यंत कड़वे शब्दों में कहा, अरे ओ बालक, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो भगवान की तपस्या कर और मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांग। तू सुनीति का पुत्र है, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। नन्हा ध्रुव इस अपमान से सहम गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। माँ ने जब सारा हाल सुना तो उनके कलेजे पर पत्थर पड़ गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने सच ही कहा है। इस संसार में भगवान विष्णु के सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है, वही सबका दुख हरते हैं। ध्रुव की कोमल बुद्धि में ये बात पत्थर की लकीर बन गई। मात्र 5 साल की उम्र में उसने संकल्प लिया कि वो उस परमात्मा को खोज कर ही रहेगा, जो उसे वो स्थान दे सके जिसे कोई छीन न सके। ध्रुव उसी रात चुपचाप महल से निकल पड़ा। रात का घना अंधेरा था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन उस बालक के मन में डर का लेश मात्र भी नहीं था। वह केवल नारायण को पुकार रहा था। रास्ते में उसे महर्षि नारद मिले। नारद जी ने उस बालक की परीक्षा लेने के लिए कहा, बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, ये जंगल भयंकर है, घर वापस चला जा, खेल कूद की उम्र में ये तपस्या कैसी। लेकिन ध्रुव अटल था। उसने कहा, मुनिवर, मेरा हृदय अपमान की आग में जल रहा है, मुझे केवल उस पद तक पहुंचे का मार्ग बताइए जो तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ध्रुव की दृढ़ता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने ध्रुव के कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने उसे मधुवन जाने का आदेश दिया, जहां साक्षात भगवान का वास है। ध्रुव यमुना के तट पर उस पवित्र वन में पहुंचा और वहां एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या शुरू की। पहले महीने उसने केवल फल खाए, दूसरे महीने सूखे पत्ते, तीसरे महीने केवल जल और चौथे महीने हवा पीकर तप किया। 5वें महीने में ध्रुव ने अपनी सांसें भी रोक ली। उस नन्हे बालक की तपस्या की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड का दम घुटने लगा। देवता घबरा गए कि यह बालक क्या मांग लेगा। इंद्र ने उसे डराने की कोशिश की, मायावी राक्षसों को भेजा, लेकिन ध्रुव का मन अपनी नाभि में स्थित उस ज्योति में गड़ा हुआ था जिसे उसने अपने भीतर देख लिया था। मधुवन का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। ध्रुव के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया था।
वो अपनी आंखों के भीतर जिस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहा था। अचानक वह रूप वहां से गायब हो गया। ध्रुव व्याकुल होकर जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि साक्षात भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उसके सामने खड़े हैं। उनकी मंद मुस्कान और करुणा भरी दृष्टि ने ध्रुव के सारे दुखों को पल भर में मिटा दिया। वो अबोध बालक स्तब्ध रह गया। उसके पास शब्द नहीं थे कि वह भगवान की स्तुति कैसे करे। भगवान ने ध्रुव की इस दुविधा को समझा और अपने दिव्य शंख को ध्रुव के गाल से स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से ध्रुव के भीतर ब्रह्मांड का सारा ज्ञान प्रवाहित हो उठा। अब ध्रुव के मुख से जो शब्द निकले वे साक्षात वेदों की ऋचाएं थे। उसने भगवान से कोई राज्य या बदला नहीं मांगा, बल्कि केवल उनके चरणों की अविचल भक्ति मांगी। भगवान ने उसे दर्शन देकर धन्य किया और उसे ध्रुव लोक प्रदान किया, जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। ध्रुव वापस अपने राज्य लौटा। पिता ने उसे गले लगाया और अपनी गलती का पश्चाताप किया। ध्रुव ने कई वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया और अंत में दिव्य विमान पर चढ़कर उस पद को प्राप्त किया जिसे आज हम ध्रुव तारा के रूप में देखते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये भक्ति की शक्ति है कि एक छोटा सा बालक ब्रह्मांड का आधार बन गया। लेकिन क्या होगा जब इसी वंश में एक ऐसा राजा पैदा होगा जो भगवान का ही शत्रु बन जाएगा। वेन की अधर्मी गाथा अब शुरू होने वाली थी। नारद जी का आशीर्वाद लेकर और साक्षात नारायण के दर्शन पाकर वो नन्हा ध्रुव जब वापस अपनी नगरी हस्तिनापुर की ओर मुड़ा, तो उसके मन में अब न तो अपनी सौतेली माँ के प्रति कोई ईर्ष्या थी और न ही सिंहासन के प्रति कोई मोह। वो तो अब उस परम रस का पान कर चुका था जिसके आगे इंद्र का वैभव भी फीका लगता है। इधर राजा उत्तानपाद अपनी भूल पर निरंतर पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को वन के हिंसक पशुओं के बीच छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें ये सूचना मिली कि ध्रुव वापस आ रहा है, राजा की आंखों में चमक लौट आई। वे नंगे पैर अपने मंत्रियों और रानियों के साथ नगरी की सीमा पर पहुंचे। ध्रुव को देखते ही राजा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और फफकफक कर रो पड़े। सुरुचि, जिसने कभी ध्रुव को दुत्कारा था, आज उस बालक के चरणों में गिर पड़ी। ध्रुव का तेज इतना दिव्य था कि जिसने भी उसे देखा वो नतमस्तक हो गया। ध्रुव ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन किया। उनके राज्य में न कोई दुखी था, न कोई अकाल मृत्यु होती थी। लेकिन जब ध्रुव के जाने का समय आया तो आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। साक्षात भगवान के पार्षद सुनंद और नंदा उसे लेने आए थे। ध्रुव ने जब विमान पर पैर रखा तो साक्षात मृत्यु उनके सामने आकर झुक गई और ध्रुव ने उसके मस्तक पर पैर रखकर उस दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया जिसे आज हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव की ये गाथा आज भी हर भक्त को ये सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो साक्षात ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। ध्रुव के बाद उनके वंश में कई प्रतापी राजा हुए, लेकिन नियति का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ध्रुव के वंश में ही आगे चलकर राजा अंग हुए, जो एक अत्यंत धार्मिक और दयालु राजा थे। लेकिन उनके घर में एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जिसने धर्म की सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। उस पुत्र का नाम था वेन। वेन बचपन से ही क्रूर था। वो बेकसूर पशुओं और मनुष्यों को प्रताड़ित करने में सुख पाता था। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, न यज्ञ होगा, न दान होगा, न कोई देवता पूजा जाएगा, मैं ही ईश्वर हूं, केवल मेरी पूजा करो। वेन के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी। ऋषियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वेन ने उनका अपमान किया और उन्हें सभा से निकल जाने को कहा। जब पाप का घड़ा भर गया तो ऋषियों ने अपनी हुंकार मात्र से वेन के प्राण हर लिए। राज्य अब बिना राजा के हो गया था। चारों ओर अराजकता फैल गई और पृथ्वी ने अन्न पैदा करना बंद कर दिया। ऋषियों ने तब एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने वेन की मृत देह का मंथन करना शुरू किया। पहले उसकी जंघाओं का मंथन किया गया, जिससे एक काला भयानक पुरुष निकला जिसे निषाद कहा गया। उसने वेन के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। इसके बाद ऋषियों ने वेन की भुजाओं बाहों का मंथन किया। यहां गति अत्यंत तीव्र होती है। भुजाओं के मंथन से साक्षात भगवान विष्णु के अंश से एक तेजस्वी पुरुष और लक्ष्मी जी के अंश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अर्ची रखा गया। पृथु के हाथों में
चक्र और चरणों में कमल के चिन्ह थे। वे साक्षात चक्रवर्ती सम्राट के लक्षणों से युक्त थे। पृथु का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उनके सामने एक भयंकर संकट था। पूरी प्रजा भूख से मर रही थी। पृथ्वी ने अनाज देना बंद कर दिया था और लोग घास खाकर जीवन बिता रहे थे। राजा पृथु ये दृश्य देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना दिव्य अजगव धनुष उठाया और एक बाण संधान करके पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे पृथ्वी, तूने भगवान के बनाए हुए बीजों को अपने भीतर क्यों छुपा लिया है? तू प्रजा को भूखा मार रही है, इसलिए आज मैं तुझे अपने बाणों से छलनी कर दूंगा। पृथ्वी माता राजा के इस रौद्र रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो गई। उन्होंने एक गाय का रूप धारण किया और वहां से भागने लगी। यहां गति और बढ़ती है। राजा पृथु अपने रथ पर सवार होकर उनके पीछे दौड़ पड़े। पृथ्वी आकाश में गई, पाताल में गई, दसों दिशाओं में भटकती रही, लेकिन जहां भी वे जाती उन्हें राजा पृथु का चमकता हुआ बाण अपने पीछे दिखाई देता। राजा का तेज प्रलय की अग्नि के समान था। अंत में जब उन्हें कहीं शरण नहीं मिली तो वे थरथर कांपती हुई वापस राजा पृथु के चरणों में गिर पड़ी। पृथ्वी माता ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप साक्षात धर्म के रक्षक हैं, फिर भी एक स्त्री का वध करना चाहते हैं। मैंने अनाज इसलिए छुपा लिया था क्योंकि लोग अधर्मी हो गए थे। वे केवल उपभोग करना जानते थे, संवर्धन करना नहीं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं फिर से अन्न उत्पन्न करूं, तो आपको मुझे समतल करना होगा और मेरे भीतर से दूध के रूप में उन औषधियों और बीजों को निकालना होगा जो प्रजा के काम आ सके। आप स्वयं मुझे एक योग्य बछड़ा और पात्र प्रदान करें। राजा पृथु का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि पृथ्वी एक माता की तरह है, उसे दंड नहीं बल्कि दोहन मिल्किंग की आवश्यकता है। यहीं से दोहन की वो महान प्रक्रिया शुरू हुई जिसने इस संसार को वैभवशाली बनाया। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथों से पृथ्वी रूपी गाय को दुहा। उस दूध से सभी प्रकार के अनाज औषधियां और जड़ी बूटियां प्रकट हुई। इसके बाद देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर अमृत और स्वर्ण दुहा। ऋषियों ने चंद्रमा को बछड़ा बनाकर वेद मंत्रों का ज्ञान दुहा। असुरों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाकर मदिरा और माया दुही। गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर संगीत और कला दुही। यहां तक कि वृक्षों और पहाड़ों ने भी अपने अपने प्रतिनिधि बनाकर छाया और रत्न दुहे। राजा पृथु ने पहाड़ों को तोड़कर पृथ्वी को समतल किया और खेती के लिए उपयुक्त बनाया। उन्होंने नगरों और गांवों की व्यवस्था की, इसीलिए पृथ्वी का नाम उनके नाम पर पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु का यश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। जब 99 यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गए और 100वां यज्ञ शुरू हुआ तो इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। इंद्र को भय था कि यदि पृथु के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो वे इंद्र का सिंहासन छीन लेंगे। इंद्र ने वेश बदलकर यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। पृथु के पुत्र जिनका नाम विजितश्व पड़ा, उन्होंने इंद्र का पीछा किया और घोड़े को वापस लाए, लेकिन इंद्र ने बार बार छल किया। अंत में राजा पृथु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने इंद्र को ही यज्ञ की अग्नि में स्वाहा करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी साक्षात ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने पृथु को रोका। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप तो साक्षात भगवान के अंश हैं। आपका लक्ष्य पद या प्रतिष्ठा नहीं बल्कि प्रजा का कल्याण है। इंद्र के इस छोटे से कृत्य के लिए यज्ञ को हिंसक मत बनाइए। 99 यज्ञों का फल भी 100 के समान ही होगा। पृथु ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और इंद्र को क्षमा कर दिया। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने पृथु को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी सहनशीलता और धर्म के प्रति निष्ठा ने मुझे जीत लिया है, तुम वर मांगो। पृथु ने जो वरदान मांगा वो उनकी महानता का प्रतीक था। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे मोक्ष या स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बस 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी कथाओं का निरंतर पान कर सकूं। भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और राजा पृथु ने हजारों वर्षों तक एक आदर्श सम्राट की तरह शासन किया। उनके शासनकाल में कोई चोरी नहीं होती थी, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो
तो पृथु ने सब कुछ त्याग दिया। वे रानी अर्ची के साथ वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने घोर तपस्या की और पंचतत्वों को अपने भीतर विलीन कर लिया। जब उनके प्राण ब्रह्मांड में समाये तो रानी अर्ची ने भी सती धर्म का पालन करते हुए स्वयं को उनकी चिता में समर्पित कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, पृथु की ये कथा केवल एक राजा की विजय की कहानी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य और प्रकृति के बीच के संतुलन का पाठ है। पृथु ने सिखाया कि राजा को प्रजा का पिता होना चाहिए। लेकिन इस वंश की गाथा यहाँ नहीं रुकती। पृथु के बाद उनके पुत्रों ने राज्य संभाला, लेकिन धीरे धीरे समय का प्रभाव दिखने लगा। इसी वंश में आगे चलकर राजा प्राचीन बरही हुए, जो कर्मकांडों में इतने उलझ गए कि वे आत्मा का ज्ञान भूल गए। उन्हें समझाने के लिए देवर्षि नारद ने पुरंजन की एक बड़ी ही रहस्यात्मक कथा सुनाई, जो मनुष्य के शरीर और उसकी इंद्रियों का रूपक है। नारद जी ने बताया कि कैसे एक जीव पुरंजन नौ द्वारों वाले नगर मानव शरीर में प्रवेश करता है और माया पुरंजनी के चक्कर में पड़कर अपना असली स्वरूप भूल जाता है। ये कथा सुनकर राजा प्राचीन बरही का मोह भंग हुआ। लेकिन मनु के वंश की सबसे बड़ी ज्योति अभी प्रकट होनी बाकी थी। राजा प्रियव्रत के वंश में एक ऐसे बालक का जन्म होने वाला था जो साक्षात नारायण का अवतार कहलाया। उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव का जीवन और उनके उपदेश आज भी जैन धर्म और सनातन धर्म के बीच एक सेतु की तरह है। उनका वैराग्य ऐसा था कि उन्होंने चलते फिरते भगवान का रूप धारण कर लिया था। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे भरत। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह महान राजा भरत, जिसने पूरी पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज किया, अंत में एक हिरण के मोह में क्यों पड़ गया? कैसे एक छोटी सी ममता मोक्ष के द्वार पर खड़े व्यक्ति को वापस जन्म मृत्यु के चक्र में धकेल सकती है? भरत की ये कहानी हमें सिखाती है कि मोह की जड़े कितनी गहरी होती है। सुखदेव जी की वाणी अब उस गंभीर मोड़ पर थी जहां वे परीक्षित को समझा रहे थे कि वैराग्य का मतलब केवल घर छोड़ना नहीं है, बल्कि मन से आसक्ति को जड़ से उखाड़ना है। राजा भरत की कथा अब उस रहस्य की ओर बढ़ रही थी, जिसने अध्यात्म के इतिहास में जड़ भरत जैसा महान चरित्र दिया। क्या भरत उस हिरण के मोह से मुक्त हो पाएंगे? क्या उनका अगला जन्म उन्हें फिर से उसी रास्ते पर ले आएगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे ऋषभदेव के दिव्य उपदेश और राजा भरत की वो विस्मयकारी यात्रा, जो एक मृग के शरीर से शुरू होकर एक जड़ भरत के परम ज्ञान तक पहुंचती है। पंचम स्कंद की ये कथा परीक्षित के हृदय में वैराग्य की उस ज्योति को और तीव्र करने वाली थी, जिसकी आवश्यकता सातवें दिन आने वाले तक्षक के लिए बहुत जरूरी थी। पृथ्वी के दोहन से शुरू हुआ ये सफर अब आत्मा के दोहन की ओर बढ़ रहा था। महाराज प्रियव्रत के वंश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। लेकिन इस वंश को साक्षात ईश्वर का सानिध्य तब मिला जब राजा नाभि और रानी मेरुदेवी के घर साक्षात भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। ऋषभदेव का जन्म ही जगत को ये सिखाने के लिए हुआ था कि एक आदर्श राजा, एक आदर्श पिता और अंततः एक परम वैराग्यवान मुक्त पुरुष कैसे बना जाता है। जब ऋषभदेव युवा हुए तो उनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ, जिनसे उनके 100 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें सबसे ज्येष्ठ थे भरत, जो अत्यंत बुद्धिमान और वीर थे। ऋषभदेव ने अपने राज्य को एक तपोवन बना दिया था, जहां धर्म की गंगा बहती थी। एक दिन महाराज ऋषभदेव ने अपने सभी 100 पुत्रों को बुलाया और उन्हें जीवन का वो शाश्वत सत्य समझाया, जिसे ऋषभदेव गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गरजते हुए कहा, मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर केवल इंद्रियों के सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये तो तपस्या और आत्मज्ञान के लिए है। जो व्यक्ति केवल पेट भरने और वासनाओं की तृप्ति में लगा रहता है, वो उस कुत्ते और सुअर के समान है जो केवल गंदगी में सुख ढूंढता है। सच्चा सुख तो ब्रह्म सुख, जो केवल तब मिलता है जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है। ऋषभदेव ने चेतावनी दी कि ये संसार एक ऐसी अंधेरी कोठरी है जहां जीव अपने ही कर्मों की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपने बड़े भाई भरत की आज्ञा का पालन करें और प्रजा को अपना परिवार समझे। उपदेश देने के बाद ऋषभदेव ने वह किया जिसकी कल्पना भी कठिन थी। उन्होंने राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को सौंप दिया और स्वयं अवधूत बन गए। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर दिया।
यहाँ तक कि अपने शरीर की सुध भी भुला दी। वे दिगंबर अवस्था में इधर उधर घूमने लगे। यहाँ गति अत्यंत तीव्र होती है। ऋषभदेव ने मौन व्रत धारण कर लिया। वे जहां भी जाते लोग उन्हें पागल समझकर उन पर पत्थर मारते, धूल फेंकते या उनका उपदेश सुनकर उनका उपहास करते। लेकिन ऋषभदेव का मन तो साक्षात परमानंद में लीन था। उन्हें न शरीर की पीड़ा महसूस होती थी, न अपमान का दुख। वे चलते चलते कोंकण और कर्नाटक के वनों में पहुंच गए। वहां एक बार भयंकर वनाग्नि लगी, लेकिन ऋषभदेव वहां से भागे नहीं। उन्होंने उसी अग्नि में अपने नश्वर शरीर को आहुत कर दिया और अपने वास्तविक विष्णु स्वरूप में विलीन हो गए। इधर राजा भरत ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए पृथ्वी का शासन संभाला। उनके न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासन के कारण ही इस देश को अजनाब खंड की जगह भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाने लगा। भरत ने अनेक यज्ञ किए, लेकिन उनका हृदय हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता था। जब वे वृद्ध हुए तो उन्होंने भी अपनी समस्त संपत्ति पुत्रों में बांट दी और संन्यास लेकर गंडकी नदी के तट पर पुला आश्रम में चले गए। वहां वे केवल कंदमूल खाकर नारायण का ध्यान करते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि ध्यान करते समय उनकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बहते थे और उनका हृदय पिघलकर साक्षात हरि का मंदिर बन गया था। लेकिन तभी नियति ने एक ऐसी करवट ली जिसने मोक्ष के द्वार पर खड़े भरत के लिए एक नया जाल बुन दिया। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी के तट पर बैठे संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी मृग प्यास बुझाने के लिए वहां आई। वो अभी जल पी रही थी कि पास की झाड़ियों से एक सिंह की भयंकर गर्जना सुनाई दी। यहां गति धीमी होती है, गहरा भावनात्मक और टर्निंग पॉइंट का क्षण। वो हिरणी भय के मारे कांप उठी और अपनी जान बचाने के लिए उसने एक ऊंची छलांग लगाई। उसी छलांग के बीच भय और दबाव के कारण उसका प्रसव हो गया और एक नन्हा मृगछौना नदी की तेज धारा में गिर पड़ा। वो बेचारी हिरणी दूसरी ओर गिरकर दम तोड़ गई। राजा भरत ने जब उस असहाय नन्हे हिरण के बच्चे को पानी में डूबते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने तुरंत उसे पानी से निकाला और अपनी कुटिया में ले आए। उन्होंने सोचा कि ये बेसहारा जीव अब मेरा आश्रित है, यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन यही करुणा धीरे धीरे मोह में बदलने लगी, जो भरत चक्रवर्ती साम्राज्य को एक तिनके की तरह छोड़कर आए थे। आज उनका मन उस छोटे से हिरण में अटक गया। वे उसे दुलारते, उसे घास खिलाते और यदि वह थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाता तो व्याकुल होकर उसे ढूंढने लगते। भरत का ध्यान अब नारायण में कम और हिरण में ज्यादा रहने लगा। वे सोचते, अरे ये छोटा सा बच्चा माँ के बिना कितना दुखी है, ये मेरे भरोसे ही तो जी रहा है। भक्ति और साधना पीछे छूट गई। भरत जब मरने के करीब पहुंचे तो उस समय भी उनके सामने वही हिरण खड़ा था। उन्होंने मरते समय भगवान का नाम लेने के बजाय केवल उस हिरण का चिंतन किया। शास्त्र कहते हैं, अंत मति सोगति। जो जीव मरते समय जिसका स्मरण करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। महाराज भरत का अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन अपनी पूर्व तपस्या के प्रभाव से उन्हें उस हिरण के शरीर में भी अपने पिछले जन्म की याद थी। वे निरंतर पश्चाताप करते थे, हाय मैंने एक पशु के मोह में पड़कर अपना सारा संचित पुण्य गवा दिया। हिरण बने भरत ने अब कोई मोह नहीं किया। वे हमेशा संतों के आश्रम के पास रहते और वही नदी किनारे खड़े होकर भगवान का मानसिक ध्यान करते। अंत में उन्होंने अपना हिरण का शरीर त्याग दिया। उनका तीसरा जन्म एक अत्यंत कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस जन्म में भी उन्हें पिछले दोनों जन्मों की याद थी। उन्होंने संकल्प लिया कि इस बार वे किसी भी प्रकार के सांसारिक संबंध या मोह में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने स्वयं को जड़ बुद्धिहीन की तरह दिखाना शुरू किया। लोग उन्हें पागल कहते, उन्हें चिढ़ाते, लेकिन वे चुप रहते। इसीलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। उनके ब्राह्मण भाइयों ने उन्हें घर के कामों में लगा दिया, उन्हें बचा कुचा भोजन देते, लेकिन जड़ भरत तो स्वयं को केवल आत्मा मानते थे। उन्हें न भूख की परवाह थी न प्यास की। उनके शरीर पर मैल जम गया था, बाल बढ़ गए थे, लेकिन उनके भीतर ब्रह्म ज्ञान की अग्नि धधक रही थी। एक बार कुछ डकैतों ने भद्रकाली को बलि चढ़ाने के लिए किसी पुरुष की खोज की। उन्होंने जंगल में जड़ भरत को बैठे देखा।
वे उन्हें पकड़ कर ले गए। जड़ भरत न डरे न विरोध किया। जब उन्हें बलि की वेदी पर नहला धुलाकर बिठाया गया

वाले की कमी हुई तो राजा के सेवकों ने हट्टे कट्टे जड़ भरत को पकड़ लिया और उन्हें पालकी के नीचे लगा दिया। जड़ भरत चुपचाप पालकी ढोने लगे, लेकिन वे जमीन पर बहुत ध्यान से देख रहे थे ताकि उनके पैर के नीचे कोई चींटी या छोटा जीव न दब जाए। इस कारण वे बार बार उछल कर चलते थे जिससे पालकी हिलने लगी। राजा रहुगण को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे ओ जीवित मुर्दे, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? तू थक गया है या तू इतना कमजोर है कि पालकी ठीक से नहीं ले जा सकता? देख, अभी मैं तुझे दंड देकर तेरा सारा आलस्य भगा दूंगा। राजा का अहंकार उसकी वाणी से बरस रहा था। यहां गति धीमी होती है, संवाद और ज्ञान का क्षण। जड़ भरत, जो अब तक मौन थे, पहली बार बोले। उनकी आवाज में वो गहराई थी जो पहाड़ों को हिला दे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आप किसे दंड देंगे? इस शरीर को, ये शरीर तो मिट्टी है। क्या आप मुझे मोटा या कमजोर कह रहे हैं? आत्मा न मोटी होती है, न पतली, न वह थकती है और न वह मरती है। आप जिसे मैं राजा हूं कह रहे हैं, वो केवल एक पद है जो समय के साथ बदल जाएगा। आज आप पालकी में बैठे हैं, कल आप भी इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये पालकी, ये शरीर, ये पद सब माया का खेल है। राजा रहुगण ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि ये कोई साधारण मजदूर नहीं, बल्कि साक्षात साक्षात ज्ञान का भंडार है। वो तुरंत पालकी से नीचे उतरा और जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महापुरुष, आप कौन हैं? क्या आप साक्षात कपिल मुनि हैं जो मेरा भ्रम दूर करने आए हैं? कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस संसार रूपी जंगल भौटवी का रहस्य समझाएं। जड़ भरत ने तब राजा रहुगण को भौटवी, संसार रूपी वन का वो प्रसिद्ध उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये जीव इंद्रियों के पीछे भागते हुए इस संसार के कांटों में उलझ जाता है, कैसे काम, क्रोध और लोभ रूपी डाकू इस जीव की ज्ञान रूपी पूंजी को लूट लेते हैं। उन्होंने बताया कि जब तक मनुष्य साधु संतों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगाता, तब तक उसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। राजा रहुगण का अहंकार पूरी तरह भस्म हो गया और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जड़ भरत वहां से फिर विरक्त भाव से चल पड़े और अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। सुखदेव जी बोले, राजन, भरत का चरित्र ये सिखाता है कि भक्ति के मार्ग पर सावधानी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा मोह भी आपको मीलों पीछे धकेल सकता है। परीक्षित की जिज्ञासा अब शांत नहीं हो रही थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने इस ब्रह्मांड और नरक के दुखों की बात की, ये नरक क्या है और जीव वहां क्यों जाते हैं? सुखदेव जी ने तब भूगोल और खगोल का वर्णन किया और बताया कि कैसे मनुष्य के कर्म ही उसे स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब एक घोर पापी व्यक्ति, जिसने जीवन भर केवल अधर्म किया हो, मृत्यु की दहलीज पर खड़ा हो? कथा अब उस पापी अजामिल की ओर मुड़ती है जिसे यमदूतों ने पाश में जकड़ लिया था। यमराज के दूत उस पापी को घसीटकर ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वर्ग और नरक के नियमों को ही बदल दिया। यमदूत एक ओर से पापी को खींच रहे थे और दूसरी ओर से साक्षात विष्णुदूत प्रकट हो गए। क्या एक पुकार नरक के द्वार बंद कर सकती है? सुखदेव जी अब उस नाम की महिमा का रहस्य खोलने वाले थे। सुखदेव जी बोले, राजन, अब उस परम रहस्य को सुनो जिसने नरक के विधान को ही हिलाकर रख दिया और यमराज के दूतों को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। तुमने पूछा था कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे घोर पापी भी यमदूतों के पास से बच सके, तो सुनो। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बचपन में अत्यंत सदाचारी, जितेंद्रिय और माता पिता का भक्त था, लेकिन नियति ने उसे एक ऐसी कसौटी पर कसा जहां उसका सारा भ्रम तेज धूल में मिल गया। एक दिन वन में वह फल लेने गया था। वहां उसने एक कामुक शूद्र को एक वेश्या के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त देखा। उस दृश्य ने अजामिल के मन में काम की ऐसी अग्नि प्रज्वलित की कि वह अपना सारा धर्म कर्म भूल गया। उसने उस वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया और अपने वृद्ध माता पिता को त्याग दिया। अजामिल ने अपने जीवन के 80 साल चोरी, छल और अधर्म में बिताए। उसके 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटा पुत्र उसे प्राणों से भी प्रिय था, जिसका नाम उसने नारायण रखा था। जब अजामिल की मृत्यु का समय निकट आया तो वह अपने छोटे पुत्र नारायण के साथ खेलने में मग्न था। अचानक उसे अपने सामने 3 अत्यंत भयानक आकृतियां दिखाई दी।

यहाँ गति अत्यंत तीव्र होती है। वे यमराज के दूत थे, काले रंग के, लंबी और मुड़ी हुई नखों वाले, जिनके बाल खड़े थे और आंखों से जलती हुई अंगार जैसी रोशनी निकल रही थी। वे हाथ में भयंकर पाश रस्सी लिए हुए अजामिल के प्राण खींचने के लिए झपटे। अजामिल मौत के उस भयानक रूप को देखकर थरथर कांपने लगा। उसने डर के मारे अपने पास ही खेल रहे छोटे पुत्र को जोर से पुकारा, नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण शब्द निकला, वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बिजली की कड़क के साथ चार दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। उनका रंग मेघों जैसा सांवला था। वे पीतांबर धारण किए थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद थे। विष्णु दूतों ने यमदूतों के हाथों से वो पाश छीन लिया और उन्हें अजामिल के प्राण ले जाने से रोक दिया। यमदूत क्रोध से गर्जने लगे, तुम कौन हो जो धर्मराज के आदेश में बाधा डाल रहे हो? इस अजामिल ने जीवन भर पाप किए हैं, ये नरक का अधिकारी है। विष्णु दूतों ने शांत भाव से पूछा, यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म क्या है और दंड किसे मिलता है? यमदूतों ने वेदों का हवाला देते हुए अजामिल के पापों की लंबी सूची गिना दी। तब विष्णु दूतों ने वह बात कही जिसने पूरे ब्रह्मांड के पाप पुण्य के गणित को बदल दिया। यहाँ गति धीमी होती है, विस्मय और नाम महिमा का चरम क्षण। विष्णु दूतों ने कहा, मूर्ख दूतों, तुम केवल बाहर के कर्मों को देख रहे हो, लेकिन तुम नाम की उस अमोघ शक्ति को नहीं जानते जिसने अजामिल के करोड़ों जन्मों के पापों को एक क्षण में भस्म कर दिया है। इसने मरते समय नारायण पुकारा है। यद्यपि इसने अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन भगवान का नाम चाहे संकेत में लिया जाए, चाहे उपहास में, चाहे मजबूरी में या पुत्र के बहाने, वो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। जैसे अनजाने में भी आग में हाथ पड़ जाए तो वो जलाती है, या जैसे अमृत अनजाने में भी पी लिया जाए तो वो अमर करता है, वैसे ही नारायण का नाम पापों की जड़ काट देता है। इस पुकार ने इसके अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है। अब इस पर यमराज का कोई अधिकार नहीं है। यमदूत निरुत्तर होकर वहां से भाग खड़े हुए और सीधे यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने जब ये सुना तो वे भी अपने सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, दूतों, नारायण का नाम लेने वाले के पास तुम कभी मत जाना, वहां मेरा भी बस नहीं चलता। वे तो साक्षात ईश्वर के संरक्षण में है। इधर अजामिल को दूसरा जीवन मिला। उसने जब विष्णु दूतों और यमदूतों का संवाद सुना तो उसकी चेतना जाग गई। उसे अपने पापों पर घोर पश्चाताप हुआ। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चला गया और वहां गंगा के तट पर अनन्य भाव से भगवान के वास्तविक नारायण रूप का ध्यान करने लगा। अंत में वही विष्णुदूत फिर से आए और अजामिल को दिव्य विमान में बैठा कर वैकुंठ ले गए। सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया, राजन, जब एक पापी केवल नाम के आभास से मुक्त हो सकता है तो जो श्रद्धा से भगवान का सुमिरन करते हैं उनके सौभाग्य का क्या कहना। कथा का रुख अब स्वर्ग की ओर मुड़ता है। इंद्र अपनी शक्ति के नशे में इतने चूर थे कि जब उनके गुरु बृहस्पति सभा में आए तो इंद्र उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। अपमानित होकर बृहस्पति वहां से अंतर्धान हो गए। गुरु के जाते ही देवताओं का तेज क्षीण होने लगा और असुर उन पर हावी हो गए। ब्रह्मा जी की सलाह पर इंद्र ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया, लेकिन विश्वरूप चोरी छिपे असुरों को भी यज्ञ का भाग दे रहे थे क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी। जब इंद्र को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूप के तीन सिर काट दिए। इससे इंद्र को ब्राह्म हत्या का पाप लगा। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने अपने पुत्र के वध का बदला लेने के लिए एक भयंकर यज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से एक अत्यंत विशाल और डरावना असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। उसका शरीर बादलों की तरह काला था और वो हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। यहां गति फिर से तीव्र होती है। देवता उसके सामने तिनकों की तरह बिखरने लगे। वृत्रासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी को पकड़ लिया और देवताओं की सेना में हाहाकार मचा दिया। हताश होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने बताया कि वृत्रासुर का अंत केवल एक दिव्य वज्र से हो सकता है जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बनेगा। इंद्र संकोच के साथ दधीची के पास पहुंचे। दधीची महान त्यागी थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए हंसते हंसते अपना शरीर त्याग दिया। उनकी पवित्र हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र
का निर्माण किया। इंद्र और वृत्रासुर का महायुद्ध शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात देखने को मिली। वृत्रासुर, जो एक राक्षस था, वो युद्ध के मैदान में इंद्र को धर्म और वैराग्य का उपदेश दे रहा था। वास्तव में वृत्रासुर अपने पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था, जिसे पार्वती जी के शाप के कारण असुर बनना पड़ा था, लेकिन उसकी भक्ति नष्ट नहीं हुई थी। युद्ध के बीच वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र, तुम मुझ पर वज्र से प्रहार क्यों नहीं करते? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो, ताकि मैं इस असुर देह को छोड़कर अपने प्रभु के चरणों में विलीन हो सकूं। वृत्रासुर की आंखों में युद्ध का उन्माद नहीं, बल्कि मिलन की व्याकुलता थी। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे पक्षी के बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे प्यासा बछड़ा गाय के थन की ओर दौड़ता है, वैसे ही मेरा मन आपकी ओर भाग रहा है। मुझे न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष, मुझे तो बस आपके दासों का दास बना दीजिए। इंद्र ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि ये कैसा असुर है जो मृत्यु को गले लगाने के लिए इतना आतुर है। वृत्रासुर ने अपना विशाल मुख खोला और इंद्र को उनके ऐरावत सहित निगल लिया। लेकिन इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का पेट चीर दिया और बाहर निकल आए। अंततः इंद्र ने एक साल तक चले युद्ध के बाद वृत्रासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समा गई। वृत्रासुर तो मुक्त हो गया, लेकिन इंद्र फिर से ब्रह्महत्या के पाप में फंस गए, क्योंकि वृत्रासुर जन्म से ब्राह्मण त्वष्टा का पुत्र था। इंद्र को अपना पद छोड़कर मानसरोवर के कमल की नाल में छुपना पड़ा। कई वर्षों के प्रायश्चित के बाद इंद्र वापस आए। शुकदेव जी बोले, राजन, ये कथा बताती है कि भक्ति किसी कुल या योनि की मोहताज नहीं है। एक असुर भी महान भक्त हो सकता है और एक राजा भी मृग बन सकता है। परीक्षित की जिज्ञासा अब उस महान भक्त की ओर मुड़ रही थी, जिसके लिए भगवान ने खंभा फाड़ दिया था। सृष्टि का सबसे भयानक और सबसे दयालु रूप अब प्रकट होने वाला था। कश्यप और दिति का दूसरा पुत्र हिरण्यक्षिपु अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए तपस्या कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी से वो वरदान पा लिया था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। लेकिन उसी के घर में एक ऐसा नक्षत्र जन्म लेने वाला था, जिसकी चमक के आगे हिरण्यक्षिपु का सारा अंधकार फीका पड़ने वाला था। शुकदेव जी अब उस प्रहलाद की गाथा सुनाने जा रहे थे, जिसकी पुकार ने पत्थर के निर्जीव खंभे में भी प्राण खूंक दिए थे। दैत्यों की नगरी में नारायण नारायण की गूंज सुनाई देने लगी थी। क्या हिरण्यक्षिपु अपने ही पुत्र का वध कर पाएगा? क्या भगवान नरसिंह का क्रोध इस संसार को भस्म कर देगा? हिरण्यक्षिपु के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में करने का संकल्प ले लिया। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का दुख उसे दिन रात सालता था, और उस दुख से उपजा क्रोध अब साक्षात विष्णु के विनाश की कामना बन चुका था। हिरण्यक्षिपु मंदराचल पर्वत पर गया और वहां उसने एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की कि उसके मस्तक से निकलने वाली आग से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। उसकी देह को दीमकों ने खा लिया, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। लेकिन उसकी प्राण शक्ति ब्रह्मा जी के ध्यान में अटकी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उस पर दिव्य जल छिड़कर उसे नया वज्र जैसा शरीर दिया। हिरण्यक्षिपु ने वो वरदान मांगा जिसने उसे अजय बना दिया। प्रभु, न मैं घर के भीतर मरूं, न बाहर, न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न पशु से, न देवता से, न दैत्य से, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहते ही हिरण्यक्षिपु का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसने यज्ञ याग बंद करवा दिए और ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करना शुरू किया। लेकिन नियति की विडंबना देखिए। जिस समय हिरण्यक्षिपु तपस्या कर रहा था, उस समय इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया था। देवर्षि नारद ने कयाधु को मुक्त कराया और अपने आश्रम में शरण दी। कयाधु के गर्भ में जो बालक था, उसने अपनी माता के साथ रहते हुए नारद जी के मुख से भगवान विष्णु की महिमा और भागवत धर्म का पूरा ज्ञान सुन लिया। वह बालक कोई और नहीं, साक्षात भक्त शिरोमणि प्रहलाद थे। जब हिरण्यक्षिपु वापस आया तो वह अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो अनजान था कि उसके घर में ही उसके शत्रु का सबसे बड़ा प्रेमी जन्म ले चुका है। प्रहलाद जब 5 वर्ष के हुए
तो उन्हें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों शंड और अमर के पास शिक्षा लेने भेजा गया। गुरुओं ने उन्हें राजनीति, कूटनीति और शत्रु मित्र का भेद सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का मन तो केवल गोविंद में रमा था। एक दिन हिरण्यक्षिपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और दुलारते हुए पूछा, बेटा तुमने अब तक जो पढ़ा है उसमें तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? प्रहलाद ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, तात मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि जो लोग इस अंधेरे संसार रूपी कुएं में गिरकर मैं और मेरा के चक्कर में दुखी हैं, उन्हें सब कुछ छोड़कर वन में चले जाना चाहिए और श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। ये सुनते ही हिरण्यक्षिपु का चेहरा तमतमा उठा। उसने क्रोध में प्रहलाद को गोद से नीचे पटक दिया और गुरुओं पर चिल्लाया, तुमने मेरे पुत्र को ये क्या शिक्षा दी है? इसे वैष्णवों के संस्कार किसने दिए? गुरुओं ने बहुत सफाई दी, लेकिन प्रहलाद का हृदय तो साक्षात हरि के नाम से प्रकाशित था। जब दूसरी बार पूछने पर भी प्रहलाद ने नवधा भक्ति का उपदेश देना शुरू किया तो हिरण्यक्षिपु का धैर्य टूट गया। उसने गरजते हुए कहा, यह बालक कुलद्रोही है, यह मेरे भाई के हत्यारे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण। भक्तों, जब संसार में धर्म कमजोर पड़ने लगता है, जब मनुष्य सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली हो जाता है, तब केवल एक ही चीज उसे बचा सकती है, भगवान की कथा। और ऐसी ही अमर कथा है श्रीमद् भागवत पुराण। आज आप सुनने जा रहे हैं भागवत पुराण का प्रथम स्कंध, वो स्कंध जहां से भगवान की नहीं मनुष्य की आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ये कथा शुरू होती है नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में। हजारों ऋषि एकत्र हैं, उनके चेहरे पर चिंता है, उनके हृदय में एक ही प्रश्न कलयुग में जहां लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, वहां मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? तभी वहां आते हैं महान कथावाचक सूत गोस्वामी। ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे सूत जी, आपने जो सबसे पवित्र, सबसे सरल, सबसे कल्याणकारी ज्ञान सुना है, वही हमें सुनाइए। और यहीं से श्रीमद् भागवत पुराण की अमरधारा बहने लगती है। अब कथा पहुंचती है महर्षि वेदव्यास के आश्रम में, व्यास जी जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, अनेक पुराण लिखे, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। क्यों? क्योंकि ज्ञान बहुत था, कर्म भी था, लेकिन भक्ति नहीं थी। तभी वहां आते हैं देवर्षि नारद। नारद जी व्यास से कहते हैं, आपने धर्म सिखाया, कर्म का मार्ग बताया, ज्ञान समझाया, लेकिन भगवान की प्रेममयी कथा नहीं सुनाई, इसीलिए आपका हृदय आज भी खाली है। ये शब्द व्यास जी के हृदय में उतर जाते हैं। व्यास जी ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में वे एक दिव्य दृश्य देखते हैं, भगवान श्री हरि और उनके पीछे खड़ी माया और जीवात्मा। तभी व्यास जी समझ जाते हैं, जीव दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने भगवान को भुला दिया है। और उसी क्षण श्रीमद् भागवत पुराण का जन्म होता है, एक ऐसा ग्रंथ जो डर नहीं देता, जो दंड नहीं देता, बल्कि प्रेम से भगवान तक पहुंचाता है। अब कथा आती है एक महान राजा की। राजा परीक्षित, धर्मात्मा, न्यायप्रिय, सत्य के पक्ष में खड़ा रहने वाला राजा, लेकिन एक दिन अज्ञानवश वे एक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल देते हैं और उसी भूल का परिणाम श्राप मिलता है कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के दंश से उनकी मृत्यु होगी। लेकिन राजा परीक्षित डरते नहीं, वे सिंहासन छोड़ देते हैं, राज्य त्याग देते हैं और गंगा तट पर बैठ जाते हैं। उनका प्रश्न केवल एक होता है कि अब जब मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तभी वहां आते हैं महान ब्रह्मज्ञानी सुखदेव। राजा परीक्षित विनम्रता से पूछते हैं कि हे महात्मन, मृत्यु सामने हो तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? सुखदेव उत्तर देते हैं, भगवान की कथा सुनो, उनका नाम स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और वही कथा है श्रीमद् भागवत पुराण। यही प्रथम स्कंध हमें सिखाता है। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब मन भगवान में लीन हो जाता है। अब भागवत का संदेश सुनिए। कर्म बिना भक्ति अधूरा है, ज्ञान बिना प्रेम अहंकार बन जाता है, और कथा आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला सेतु है।
कलयुग में ना यज्ञ संभव है ना कठोरता, बस एक ही मार्ग है, भगवान का नाम और उनकी कथा। आज के मनुष्य के लिए भागवत का स्पष्ट संदेश है, हर दिन थोड़ी देर भगवान की कथा सुनो, अहंकार छोड़ो, जिज्ञासा रखो और मृत्यु से नहीं अज्ञान से डरो। कल्पना कीजिए, आज नहीं कल नहीं बल्कि ठीक 7 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। कोई उपाय नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चमत्कार नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे बचा जाए, अब सवाल ये है कि अब जिया कैसे जाए। राजा परीक्षित आज राजमहल में नहीं है, वे बैठे हैं मां गंगा के तट पर। ना मुकुट, ना सिंहासन, ना सेना, एक राजा, लेकिन पूरी तरह अकेला, जिसके सामने हजारों सिर झुकते थे, आज वो स्वयं जीवन के सामने सिर झुकाए बैठा है। चारों ओर ऋषि है, मुनि है, ज्ञानी है, लेकिन वातावरण में कोई शोर नहीं है, क्योंकि जहां मृत्यु बैठी हो वहां शब्द अपने आप चुप हो जाते हैं। राजा परीक्षित सोचते हैं, मैंने युद्ध देखे, राज्य चलाया, धर्म निभाया, मैंने स्वयं भगवान कृष्ण को देखा, लेकिन क्या मैंने जीना सीखा? जब मृत्यु सामने आती है तो उपलब्धियां बोलना बंद कर देती है, तब केवल चेतना बोलती है। और तभी राजा परीक्षित वो प्रश्न पूछते हैं जिससे भागवत प्रकट होती है। हे मुनिवर सुखदेव, मेरे पास अब समय बहुत कम है, बताइए मनुष्य को मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। यह प्रश्न किसी राजा का नहीं है, यह प्रश्न हर उस इंसान का है जो जानता है कि एक दिन सब समाप्त होगा। सुखदेव जी धीरे से बोलते हैं, राजन, जिसने जीवन भर भगवान को टाल दिया वो मृत्यु के समय किसी भी उपाय से शांत नहीं हो सकता, और जिसने जीते जी भगवान को पकड़ लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक क्षण है। सच ये है, मृत्यु से डर नहीं लगता, डर लगता है अधूरेपन से, डर लगता है इस बात से कि मैं सब कुछ होते हुए भी खाली रह गया। इसीलिए आज का मनुष्य हर चीज की तैयारी करता है, पैसा, घर, भविष्य, लेकिन अंतिम दिन की नहीं। इसीलिए है राजन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय डर से मुक्त होना चाहता है उसे चाहिए भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम स्मरण करना और मन को इस संसार से हटाकर ईश्वर में स्थिर करना, क्योंकि मृत्यु के समय जो स्मरण में होता है अगला जीवन उसी दिशा में जाता है। भागवत मृत्यु की कथा नहीं है, ये मृत्यु से पहले जागने की प्रक्रिया है, और स्कंद दूसरे का पहला अध्याय यहीं से आपको जगाना शुरू करता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर भागवत इतनी शक्तिशाली है तो हर कोई इसे सुनकर बदल क्यों नहीं जाता? इसी रहस्य को सुखदेव जी अगले अध्याय में खोलने वाले हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न हवा में नहीं खुला था, वो प्रश्न हर ऋषि के हृदय में गूंज रहा था, लेकिन सुखदेव जी तुरंत उत्तर नहीं देते, वे पहले राजा को देखते हैं और फिर सुनने वालों को, और तभी एक बहुत कड़वा सत्य कहते हैं, राजन, हर कोई भागवत सुनने योग्य नहीं होता। ये सुनकर सभा चौंक जाती है, क्योंकि भागवत तो सबके लिए है, फिर ये कैसी बात? सुखदेव जी धीरे धीरे समझाते हैं, भागवत कान से नहीं सुनी जाती, भागवत मन से सुनी जाती है, और जिस मन में अहंकार भरा हो, जिस मन में मैं जानता हूं भरा हो, वहां भागवत प्रवेश नहीं करती। राजन, अगर मन भरा हुआ है तो भगवान कहां आएंगे? आज का मनुष्य सबसे ज्यादा यही भूल करता है, वो सुनता है लेकिन स्वीकार नहीं करता, वो कथा देखता है लेकिन खुद को नहीं देखता। इसीलिए भागवत सब सुनते हैं पर बदलते बहुत कम है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भागवत सुनने की पहली योग्यता है विनम्रता, ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानता, मैं अधूरा हूं और मुझे मार्गदर्शन चाहिए। दूसरी योग्यता है जिज्ञासा, मन में सवाल जीवित हो, केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सत्य की भूख हो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता श्रद्धा, अंधी श्रद्धा नहीं बल्कि अनुभव करने की तैयारी। राजन, जिस दिन मनुष्य ये सोचकर भागवत सुनता है कि मैं क्या सीख सकता हूं, उस दिन भागवत उसके भीतर जीवित हो जाती है। लेकिन जिस दिन वो ये सोचकर सुनता है कि देखते हैं इसमें क्या खास है, उस दिन भागवत केवल शब्द बनकर रह जाती है। आज का मनुष्य सब कुछ तेजी से चाहता है,
तेज ज्ञान, तेज परिणाम, तेज मुक्ति, लेकिन भागवत धीमी प्रक्रिया है। ये मन को तोड़ती है फिर जोड़ती है, ये अहंकार को छीलती है फिर हृदय को खोलती है। इसीलिए राजन भागवत उसके लिए नहीं है जो केवल सुनना चाहता है, भागवत उसके लिए है जो बदलने को तैयार है। सुखदेव जी सभा की ओर देखते हुए अंतिम बात कहते हैं, जो व्यक्ति भागवत को अपने ऊपर लागू नहीं करता उसके लिए भागवत भी एक कथा मात्र है, लेकिन जो भागवत को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए भागवत जीवन बन जाती है। राजन, अब जब तुमने सुनने का अधिकार पा लिया है, अब मैं तुम्हें भगवान का वो स्वरूप बताऊंगा जिसे जानकर अहंकार अपने आप झुक जाता है। अगले अध्याय में भगवान मूर्ति नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड बनकर प्रकट होंगे। सुखदेव जी कुछ क्षण मौन रहते हैं, जैसे जो कहने वाले हैं वो शब्दों से बड़ा है। फिर धीरे से कहते हैं, राजन अब तक तुमने भगवान को मूर्ति समझा होगा, नाम रूप आकार में बांधा होगा, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देगा। राजन, भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान यही है। इस समय भी जिस आकाश को तुम ऊपर देखते हो वही भगवान का मुख है, जिस वायु में तुम सांस लेते हो वही भगवान का प्राण है, जिस सूर्य की रोशनी तुम्हारी आंखें खोलती है वो भगवान की दृष्टि है, और जो चंद्रमा तुम्हारे मन को शांत करता है वो भगवान का मन है। राजन, जिस पृथ्वी पर तुम बैठे हो वही भगवान के चरण है, जिस दिशा में तुम देख रहे हो वही भगवान का विस्तार है। अब ध्यान से सुनो, ये ब्रह्मांड भगवान में नहीं है, भगवान ही ये ब्रह्मांड है। जिसमें तुम छिपना चाहते हो, जिससे तुम बचना चाहते हो, वही भगवान का शरीर है। राजन, जब साधक इस विराट स्वरूप का ध्यान करता है तो भगवान को देखने के लिए नहीं बल्कि अपने मैं को गलाने के लिए करता है, क्योंकि जब तुम्हें ये दिखने लगे कि मैं छोटा हूं और ये सृष्टि असीम है तो अहंकार अपने आप झुकने लगता है। राजन, तुम कहते हो मैं करता हूं, लेकिन जब सूर्य उगता है तो क्या तुम्हारी अनुमति लेता है? जब मृत्यु आती है तो क्या वह तुमसे पूछती है? ये विराट स्वरूप यही सिखाता है कि तुम करता नहीं हो, तुम प्रवाह में बह रहे हो, और जिस दिन मनुष्य इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है उस दिन उसका डर खत्म होने लगता है। राजन, जो व्यक्ति इस विराट स्वरूप का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है वो संकीर्ण शरीर में नहीं जाता, वो विस्तार में विलीन होता है। इसीलिए ये ध्यान डरावना नहीं है, ये मुक्त करने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, विराट स्वरूप को केवल कल्पना मत समझना, ये चेतना की प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिससे मनुष्य छोटा सोचने से मुक्त होता है। राजन, अब तक तुमने सुना भगवान कैसे संपूर्ण सृष्टि है, अब अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा जब यही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो सबसे पहले कौन प्रकट होता है और क्यों सृष्टि शोर से नहीं मौन से शुरू होती है। सुखदेव जी धीरे से बोलते हैं, राजन अब तक तुमने जाना भगवान का विराट स्वरूप, अब मैं तुम्हें उस क्षण तक ले चलता हूं जहां कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना प्रकाश, ना अंधकार, केवल एक अनंत शांति। उस शांति में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। ये नींद थकान की नहीं थी, ये चेतना की पूर्णता थी। राजन, जब मनुष्य थककर सोता है तो वो अचेत होता है, लेकिन जब भगवान योग निद्रा में होते हैं तो वे सबसे अधिक सचेत होते हैं। उस मौन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, और फिर भी सब कुछ उत्पन्न होने वाला था। राजन, भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, धीरे धीरे शांत स्थिर, कोई शोर नहीं, कोई विस्फोट नहीं, उस कमल पर एक चेतना जागी, वही थे ब्रह्मा। राजन, ध्यान से समझो, सृष्टि किसी संघर्ष से पैदा नहीं हुई, सृष्टि किसी युद्ध से नहीं निकली, सृष्टि मौन से उत्पन्न हुई। आज का मनुष्य सब कुछ शोर से बनाना चाहता है, नाम, पहचान, सफलता, लेकिन भगवान दिखाते हैं जो सबसे बड़ा है वो सबसे शांत होता है। ब्रह्मा कमल पर बैठे हैं, चारों ओर अनंत शून्य, ना ऊपर ना नीचे ना दिशा ना संकेत। राजन, यही वो क्षण है जहां ज्ञान भी डर जाता है, क्योंकि जहां कोई आधार ना हो वहां अहंकार टिक नहीं पाता।
ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। और तभी उन्हें ये समझ आने लगता है, मैं कुछ नहीं जानता। राजन, यही स्वीकार ज्ञान की शुरुआत है। जब तक मनुष्य ये कहता रहता है मैं जानता हूं, तब तक वो सीख नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा से कुछ नहीं कहते, कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं, क्योंकि सृष्टि आदेश से नहीं, समझ से रचती है। राजन, अब अगले अध्याय में तुम देखोगे जब सृष्टिकर्ता स्वयं भ्रमित हो जाता है तब भगवान किस एक शब्द से उसे दिशा देते हैं, और वही शब्द मनुष्य को भी अंधकार से बाहर लाता है। ब्रह्मा अब भी कमल पर बैठे हैं, चारों ओर असीम शून्य, ना कोई दिशा, ना कोई संकेत, ना कोई सहारा। राजन, यही वो क्षण है जहां सृष्टिकर्ता भी डर जाता है, क्योंकि जिसने अभी अभी जन्म लिया हो और जिसके सामने अनंत फैला हो उसके लिए ज्ञान भी काफी नहीं होता। ब्रह्मा सोचते हैं, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, और अब मुझे क्या करना चाहिए। राजन, ये प्रश्न केवल ब्रह्मा का नहीं है, ये वही प्रश्न है जो हर मनुष्य अकेलेपन में अपने आप से पूछता है, जब चारों ओर भीड़ हो लेकिन भीतर खालीपन हो, तब यही प्रश्न उठता है। ब्रह्मा कमल की नाल के भीतर झांकते हैं, नीचे उतरते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ना आदि मिलता है ना अंत। राजन, यहां सुखदेव एक गहरी बात कहते हैं, जब तक मनुष्य बाहर उत्तर ढूंढता है तब तक वो भटकता रहता है, क्योंकि सृष्टि का रहस्य बाहर नहीं भीतर छुपा होता है। ब्रह्मा थक जाते हैं और पहली बार वे ये स्वीकार करते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। राजन, यही क्षण है जहां अहंकार टूटता है, और जैसे ही अहंकार टूटता है वैसे ही एक ध्वनि प्रकट होती है, ना कोई आवाज, ना कोई शब्दों की गूंज, बस एक स्पष्ट अनुभूति। तब राजन, ये कोई आदेश नहीं था, ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक दिशा थी। तब का अर्थ ये नहीं कि शरीर को कष्ट दिया जाए, तब का अर्थ है मन को स्थिर करना, इच्छाओं को शांत करना और चेतना को गहरा करना। ब्रह्मा समझ जाते हैं, जब तक मैं शांत नहीं होता तब तक सृष्टि प्रकट नहीं होगी, और वे तप में लीन हो जाते हैं। राजन, ध्यान रखो, भगवान तुरंत उत्तर नहीं देते, वे पहले मनुष्य को तैयार करते हैं, क्योंकि अधके मन को सत्य दे दिया जाए तो वो उसे भी भ्रम बना लेता है। तब के साथ साथ ब्रह्मा का अंतर्मन शुद्ध होने लगता है, और तभी उसी मौन में, उसी शांति में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन आंखों के सामने नहीं, चेतना के भीतर। राजन, यही नियम मनुष्य के लिए भी है, जब तक मन शोर करता है भगवान मौन रहते हैं, और जब मन मौन होता है भगवान बोलते हैं। अब अगले अध्याय में तुम सुनोगे भगवान ब्रह्मा को क्या ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान कैसे पूरी सृष्टि का आधार बनता है। तब के उस गहन मौन में ब्रह्मा अब अकेले नहीं है, कुछ बदल चुका है, वही शून्य, वही शांति, लेकिन अब डर नहीं है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो शून्य खाली नहीं लगता। राजन, तभी ब्रह्मा के भीतर एक प्रकाश जागता है, कोई रूप नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन स्पष्ट अनुभूति, भगवान अब निकट है। और उसी क्षण भगवान ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान शब्दों में नहीं था, ये सीधे चेतना में उतरा। राजन, भगवान कहते हैं, मैं ही सृष्टि से पहले था, मैं ही सृष्टि के समय हूं, और मैं ही सृष्टि के बाद रहूंगा। जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम नहीं देख पा रहे, सब मुझसे ही उत्पन्न है, और जो कुछ मुझसे अलग दिखाई देता है वो भ्रम है। राजन, यही भागवत का सबसे गहरा सत्य है। भगवान कहते हैं, मुझे तर्क से मत पकड़ो, मुझे कल्पना से मत बांधो, मुझे अनुभव करो, क्योंकि जहां अनुभव है वही मैं हूं। ब्रह्मा समझने लगते हैं, सृष्टि किसी योजना का परिणाम नहीं, ये चेतना का स्वाभाविक प्रसार है। राजन, भगवान आगे कहते हैं, भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, लेकिन जब दोनों एक साथ चलते हैं तब मुक्ति स्वाभाविक हो जाती है। ये सुनकर ब्रह्मा का अंतर्मन बाहर आता है, क्योंकि पहली बार उन्हें ये दिखता है कि वे अलग नहीं है, कि उनका अस्तित्व भगवान से जुड़ा हुआ है। राजन, यही ज्ञान मनुष्य को डर से मुक्त करता है, क्योंकि जो ये जान लेता है कि मैं अलग नहीं हूं वो खोने से डरता नहीं। भगवान अंत में एक गहरी बात कहते हैं,
जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का

केंद्र बना लेता है उसके लिए। कर्म बंधन नहीं बनते, वे सेवा बन जाते हैं। और जो मुझे जीवन से हटा देता है उसके लिए कर्म भारी बोझ बन जाते हैं। देव जी बोले, राजन, ब्रह्मा जी ने इसी ज्ञान के आधार पर फिर से जगत की रचना की। उन्होंने समय का विभाजन किया, युगों की गणना की और देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया। लेकिन ये सब करते हुए भी वे हमेशा उस चतुश्लोकी भागवत के सार को अपने हृदय में धारण किए रहे। यही कारण है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के स्वामी होकर भी उसके मोह में नहीं बंधे। शुकदेव जी ने परीक्षित को ध्यान की विधि समझाते हुए कहा, हे कुरुनंदन, यदि तुम उस निराकार तक नहीं पहुंच पा रहे तो भगवान के चरणों से ध्यान शुरू करो। पहले उनके चरणों का चिंतन करो, फिर उनकी जंघाओं का, फिर उनकी कटी का और अंत में उनके मुस्कुराते हुए मुखारविंद का। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, तुम्हें अनुभव होगा कि जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो वो तो तुम्हारे हृदय के आकाश में ही विराजमान है। परीक्षित अब पूरी तरह ध्यान मग्न थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे शुकदेव जी के शब्द केवल कान से नहीं बल्कि सीधे उनकी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा की गति अब फिर से तेज होने लगी। शुकदेव जी ने कहा, राजन, सृष्टि की ये प्रक्रिया बड़ी जटिल है। ब्रह्मा जी ने जब रचना शुरू की तो उन्होंने पहले अविद्या के 5 पर्व बनाए, फिर संकादि ऋषियों को जन्म दिया। लेकिन संकादि ऋषियों ने सृष्टि बढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि वे तो जन्म से ही विरक्त थे। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उस क्रोध से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। फिर स्वयंभुव मनु और शत्रुपा आए जिनसे मानव वंश चला। लेकिन समस्या तब आई जब पृथ्वी रसातल में समा गई। हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल के गहन अंधकार में छुपा दिया। बिना आधार के सृष्टि कैसे चलती, ब्रह्मा जी फिर से चिंता में डूब गए। वे सोच रहे थे कि अब पृथ्वी को बाहर कौन लाएगा, क्या वो विराट पुरुष फिर से कोई अवतार लेगा, क्या इस अंधकार का अंत होगा। शुकदेव जी के शब्द अब उस महाशक्तिशाली वरा अवतार की ओर संकेत कर रहे थे जिसके आने की आहट से पाताल का राजा हिरण्याक्ष भी कांपने वाला था। पृथ्वी डूब रही थी और पूरा ब्रह्मांड एक रक्षक की प्रतीक्षा कर रहा था। पृथ्वी रसातल की अथाह गहराइयों में समा चुकी थी और चारों ओर केवल प्रलयंकारी जल का सन्नाटा था। ब्रह्मा जी चिंता के सागर में डूबे थे। लेकिन इस महागाथा का एक सिरा हस्तिनापुर के उन गलियारों से भी जुड़ा है जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। शुकदेव जी बोले, राजन, जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के मोह और दुर्योधन के अहंकार ने सारी सीमाएं लांघ दी थी तब महात्मा विदुर ने शांति का अंतिम प्रयास किया था। लेकिन जब दुर्योधन ने उन्हें दासी पुत्र कहकर अपमानित किया और महल से निकल जाने को कहा तो विदुर जी ने बुरा नहीं माना। उन्होंने अपना धनुष द्वार पर रखा और इसे भगवान की इच्छा मानकर तीर्थाटन पर निकल गए। विदुर जी का ये त्याग ही उन्हें उस ज्ञान की ओर ले गया जिसे पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी तरसते हैं। भ्रमण करते हुए विदुर जी की भेंट यमुना के तट पर भगवान के परम सखा उद्धव से हुई। वहां उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण कर चुके हैं। इस समाचार से विदुर जी का हृदय फट गया। लेकिन उद्धव ने उन्हें ढांढस बंधाया और बताया कि भगवान ने अंत समय में विदुर जी को याद किया था और मैत्रेय ऋषि को आदेश दिया था कि वे विदुर को तत्वज्ञान का उपदेश दें। इसी आज्ञा का पालन करते हुए विदुर जी हरिद्वार पहुंचे जहां गंगा के पावन तट पर महर्षि मैत्रेय विराजमान थे। विदुर जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे ऋषिवर, संसार के लोग सुख के लिए कर्म करते हैं पर उन्हें केवल दुख ही मिलता है। कृपा कर मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मनुष्य शांति पा सके और मुझे उस आदि पुरुष के अवतारों की कथा सुनाए। मैत्रेय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। सुनो, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तब उनके मानस पुत्रों, संकादि ऋषियों और स्वयंभुव मनु ने तो अपना कार्य संभाल लिया लेकिन पृथ्वी का कहीं पता नहीं था। हिरण्याक्ष नामक महाबली दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर रसातल के गहरे और गंदे जल में छुपा दिया था। ब्रह्मा जी व्याकुल होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। वे सोच रहे थे कि अब इस संकट से कौन उबारेगा। तभी एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र नाक से अचानक एक अंगूठे के आकार का नन्हा सा वराह सुअर प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह नन्हा जीव आकाश में बिजली की तरह बढ़ा और पल भर में
एक विशाल पर्वत के समान विशाल हो गया। उसकी गर्जना से दसों दिशाएं कांप उठीं। आकाश में स्थित जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के ऋषि मुनि इस अद्भुत रूप को देखकर स्तुति करने लगे। वह वरा अवतार कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु थे। उनकी देह वेद की ऋचाओं से बनी थी, उनके रोम कुश के समान थे और उनकी आंखें सूर्य के समान चमक रही थी। भगवान वराह ने एक बार फिर भयंकर गर्जना की और अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर प्रलय के जल में छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि जल दो भागों में विभक्त हो गया। उन्होंने अपनी दिव्य नासिका से पृथ्वी की गंध को पहचाना और पाताल की अतल गहराइयों में उतरते चले गए। वहां उन्होंने देखा कि पृथ्वी असहाय भाव से जल के भीतर पड़ी है। भगवान ने अपने विशाल दांतों दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लिया और ऊपर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी वहां हिरण्याक्ष पहुंचा, कश्यप और दिति का वह पुत्र, जिसे वरदान मिला था कि उसे कोई भी ज्ञात जीव नहीं मार पाएगा। अहंकार में अंधा था, उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और अब वो वरुण देव को चुनौती देकर लौट रहा था। हिरण्याक्ष ने जब देखा कि एक विशाल वराह उसकी चुराई हुई पृथ्वी को ले जा रहा है तो वो अट्टहास करने लगा। उसने ललकारते हुए कहा, अरे ओ जंगली पशु, रुक जा, ये पृथ्वी मेरी संपत्ति है, तू इसे कहां ले जा रहा है? तू देवताओं की माया है, आज मैं तेरा वध करके इस जल को तेरे रक्त से लाल कर दूंगा। भगवान वराह ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका पहला कर्तव्य पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था। वे निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते रहे, जबकि हिरण्याक्ष अपनी गदा लेकर उन पर प्रहार करने की कोशिश करता रहा। जैसे ही भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर लाकर उसे उसकी कक्षा में स्थापित किया, वे हिरण्याक्ष की ओर मुड़े। समुद्र के भीतर एक ऐसा महायुद्ध छिड़ गया जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए। हिरण्याक्ष कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसके पास मायावी शक्तियां थी। उसने भगवान पर अपनी भारी गदा से प्रहार किया, लेकिन भगवान वराह ने खेल खेल में ही उसे अपनी गदा से दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष का क्रोध सातवें आसमान पर था। उसने अपनी गदा फिर उठाई और भगवान के मस्तक पर प्रहार करना चाहा, लेकिन भगवान ने उसे अपने पैर से ऐसे हटा दिया जैसे कोई हाथी किसी मच्छर को हटा देता है। हिरण्याक्ष ने अब अपनी माया का प्रयोग करना शुरू किया। आकाश में अचानक पत्थर बरसने लगे, चारों ओर घना अंधकार छा गया और भयंकर चक्रवात चलने लगे। असुर ने त्रिशूल से वार किया, पर भगवान ने उसे अपनी दाढ़ों से पकड़कर तोड़ दिया। हिरण्याक्ष ने अब अपनी मुष्टिकाओं से प्रहार करना चाहा। उस समय भगवान की आंखों में वह तेज था जो प्रलय काल की अग्नि में होता है। भगवान ने असुर के साथ थोड़ा मनोरंजन करने के बाद उसके कान के नीचे अपनी हथेली से एक ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल आई और वह निष्प्राण होकर जल में गिर पड़ा। साक्षात लक्ष्मीपति के हाथों मृत्यु पाकर वह दैत्य भी मुक्त हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पृथ्वी माता ने अपने उद्धारक की स्तुति की। मैत्रेय जी बोले, विदुर, भगवान के इस वराह रूप ने न केवल पृथ्वी को बचाया, बल्कि संसार को ये संदेश भी दिया कि जब भी अधर्म की शक्ति सत्य को दबाने की कोशिश करेगी, भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर उसका सहार करेंगे। हिरण्याक्ष के वध के बाद ब्रह्मा जी का कार्य सुगम हो गया। इसके बाद स्वयंभुव मनु ने अपनी दो पुत्रियों और तीन पुत्रों के माध्यम से वंश बढ़ाना शुरू किया। उन्हीं की एक पुत्री थी देवहूति। देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें भगवान जैसा ही पुत्र प्राप्त हो सके। कर्दम ऋषि और देवहूति की ये कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। कर्दम जी ने अपनी तपस्या के बल पर एक दिव्य विमान बनाया था, जिसमें बैठकर उन्होंने और देवहूति ने कई वर्षों तक गंधर्व लोकों का भ्रमण किया। लेकिन देवहूति का हृदय केवल सांसारिक सुखों में नहीं था, वह तो साक्षात भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती थी। समय आने पर भगवान विष्णु ने स्वयं देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। उनका नाम पड़ा कपिल। भगवान कपिल साक्षात ज्ञान के अवतार थे। उनके जन्म के समय आकाश से दिव्य दुमदुभियां बजी और ऋषियों ने उनका स्वागत किया। विदुर जी ने उत्सुकता से पूछा, हे मुने, साक्षात भगवान ने माता देवहूति को क्या उपदेश दिया? सांख्य शास्त्र क्या है जिसने माता को मोक्ष दिला दिया? मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, विदुर, कपिल मुनि ने अपनी माता को जो ज्ञान दिया वो इस संसार के बंधनों को काट देने वाली कुल्हाड़ी के समान है।
उन्होंने बताया कि ये मन ही है जो बंधन का कारण है और यही मन मोक्ष का द्वार भी है। जब मन विषयों में लगा रहता है तो जीव दुखी होता है और जब वही मन ईश्वर में लग जाता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान कपिल का वो शांत और तेजस्वी मुखमंडल अब विदुर की आंखों के सामने तैरने लगा। माता देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा था, पुत्र इस अंधेरे संसार में मेरा मन भटक रहा है, मुझे प्रकाश दिखाओ। कपिल मुनि के शब्द अब उस सांख्य योग की गहराइयों में उतरने वाले थे जहां आत्मा और प्रकृति का भेद स्पष्ट हो जाता है। विदुर जी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे कि कैसे एक पुत्र ने अपनी माता को ही गुरु बनकर मोक्ष की राह दिखाई। कथा अब भक्ति और ज्ञान के उस शिखर पर पहुंचने वाली थी जहां से संसार बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। क्या देवहूति अपने ही पुत्र के चरणों में बैठकर उस परम सत्य को पा सकेंगी जो ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है? मैत्रेय जी की वाणी अब उस अलौकिक संवाद का अनावरण करने जा रही थी। मैत्रेय जी बोले, विदुर, बिंदु सरोवर के तट पर वह दृश्य अत्यंत अलौकिक था जहां साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार कपिल मुनि अपनी माता देवहूति के सामने एक गुरु के रूप में विराजमान थे। कर्दम ऋषि ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुत्र प्राप्ति के बाद संन्यास ले लिया था और वे वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अब माता देवहूति अकेली थी लेकिन उनके पास संसार की सबसे बड़ी निधि थी, उनके पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा का ज्ञान। देवहूति ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे प्रभु, मैं इस अविद्या रूपी अंधकार में भटक रही हूं, मेरा मन इन इंद्रियों और विषयों के जाल में फंसा हुआ है। आप ही वो सूर्य है जो मेरे अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे ये संसार रूपी भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। भगवान कपिल ने अपनी माता की व्याकुलता देखी और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहना शुरू किया, माता, जीव की मुक्ति और बंधन का एकमात्र कारण उसका मन है। जब ये मन सांसारिक गुणों और विषयों में आसक्त होता है तब ये बंधन का कारण बनता है, लेकिन जब यही मन भगवान में अनन्य प्रेम के साथ लग जाता है तो ये मोक्ष का द्वार खोल देता है। ज्ञान और वैराग्य दो ऐसी तलवारें हैं जिनसे मोह के जाल को काटा जा सकता है। कपिल मुनि ने सांख्य योग का गहन रहस्य समझाते हुए बताया कि ये सृष्टि 24 तत्वों से बनी है, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और एक मन। यही वो क्षेत्र है जहां जीव भटकता रहता है, लेकिन इन सबसे परे 25वां तत्व पुरुष जो साक्षात ईश्वर है और इस प्रकृति का स्वामी है। कपिल देव की वाणी बिजली की तरह तीव्र थी, वे एक के बाद एक रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम। इन गुणों के प्रभाव में आकर ही जीव स्वयं को कर्ता मानने लगता है और कर्मों के फल में बंध जाता है। उन्होंने काल, समय की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि काल ही भगवान की वो शक्ति है जो बड़े बड़े ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है और फिर उन्हें लीन कर देती है। उन्होंने भक्ति

वाह, क्या खूबसूरत प्रस्तुति थी। फिल्म लोफर के गीत और संगीत बेहद मस्ती भरे थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का जादू भरा हुआ था। आइए इसी फिल्म का एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या समा बांध दिया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1974 की एक और सुपरहिट फिल्म आपकी कसम से, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थीं। इस फिल्म का झूमता हुआ संगीत दिया आरडी बर्मन जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म का संगीत उस साल का बिनाका गीतमाला की सरताज गीतों में भी था। आइए इसी फिल्म का एक मजेदार गीत सुनते हैं किरण नाडकर्णी और श्वेता सम्बासिवन जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1975 की फिल्म प्रतिज्ञा से है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थी। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी जी ये गाना गाते हुए नाच रहे थे और धर्म जी को बोले कि मैंने अपना काम कर दिया भाई, अब आगे आपका काम। इसी फिल्म से धर्म जी को उनका सिग्नेचर स्टेप भी मिला। आइए इसी फिल्म का ये मस्ती भरा गीत सुनते हैं संजय हारने और संजीव जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार प्रस्तुति थी। आइए अगला गीत सुनते हैं 1976 की मशहूर मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म कभी कभी से, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह थी। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और गीत लिखे साहिर लुधियानवी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट डायलॉग्स अवार्ड भी मिला। आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं मेरी और वरुण जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1976 की फिल्म नागिन से, जिसमें सुनील दत्त और रीना रॉय थीं। इस फिल्म का संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं तनुजा मुंद्रा और संजय गुप्ता जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी और आनंद जी ने और गीत लिखे अनजान ने। आइए इसी फिल्म का ये शानदार गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक और सुपरहिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थीं। इस फिल्म का बेहद मशहूर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं इंदिरा जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूं।
1: दीदी देखो ना, मेरी स्किन कितनी रफ और ड्राई हो रही है, और ये पिंपल्स। लेकिन आपका फेस इतना ब्राइट और ग्लोइंग कैसे है?
2: देख छोटी, तुझे कितना समझाया था कि ये केमिकल्स वाले प्रोडक्ट मत यूज किया कर। देख मेरे पास है जादू JMD का एलोवेरा जेल, जो कि 100% आयुर्वेदिक है और स्किन की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है।
1: अरे वाह, अब तो ये जादू मेरे पास भी है।
3: JMD, वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। आज हम भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक झिलमिलाता सितारा लेकर आए हैं, जो कि न सिर्फ अपने गीतों से बल्कि अपने काम से भी लोगों की जिंदगियों में खुशियां भर देते हैं। जी हाँ, अपने श्रोताओं की मुलाकात करवा रहे हैं जयपुर के जाने माने सर्जन डॉक्टर मनीष कल्ला से। स्टूडियो में स्वागत है आपका मनीष।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो के डिजिटल स्टूडियो के अंदर आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये हमारी खुशनसीबी है मनीष। तो सबसे पहले हमें आप जयपुर के बारे में बताइए। आज के समय में ये शहर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत जाना जाता है, और इसके साथ ही कुछ अपने बारे में भी बताइए।
2: सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जहाँ तक रहा सवाल जयपुर शहर का, जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिंक सिटी
1: जी,
2: एंड इस गुलाबी नगरी की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी खासियत यहाँ का खाना, यहाँ की रजवाड़ी पोशाकें और यहाँ के राजमहल, और इसी की वजह से पूरी दुनिया से लोग बाग यहाँ पर ना सिर्फ रहने के लिए बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग, रिसोर्ट इन सब के लिए आते हैं। मैंने, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने SLS मेडिकल कॉलेज, जो जयपुर राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां से मैंने अपनी डिग्री प्राप्त करी।
1: क्या बात,
2: मैं यही का पला बड़ा हूँ। और जहां तक रहा कि मेरी मदर भी डॉक्टर थी, और आज की तारीख में अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी।
1: अरे वाह, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई हमें। और इसी के साथ मनीष, हम आपका पहला गीत लेते हैं, क्या सुनवा रहे हैं हमें?
2: मेरी मदर का फेवरेट सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब, उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज की रात मेरे दिल की सलामी दे ले।
1: अरे
2: वाह, चूंकि मैं आया हूँ तो आप लोग मेरे दिल की सलामी दे।
1: जी जी जी जी, तो लीजिए आपका गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: बड़ी खूबसूरत सलामी आपके दिल ने दी हमारे श्रोताओं के लिए मनीष, मजा आ गया। तो पेशे से आप सर्जन हैं, बहुत ही बिजी लाइफ होगी आपकी। हम ये जानना चाहते हैं कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी और इस शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: मेरी संगीत की रुचि जो है वो मेरी नानी जी की वजह से बनी। मुझे मेरी नानी जी और नाना जी ने पाला पोसा, तो क्योंकि उन्होंने पाला पोसा तो मेरी नानी जी जो थी क्लासिकल म्यूजिक टीचर भी थी और सिंगर भी थी, तो वहां से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी कॉपी करते करते उनसे थोड़े बहुत गुर सीखते सीखते मैंने गाना शुरू किया। तो 5 साल की उम्र में जब स्कूल के अंदर मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ उस वक्त मेरी नानी जी थी वहां पे, तो यहां से मेरा संगीत का सफर शुरू हुआ।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज आप हमारे पास स्टूडियो में आए हुए हैं तो हम इस बात का फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ यहीं पर 2 लाइनें गुनगुना दीजिए अपने किसी भी पसंदीदा गीत का।
1: जी, ये अभिजीत जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, एक का दिल एक थी धड़कन मूवी से।
0: जी जी।
1: रेशम जैसी है राहें खोले हैं बाहें ये वादियां। और अभी बरसात के मौसम में इससे बेहतर गाना और कोई होगा।
0: वाह मनीष वाह, आपकी सुर और ताल की समझ की दाद देनी पड़ेगी, आपने बेहद खूबसूरती से समा बांध दिया। तो हम अपने श्रोताओं को जल्दी ये गाना सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि अपने शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: संगीत एक ऐसी दवा है जो सारे तरह मर्जों का इलाज है।
0: जी,
1: तो जहाँ कभी भी मैं थक कर आता हूँ और परेशान सा होता हूँ तो यही एक जगह है जो मुझे बना देती है। आता हूँ, सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, और इसी तरीके से मेरी जो टॉक्सिसिटी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी।
0: जी जी।
1: व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर और लेस मेंटल हेल्थ, म्यूजिक एक सबसे अच्छी थेरेपी है जो सारी की सारी टॉक्सिसिटीज को निकाल कर आपको एकदम से तरोताजा महसूस करवाती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जो एप्स बनी है उससे बहुत मदद मिल रही है। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि इस म्यूल ऐप पर डॉक्टर मनीष कल्ला एक जाने माने सिंगर हैं और इनकी एक बड़ी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है वहां पर। तो इसी के साथ हम आपका गीत सुनवाते हैं।

0: बहुत खूब मनीष। आजकल सोशल मीडिया पर आता रहता है अक्सर कि कुछ डॉक्टर्स अपने मरीजों के इलाज के वक्त नाचते भी हैं, गाते भी हैं। कोविड के वक्त से शायद ये चलन शुरू हुआ, तो क्या आप भी अपने पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा करते हैं?
1: ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझसे किया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर और जब मैं जूनियर सर्जन हुआ करता था, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोगों का ये सबसे रिवाज था। गाने चलते रहते थे वहां पर पुराने, मोहम्मद रफी साहब के, किशोर कुमार साहब के, और हम लोग गुनगुनाते रहते थे, हम लोग गाते रहते थे। उससे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती थी, और उसके साथ साथ जो कि सर्जरी का प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ रहा है वो निकल जाता था दिमाग से। तो हम लोगों की तो ये परिपालना ये काफी लंबे समय से है, और आज की तारीख के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगीत जो है वो आपकी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी की वजह से आज की तारीख के अंदर म्यूजिक थेरेपीज हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि पेशेंट को, और इस तरीके की चीजें आई हैं सामने जहां पर इवन कैंसर के मरीज तक म्यूजिक थेरेपी से उन लोगों का पेन काफी कम हुआ है। तो म्यूजिक बहुत ही अच्छा है मेंटल हेल्थ और पेन के लिए, इवन बच्चों के लिए भी। अगर आप जो है कुछ गुनगुनाते हैं तो उनको तुरंत से नींद आ जाती है, वो तुरंत से शांत हो जाते हैं। इट इज अ मेडिसिनल प्रेस्क्रिप्शन नाउ डेज।
0: क्या बात है, ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई है, और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि संगीत का क्या इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में। तो इन सभी दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: मनीष कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो कि उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा। महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कोशिश करता हूँ महादेव की कई भी चीजों के ऊपर आचरण करने का।
0: क्या बात?
1: इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पृथ्वी की कम बात करूँ तो मेरे नाना नानी का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया। मेरे अंदर जो भी वैल्यूज डाली गई उनके थ्रू डाली गई। एंड उसके बाद मैं मेरी माँ का, क्योंकि मेरी माँ अगर डॉक्टर नहीं होती तो मैं नहीं होता, ये बात मैं पहले भी बता चुकी
0: हूँ। जी जी।
1: और इन सारी चीजों के साथ साथ जिस एक और इंसान का जिसका मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, वो है मेरी अर्धांगिनी ऋचा।
0: वाह, क्या बात है।
1: मेरे सपोर्ट में अगर वो नहीं खड़ी होती तो जितनी जगहों पर मैं बाहर गया आज की तारीख में भी मैं अफ्रीका में हूँ। मैं अफ्रीका में सिर्फ इसीलिए हूँ कि कहीं ना कहीं उसने मुझे ये संबल दिया हुआ है, ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि नहीं आप वहाँ पर काम कीजिए, मैं यहाँ पर परिवार संभालती हूँ।
0: जी,
1: तो ये सारी चीजें, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमेन, इट इज नॉट दैट शी इज नॉट अ वर्किंग वुमेन। तो ये सारी की सारी चीजें, कई सारी जगहों पर उसने भी सेक्रीफाइस किया है, कई सारी जगहों पर मैंने भी सेक्रीफाइस किया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इफ शी हैड नॉट सपोर्टेड मी आई वुड नॉट हैव बीन इन दिस राइट नाउ।
0: बहुत ही आप धरती के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में मनीष जी बात यह है कि बहुत लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो वाकई श्रेय अपने परिवार वालों को देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। तो हम और हमारे श्रोता चाहेंगे कि इन सब के लिए जिनको भी आपने श्रेय दिया है, आपकी अर्धांगिनी, आपकी मम्मा और आपके नानी नानू, उनके लिए आप एक गीत हमें प्यारा सा सुनवा दीजिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष कल्ला। आपसे ये गुफ्तगू बहुत ही मजेदार रही। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कह जाइए।
1: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर आपके और आपके श्रोताओं के समक्ष खड़ा हूँ।
0: थैंक यू।
1: और श्रोताओं के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि संगीत गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात डॉक्टर मनीष कल्ला के साथ, जो कि जयपुर के जाने माने सर्जन हैं और फिलहाल साउथ अफ्रीका में किसी काम से वहां पर रह रहे हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में उन्होंने आने के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ टाइम निकाला। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहे। रब राखा।

0: महफिले गजल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्ते, आदाब। सुनने वालों को लक्ष्मी का प्यार भरा सलाम। आओ झूमे गाए के जानिब, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आज के इस महफिल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जगजीत जी ने बेशुमार गजलों को अपनी रूह परवर आवाज से सजाकर हमेशा के लिए हयाते जावेदा बख्शती है। ताहम कुछ अनमोल जवाहरात हैं जिनमें खूबसूरत शायरी, बेपनाह मौसीकी और अजीम पेशकश मौजूद हैं। उन्हीं नायाब मोतियों में से एक मोती यानी एक एल्बम को रेयर जेम्स का एजाज हासिल है। आज के महफिल के फनकार उसी एल्बम से कुछ चुनिंदा गजलों को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी जनाब मनीष सूद जी को। वे हमारे लिए पेश करेंगे जब भी आती है तेरी याद, जिसके शायर हैं कृष्ण अदीब साहब। मनीष सूद जी।

वाह मनीष जी, आफरीन आफरीन, क्या खूब पेशकश थी। ये थे मनीष सूद जी अपने खूबसूरत अंदाज और गुदाज भरी आवाज में इस गजल को इन्होंने पेश किया। दोस्तों, हमने अभी अभी सुना था कि जब हमें और आपको किसी की याद आती है तो हमारी कैफियत क्या होती, लेकिन क्या आलम होगा जब वह शख्सियत आपसे रूबरू हो। ना मजा है दुश्मनी में, ना है लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता, कोई यार यार होता। तो चलो हम चित्रा सिंह जी की पुरसोस आवाज में पेश करदा दाग दहलवी की एक हसीन गजल को समाप्त करते हैं। जयपुर रेडियो के लिए इसे पेश करने आ रही हैं शोमा सी रॉय। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता,

वाह, बहुत खूब शोमा जी, बेहतरीन पेशकश। दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे की चाहत में जज्बातों की आंधी से गुजरते हैं, वह जज्बा है इश्क। लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं, जिंदगी न देख जलवाए आफताब बन, शौक को रहनुमा बना जर्रे में रोशनी न देख, क्योंकि इश्क फना का नाम है। इस खूबसूरत गजल को अपनी सुरीली आवाज में पेश करने आ रही हैं अनुराधा जी।

वाह अनुराधा जी, बहुत खूब। ये जयपुर रेडियो पर आपकी पहली पेशकश थी जिसे आपने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, आपका ये सफर यूं ही चलता रहे। दोस्तों, जनाबे जिगर मुरादाबादी ने ना सिर्फ उर्दू गजल को एक पहचान वो परवाज बख्शी बल्कि शहनशाह तगज़ल का खिताब भी हासिल किया। इनकी एक मशहूर गजल जो इंसानी जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में बयां करती है, सुनते हैं इसे डॉक्टर अंकित अवस्थी की आवाज में। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां, जनाब अंकित अवस्थी जी।

वाह अंकित जी, सदाफरी। दोस्तों, गजल एक ऐसा फन है जिसमें महबूब से बातें होती हैं। इश्क मोहब्बत के जज्बात को लफ्जों में पिरोकर गुनगुनाया जाता है, साथ ही साथ गजल के जरिए शिद्दते गम का भी इजहार किया जाता है। इसमें टूटे हुए दिलों के लिए मरहम मुदावा का भी सामान होता है। अब हम दावत देते हैं आशुतोष भट्ट जी को, ये पेश करेंगे कृष्णा अदीब जी की ये नज्म शहरों शहरों आज है तन्हा, जनाब आशुतोष भट्ट जी।

वाह आशुतोष जी, बहुत खूब, क्या कहने, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, 19वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का जाहो जलाल अब जवाल का शिकार हो चुका था। तभी दिल्ली उर्दू के अजीम शायरों का मरकज बन गया था, जिनके शहंशाह मिर्जा असदुल्ला खान गालिब थे। गालिब साहब न सिर्फ इश्को मोहब्बत और सोजो शराब की बातें करते थे, बल्कि जिंदगी की नशेब व फराज के बारे में भी अपने ख्यालों और जज्बों का इजहार करते थे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उन्होंने तकरीबन आधी जिंदगी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपना मुकदमा पेश किया और सालों पेंशन की बहाली के लिए कानूनी चाराजोई करते रहे। और ये ऐसी शख्सियत थी जिसकी शायरी इस्तियारों से पुर थी। वह अपनी एक गजल में मजाक से भरा एक कानूनी इस्तियारा यूं पेश करते हैं। फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार ए फौजदारी है। तो चलिए सुनते हैं संजीव नागर जी की आवाज में इस बेहद खूबसूरत गजल, जनाब संजीव नागर जी।

0: वाह संजीव जी, क्या कमाल का फन आपने पेश किया है। दोस्तों, आज की ये हसी शाम जिससे हम सब सामाए लुत्फंदोज हो रहे थे, अब मंजिल की आखिरी पड़ाव पर है। मैं लक्ष्मी बालचंद्रन अपने तमाम सुनने वालों और जयपुर रेडियो का शुक्रिया इस शेर से अदा करना चाहती हूँ। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम बातें दिल की, और बातें दिल की लेके आई है।

0: सुषमा के साथ है जाने माने नाट्य निर्देशक, लेखक और रंगकर्मी अशोक राही। इस प्रोग्राम के टेक्निकल निर्देशक हैं ओपी शर्मा।
1: नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कहते हैं जीवन बनता है पलों से, और कोई भी पल तब खूबसूरत हो जाता है जब उसमें कुछ खास बात हो जाए। ऐसी ही खास बातों से तो सजा है हमारा जीवन। तो हमारी बातचीत में हम तलाशेंगे अपने खास मेहमान के खास पल, इन बातें दिल की। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हफीज बनारसी की ये पंक्तियां हमारे आज के मेहमान की जीवन यात्रा या यूं कहे कर्म यात्रा पर सटीक बैठती हैं, जो पिछले 45 वर्षों से रंगकर्म से जुड़े हुए हैं और अपनी कला के रंगों से नित नई तस्वीर बनाकर सभी को आकर्षित करने का फन रखते हैं। राजस्थान के जाने माने नाट्य लेखक, निर्देशक, व्यंगकार श्री अशोक राही, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड, सवाई माधो सिंह कला अवार्ड, बेस्ट थिएटर प्रमोटर अवार्ड हरियाणा, ऐसे बहुत से अलंकरण के अलावा दर्शकों के दिलों के प्यार को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए हर नए पल में कुछ नया रचने की कला के महारथी हैं। नमस्कार अशोक राही जी।
2: नमस्कार। नमस्कार सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
1: आपके दिल की बातें जानने का मौका आज हमारे पास आया है, तो लेके चलिए हमें अपने बचपन के शहर, घर आंगन में, और उस पल में जब आपके मन में ये विचार आया कि पहली बार कि कलम और रंगमंच आपके जीवन साथी बनेंगे।
2: असल में जैसा कि अक्सर होता है, कई बार हमारे जो बचपन में जो हमारी स्मृतियां होती हैं, बचपन में जो हम जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल का आदमी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ये तो दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हुआ। बचपन में मैं अपनी बुआ जी के साथ रामलीला और इस तरह हमारे शहर में, मैं आपको बताऊं कि मैं एक छोटा सा शहर है अलवर, उसका रहने वाला हूं, तो उस शहर में ये रामलीला होती थी, भर्तृहरि महाराजा भर्तृहरि नाटक होता था, तो बहुत 4-5-6 साल का था तब वो देखने जाते थे, तो उसका कुछ प्रभाव रहा होगा। और उसके बाद में ये संयोग की बात है कि मेरे पिता सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, हमारे सिनेमा हॉल थे राजस्थान में 2-3, और मैं बचपन में, मेरा जो खेलने का समय था वो ज्यादातर सिनेमा हॉल में बीतता था, कि स्कूल से आए अपना बस्ता घर पे पटका और जाके सिनेमा में बैठ गए, और ऐसा भी नहीं कि कोई पूरा सिनेमा देख रहे हैं, पर कभी 10 मिनट देखा, कभी 15 मिनट देखा, कभी ना देखा, तो इस तरह वो उस जमाने की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये 1965-66-67-68 उस जमाने की जो फिल्में थी वो बहुत प्रभावशाली फिल्में हुआ करती थी। राज कपूर साहब थे, राज कपूर की संगम उन दिनों मैंने जितनी भी मेरे समझ में आई देखी, देवन साहब की गाइड देखी, दिलीप कुमार साहब की जो गंगा जमुना फिल्म है वो देखी, मनोज कुमार की उन दिनों बड़ा नाम था, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी शहीद, और उसके बाद में उपकार फिल्म आई उनकी, तो ये सारी फिल्में देखते देखते उनका संगीत, वो सारा माहौल हो सकता है कि वो मेरे दिमाग में रहा हो। और फिर कॉलेज के जमाने में जब मैं पढ़ता था, मैंने पहली बार मैं नाटक से जुड़ा जी सुषमा
1: जी। तो नाट्य लेखन की यात्रा यूं कहें कि तब से आरंभ हुई जब आप कॉलेज में पढ़ते थे।
2: जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नाट्य लेखन की यात्रा तब से शुरू नहीं हुई, नाटक के प्रति जो अनुराग है, कला के प्रति जो बात है दिल में कि ये कुछ है, कुछ करना चाहिए। वैसे मूलतः मैंने विज्ञान पढ़ी है, आपने भी विज्ञान पढ़ी है मुझे पता है, तो लेकिन विज्ञान के साथ साथ ये कला के इस क्षेत्र में फिर कुछ जीवन चला जाएगा ये उस समय नहीं सोचा था। मैं ऐसा कोई सोचता भी नहीं है मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा, अपन लोग कहते हैं कि बच्चे बचपन से ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, एक धारा होती है जो उस तरफ उसको ले जाती है, और वो अवचेतन की धारा होती है। जी सुषमा जी,
1: बहता चला जाता है उस धारा में। तो ऐसा ही जो असर आप पर फिल्मों में डाला या नाटकों ने डाला, वो

0: आगे जाकर आपके जीवन से जुड़ गया, लेकिन उस समय शायद आपका भी यही मानस रहा होगा जैसे उस वक्त सोचते थे सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कि पढ़ ले और उसके बाद एक नौकरी मिल जाए, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैंने ये किया कि अपना अपना जो जो ये नाटक का और अभिनय का, और विशेषकर उस समय साहित्य का, साहित्य से जुड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू से ही, बचपन से ही रहा। उस जमाने में बहुत साहित्य भी ऊंचे दर्जे का साहित्य पढ़ा, हालांकि ऐसा नहीं है, उस समय इब्ने सफी और ओम प्रकाश शर्मा और इनके उपन्यास भी, वेद प्रकाश कांबोज, इनके जासूसी उपन्यास भी बहुत पढ़े जाते थे, हम 10वीं 11वीं में थे, वो भी पढ़े। लेकिन
0: उसी
1: उसके
0: साहित्य ने आप
1: जी
0: पर असर डाला।
1: जी जी जी और साहित्य भी, लिटरेचर भी पढ़ा। जी हाँ जी सुषमा
0: तो
1: जी,
0: नाट्य लेखन की यात्रा हमें बताएं, कब से आरंभ हुई?
1: असल में नाट्य लेखन, जब नाट्य लेखन तो मेरा बहुत बाद में शुरू हुआ। शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत में हमारा शहर, मैं अपने शहर के की नाट्य उसके बारे में बताता हूँ, अलवर शहर की जो बात कर रहा हूँ,
0: हाँ
1: वहां पर एक नाटक होता है, उस नाटक का नाम है महाराजा भर्तृहरि,
0: जी
1: और वो कमाल का पारसी रंगमंच का, पारसी शैली का एकमात्र नाटक है जिसको अलवर शहर आज भी जिंदा रखे हुए है। प्रतिवर्ष उस नाटक के दशहरे से लेकर दीपावली तक लगभग 15-20 प्रदर्शन होते हैं, और हर प्रदर्शन में कम से कम 8-10 हजार लोग उस नाटक को देखते हैं, टिकट से देखते हैं, टिकट खरीदते हैं, और अब तो मेरे ख्याल से उसका टिकट 500, 300 रुपए, 500 रुपए इस तरह का है,
0: जी
1: हमारे जमाने में बहुत कम 1 रुपए 2 रुपए का हुआ करता था। और वो नाटक एक पारसी रंगमंच की परंपरा को लेकर चल रहा है, तो ऐसे नाटक उस शहर में हमने, उस जमाने में मेरे दोस्त हुआ करते थे, दुर्भाग्य से अब वो नहीं रहे हमारे साथ, ईश मधु तलवार नाम के एक दोस्त थे, बलवंत तक्षक नाम के एक दोस्त थे, देव कुमार मुखर्जी नाम के एक दोस्त थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने शहर में एक आधुनिक रंगमंच की धारा शुरू की जाए, तो उसके दौरान हमने वहां पर सबसे पहले नाटक शुरू किए, और पहला नाटक हमने शुरू किया एक अनिल बर्वे नाम के एक बहुत बड़े मराठी के एक लेखक थे, और उस जमाने में 1980 में उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था, थैंक यू मिस्टर ग्लाड,
0: ओके।
1: बाद में उस नाटक के ऊपर फिल्में भी बनी, कालिया और दूसरी फिल्में, वो कमाल का नाटक था। उस नाटक को हमने अपने शहर में मंच एक और उस नाटक को, वो नाटक इतना सफल रहा, मेरे ख्याल से 1-2 हजार लोगों ने उस नाटक को देखा और बहुत बहुत पसंद किया,
0: जी
1: तो वो एक बुनियाद था नए रंगमंच की मेरे लिए भी, और मैंने उसको नाटक को निर्देशित भी किया था, हालांकि उस समय मैं बहुत युवा था, मन में बहुत डर भी था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो नाटक सफल रहा, क्योंकि हमने उसको तैयारी करने में बहुत मेहनत की थी।
0: तो मेहनत
1: मैं
0: आपकी रंग लाई
1: जी
0: और
1: जी
0: ये जो मेहनत का दौर था ये शुरू हो गया आपकी जिंदगी में और जिंदगी का हिस्सा बन गया, और यही मेहनत आज आपको इस सक्सेसफुल यू कहें कि एक मंच पर उसने खड़ा कर दिया है।
1: सुषमा जी, मैं एक मेहनत के ऊपर ही एक बड़ी जोरदार बात, जो मेरे जीवन का अनुभव है ना, वो अपने नए मित्रों को, सुनने वाले मित्रों को जो हमारा रेडियो सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन कमाल की बात है, वो ये है कि मेहनत गुमनामी में कीजिए, मेहनत गुमनामी में कीजिए, सफलता आपका शोर मचाएगी।
0: क्या बात है, बिल्कुल
1: अगर आप परिश्रम से जुड़े हुए हैं किसी भी कला से, कोई सी भी कला हो, मैं अपने नए साथियों को यही कहता हूं कि आप उसको मन से, दिल से प्रेम कीजिए उस कला को, और आप ये देखिए पूरा पूरा एक इतिहास है कला, कला क्षेत्र में इतिहास है, राजनीति में, साहित्य में, कि जो लोग मन से जुड़े वो सफल हुए।
0: तो नाट्य लेखन की यात्रा की बात हमने की जिसकी शुरुआत अलवर शहर से हुई और फिर उसकी धूम जयपुर में मची और अब तो पूरे राजस्थान में इसकी धूम है, राइट?
1: जी जी
0: कौन
1: जी
0: से
1: हाँ
0: कौन सा वो वर्ष था जब आपका पदार्पण हुआ जयपुर में?
1: मैं जयपुर में आया था 1987 में, काफी बरस हो गए, अब तो कोई पूछता भी है कि कहाँ के रहने वाले हो तो मुंह से निकलता है जयपुर का रहने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ फिर बस जाता है आदमी का वही घर हो जाता है। हम वैसे तो हम राजस्थान के देश के, अब मैं तो सच्ची बात बताता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो पूरी जो यूनिवर्स है उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, क्योंकि कलाकार के लिए तो अब यही है, ये सारा सारी देश दुनिया सब अपनी है, यही हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया है कि अखिल विश्व हमारा घर है।
0: एक हास्य व्यंगकार के रूप में आपने प्रसिद्धि हासिल की है, खास तौर पे कहूँ कि ये आपका जॉनर रहा है जिस पर आप लिखते भी हैं और बहुत से नाटक आप मंचित करते हैं। इसके अलावा आपने पीपल्स मीडिया एंड थिएटर की शुरुआत की और उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं, ये ड्रामा ग्रुप ने शुरुआत इसकी। राजस्थान पत्रिका में लगातार 20 साल तक व्यंगात्मक बातों से परिपूर्ण कॉलम लिखना और सबको हर दिन एक सोच दे देना कि हाँ इस पर सोचना बहुत जरूरी है एक आम जन को, बात करामात के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहा, इतनी चीजों के लिए ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है?
1: देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि लेखन हो या साहित्य हो, जो सारा उपजता है, और एक एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ, वो सृजन प्रक्रिया के बारे में है। मैं घासी गंगी की भी बात करूंगा लेकिन पहले सृजन प्रक्रिया की बात करूं। आप किसी भी लेखक से ये पूछिएगा कि आप लिखते कैसे हैं, मेरे ख्याल से इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, आप वो उत्तर दे ही नहीं पाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई मुझसे पूछता है कि आपने इतना इतने बरस तक 20 बरस तक हजारों लिखे हैं, प्रतिदिन लिखता था, कैसे लिखता था? मैं अब अपने लिखे हुओं को मैं स्वयं खुद पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि भगवान क्या ये मैंने लिखा है। मैं यकीनन बात बता रहा हूं इसमें। अच्छा एक इसको, इस बात को ही मैं दूसरी तरह से भी जोड़ के बताता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ये कहा गया है और ये धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि हमारे यहाँ जैसे वेद हैं, वो कहा गया है कि ये वेद ईश्वरीय रचना है। इसी तरह कुरान के बारे में भी यही कहा गया है कि वो ईश्वरीय रचना है, ईश्वर ने रचा है उनको, ये ऊपर से आई है नीचे। वेदों के बारे में भी यही कहा गया है और यही बात बाइबल के बारे में भी कही गई, ये वो ईश्वर के द्वारा रची गई रचना है जो आई है। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं उसको उस तरह नहीं ले रहा जो एक धार्मिक परंपरावादी लोग रहते हैं लोग लेते हैं। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि ये मनुष्यों के द्वारा रची गई है, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि उस मनुष्य को भी बिल्कुल पता नहीं होता जब वो अपना रचना लिखता है कि वो उसने कैसे लिख दी। एक बहुत बड़ी बात है, और आप चाहे इसमें गालिब को पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, वो सब तुलसी को पढ़ लीजिए, वो अपनी रचना प्रक्रिया में ये बात जरूर कहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि ये हमने कैसे लिख दी। हालांकि लोग उसको कहते हैं कि ये इन्होंने विनम्रतावश कही है, लेकिन वो बात विनम्रतावश नहीं कही है, वो बात बिल्कुल सच है
0: जी।
1: इसको अंधविश्वास के रूप में न ले हम ये, मेरा कहने का मतलब है कि आदमी के जीवन के अनुभवों का उसके जो निचोड़ होता है, जो वो सारी जिंदगी चीजों को देखता है, जो उसके मस्तिष्क में जाके पक जाती हैं और वो उस निकलती हैं
0: शब्दों के माध्यम से, फिर वो
1: शब्दों के माध्यम
0: पर निकलती हैं, बिल्कुल
1: वो निकलती
0: और
1: हैं।
0: कुछ ऐसा भी होता है कि हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है या हम कुछ ऐसा लोगों में देखते हैं, तो आपकी जो एक किसी को देखने की या किसी प्रक्रिया को समझने की शक्ति आपके अंदर होती है तभी आप उसे कर पाते हैं, वैसा कर पाते हैं
1: निश्चित रूप से। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सुषमा, आप वाणी से जुड़ी हुई हैं, बोलने के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, आप क्या अनेकों बार ऐसा नहीं होता है कि आप माइक्रोफोन के सामने हैं और उस समय आप बोल रही हैं और आपको अपने आप शब्द आपके सामने आते जा रहे हैं, अपने आप वाक्यों की बुनावट होती जा रही है, ये कैसे होता है?
0: हाँ वो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सही कह रहे हैं आप। और हमारे भीतर से वो बात आती है, लेकिन वो जो भीतर बात समाहित हुई है वो शायद हमारे अनुभवों का ही सारा का सारा जो एक निचोड़ है वो हमारे भीतर होता है और वही हम सब तक पहुंचाते हैं। हमें जो एक्चुअल लाइफ में अनुभव हुए होते हैं हमारे आसपास के व्यक्तियों की वजह से या हमारे आसपास की परिस्थितियों की वजह से वही बाहर आते हैं, वो आपका मानना बिल्कुल सही है।
1: अब देखिए, अब हास्य व्यंग्य पे आते हैं अपन। हास्य में या व्यंग्य में प्रतिदिन मुझको लिखना है, एक निश्चित समय पे लिखना है, अखबार छपेगा, चाहे मेरी तबीयत खराब है, चाहे मेरे घर में कोई खुशी है, चाहे मेरे बेटे का ब्याह है, चाहे ये है कि मेरी नानी का स्वर्गवास हो गया और मुझको, लेकिन मुझको लिखना है
0: जी।
1: क्योंकि अखबार आप इस बात का इंतजार नहीं करेगा, तो आपको तो लिखना ही है। अब उस सारी प्रक्रिया के अंदर प्रतिदिन, और मुझको इस बात का गर्व है कि 20 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने वो ना लिखा हो
0: जी।
1: तो ऐसा थोड़ी हुआ कि मेरी जिंदगी में ये सारे जो होते रहते हैं ये नहीं हुए, लेकिन लेकिन एक नियमितता कि लिखना है तो वो लिखा। और अब बहुत सारे युवा मित्र पूछते हैं कि आपके आइडिया कहां से आते हैं
0: जी।
1: देखिए, ये भी मैं आपको बताता हूं, अगर मैं अपने दोस्तों से और विशेषकर आपके माध्यम से, अपने एफएम के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिमाग को, अपनी इंद्रियों को खुला रखेंगे, आंख को और कानों को खुला रखेंगे, तो आपको आइडिये कहीं से भी मिल जाएंगे। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, आप कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे हैं, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपके घर में कोई कोई बुजुर्ग महिला आई है, वो अपने अनुभव बता रही है, आइडिया वहां से मिल जाएंगे आपको। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं और वो ही सर्वश्रेष्ठ होंगे, और आप उनको फिर उस, अब ये क्षमता तो आप में होनी चाहिए कि उनको आप
0: ग्राह्य शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ ऐसे किस्से कहानियां कभी जीवन में जरूर हो जाते हैं और लेखक तो उन्हें कलमबद्ध कर देता है, मतलब ऐसे वाक्ये जो आपके नजरिए को ही बदल डालते हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ आपकी जिंदगी में भी जो जिन्होंने आप पर असर डाला और बहुत बार आपकी जो एक सोच चल रही थी वो बदल गई, डायरेक्शन बदल गया?
1: देखिए, यहाँ पे मुझको कबीर याद आ रहे हैं, और कबीर ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है, और वो कहा है कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभास। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी इत्र फरोश के साथ बैठे हुए ही हैं, बेशक वो आपको इत्र देगा नहीं, लेकिन उसके साथ बैठने से उसकी जो खुशबू है इत्र की, उसके इत्र की खुशबू, वो तो आपके इर्द गिर्द मन रहेगी, वो तो आपको उल्लासित करेगी, आनंदित करेगी।
0: बिल्कुल,
1: संगत का बड़ा महत्व है सुषमा जी, आप किस संगत में बैठते हैं। अगर आप विद्वान लोगों की संगत में, विद्वानों का देखिए, यहाँ विद्वानों का मतलब ये नहीं कि कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ
0: बैठे,
1: नहीं नहीं नहीं, विद्वानों से मतलब है कि जीवन के अनुभवों से पके हुए। जैसे बात करामात में मैं सबसे ज्यादा जो बातें लिखता था वो मेरी नानी की लिखता था, जो मेरी नानी ने बचपन में मुझको बातें करती थी, उसकी हरकतें कैसे बात करती थी। मैं सबसे ज्यादा बातें, एक मेरा दोस्त था राधे, वो नहीं रहा, वो बिल्कुल लेमैन था, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और उस राधे के साथ जो मैं बीतता था, बैठता था, उसकी बातें मैं, राधे की बातें लिखता था, तो वो लोगों को बड़ी पसंद आती थी, वो कहती वाह वाह यार आप तो कमाल करते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है जी।
0: जी बिल्कुल, रंगमंच आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, या यूं कहूं कि मतलब जो आपकी लाइफ सेंटर्ड रही है वो रंगमंच को लेकर रही है, राइट?
1: जी,
0: रंगमंच को आपने बहुत महत्व दिया है और इसी क्षेत्र में आप अब बहुत सारे बच्चों को भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं अपने वर्कशॉप्स के द्वारा, ये जो रंगमंच होता है इसका हमारे जीवन में किस तरह महत्व होता है, किस तरह आप जीवन यात्रा को जोड़ते हैं एक रंगमंच से?
1: देखिए, मैं पुनः नई पीढ़ी को एक दिलचस्प छोटी सी कुछ कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो उनको बहुत याद रखना चाहिए। एक छोटे से चार लाइनें हैं, किसी शायर ने लिखा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, तुम ही संभाले हो गिरती हुई दीवारों को अब वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।
0: बहुत खूब।
1: ये बुजुर्गों की निशानी को संभालना, यहां बुजुर्गों की निशानी का मतलब ये नहीं कि हम उनके घर को संभालें, हम वो जो रिवायत है, जो संस्कार है हमारी, जो हमारे पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में है, इन संस्कारों को संभालना। और थिएटर में भी यही है। देखिए, थिएटर हमारे यहाँ सबसे, सारे विश्व में सबसे पुरानी जो परंपराएं हैं वो हमारे देश में मिलती है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जो हजारों बरस पहले की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनान के अंदर भी सैकड़ों साल पुराना रंग, हजारों बरस पुराना रंगमंच है, लेकिन हमारी परंपरा यूनान के जो रंगमंच है, यूनानी रंगमंच से भी पहले की है। और पश्चिम में तो स्टैनलिवस्की वगैरह, वो तो 19वीं सदी के लोग हैं वो तो
0: जी,
1: बाकी जो कुछ है। तो इस परंपरा को जो हमारे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, उस परंपरा के अनुसार अपना नाटक करना। और मेरा उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी को मैं यही सिखाता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने, और उन्होंने तो नाटशास्त्र पढ़ने में तो आदमी की सारी जिंदगी गुजर जाए तो भी वो उसको नहीं समझ सकता। इतनी सारी बातें उन्होंने इतने बारीक ढंग से लिखी गई हैं, वो पता नहीं भरत मुनि एक थे या कई पीढ़ियों ने वो लिखा है, इस बात की दूसरी बात है। नई पीढ़ी को मैं ये समझाना चाहता हूं कि नाटक जो एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं समाहित हैं। देखिए, नाटक में संवाद अदायगी, बोलने की कला है, नृत्य है, अंग संचालन है, नाट्य तो है ही उसके अंदर, इसके अंदर संगीत है, नाट्य संगीत, मनोविज्ञान है, सामूहिकता है। किसते नाटक कोई एक आदमी नहीं कर सकता, नाटक के लिए बड़े एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है
0: जी,
1: वो एक समूह की। और ये सारी की सारी चीजें जो मैनेजमेंट है, जिसको सिखाया जाता है, जिसको लाखों 10 लाख रुपए फीस होती है अच्छे कॉलेज में MBA की फीस, ये की ये बातें वहां पे भी सिखाई जाती हैं। वो ठीक है, वो एक व्यवस्थित रूप से उनकी एक भाषा है, उनकी एक थ्योरी है, उनका एक सब कुछ है, लेकिन नाटक में भी वही चीजें सिखाई जाती हैं। नाटक में अनौपचारिक ढंग से सिखाई जाती है, नाटक में उसको कलात्मक ढंग से सिखाई जाती है। और यही कारण है कि पिछले दिनों सुषमा जी अलग अलग डिसिप्लिन के जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं वो बच्चे, जो बच्चे MBBS कर चुके हैं वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो PhD कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट बन गए वो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे कि जो अपना भविष्य ही इस कला माध्यम में तलाशते हैं कि हमको तो मुंबई जाना है और अभिनेता बनना है
0: जी।
1: तो ऐसे सैकड़ों बच्चे मेरे जीवन में, सैकड़ों तो हो सकता है कि 1000 के आसपास संख्या हो गई हो, क्योंकि हर बरस 50-60-100 बच्चे आ जाते हैं, तो हजारों बच्चे मेरी जिंदगी में आए। और वो देखिए, मैं एक बात और बताता हूँ सुषमा जी, कि कोई जरूरत नहीं है कि आप उस कला को अपनी जीविका का भी साधन बनाए, कोई सी भी कला हो, चाहे संगीत की कला है। मैं आपकी बात करता हूँ, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने भी शुरुआत संगीत से की थी ना
0: जी,
1: गायिका थी आप, प्रसिद्ध गायिका रही थी, आपने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी जीता है
0: जी, जी, जी।
1: लेकिन वो सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं और उसके जीवन को एक अच्छा बनाने में, एक जिसको कहते हैं प्रफुल्लित करने के अंदर ये सारी कलाएं काम आती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप नाटक से जुड़े, आप बोलने से जुड़िए, आप पेंटिंग से जुड़िए, आप नृत्य से जुड़िए, आधुनिक नृत्य कीजिए। कोई वो ऐसा नहीं है कि आप भरतनाट्यम या कथक या कथकली करेंगे, अब जो आधुनिक नृत्य है उसकी जो कोरियोग्राफी आजकल करते हैं उससे जुड़िए।
0: यानी आर्ट को अपनी लाइफ में एक वो इम्पोर्टेंट जगह देनी बहुत जरूरी है।
1: निश्चित रूप से जी जी जी हाँ।
0: और जिंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं मुझे लगता है एक आर्टिस्ट उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है ये भी हमें रंगमंच बहुत अच्छे से बखूबी सिखा देता है। अब बात करते हैं कुछ मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स की। आपके बहुत से प्रोजेक्ट रहे हैं, रेडियो में आपने बहुत कमाल का काम किया है, रंगमंच तो किया ही है, तो कुछ ऐसे पल जब आपको वाकई गर्व हुआ हो और अपनी टीम पर गर्व हुआ हो, अपने जो भी आपका कार्य रहा उस पर गर्व हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो सभी को बताना चाहेंगे।
1: जी जी, मैं दो तीन बातें बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा युवा पीढ़ी के लिए और नौजवानों के लिए, किसी के भी लिए भी, एक दो बातें मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक है कि खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त में कुछ अपना इख्तियार भी रख। कुछ काम अपने लिए भी छोड़ मेरे प्यारे दोस्त। भगवान के भरोसे मत रह, जो करेगा भाग्य करेगा, जो होगा ईश्वर चाहेगा वो होगा, वो तो होता ही है, चलो ठीक है मान लिया उसको भी, लेकिन जब आप खुद उसमें नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूं, मैंने एक नाटक किया जिस नाटक की अवधि थी 10 घंटे, रामचरित नाट्य।
0: बिल्कुल,
1: 10 घंटे, ये आमतौर से हम 1-1.5 घंटे का नाटक करते हैं, उस नाटक को हमको तैयार करने में लगभग 3 महीने लगते हैं, 90 दिन में एक नाटक तैयार होता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है नाटक की तैयार करने की, क्योंकि एक सामूहिक विधा है। 10 घंटे के नाटक को तैयार करने में, उसकी तैयार करने में मैंने कम से कम 8 महीने तो उसकी स्क्रिप्ट पे काम किया। दुनिया भर की किताबें पढ़ी, दुनिया भर की, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, रामचरित मानस पढ़ी, राधेश्याम जी की रामायण पढ़ी, मेहोजी गोदारा की रामायण पढ़ी, एक दक्षिण की एक बहुत बड़ी संत है उनकी रामायण पढ़ी, ऐसे कम से कम 10 रामायणों का पाठ किया, उनमें से प्रसंग निकाले, उनमें से निकाल के और फिर एक स्क्रिप्ट तैयार की
0: जी।
1: परंपरागत रामायण जो चलती है उसकी स्क्रिप्ट मैं निकलवा के लाया अपने दोस्तों से और उनको मिला के एक नाटक 10 घंटे का नाटक हुआ, जिसमें नृत्य भी था, जिसमें संगीत भी था, और वो हमने जवाहर कला केंद्र में किया, जवाहर कला केंद्र के साथ मिलके, और लगातार 2 वर्षों से कर रहे हैं,
0: हजारों लोग
1: जी
0: जी
1: 5 घंटे जी।
0: आपका खेजड़ी की बेटी मुझे याद आ रहा है, जिसके मतलब पता नहीं अनंत शोज आपने किए हैं जगह जगह पर।
1: खेजड़ी की बेटी की भी यही प्रक्रिया रही। खेजड़ी की बेटी जब नाटक तैयार किया, इसका भी मैं दिलचस्प बताता हूँ कि मेरे मित्र थे श्री डीएन शैली साहब, वो नहीं रहे, मरहूम डीएन शैली साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक ये घटना है कि राजस्थान में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान किया था। ये बात मैं बताता हूँ आपको, 1990 के आसपास की बात है, 90-91 की, और ये नाटक तुमको लिखना है, क्योंकि मैं शैली साहब के लिए बच्चों के नाटक लिखता था, वो मुझसे लिखवाते थे और वो मंचित करते थे। उन्होंने कहा ये नाटक लिख। एक आईसी श्रीवास्तव साहब, एक बहुत पुराने आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, शिक्षा कर्मी बोर्ड के उन दिनों अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर नाटक लिखवाओ
0: जी।
1: वो नाटक का मैंने उस पढ़ा तो उसके बारे में इधर उधर सुना, पता था कि 363 लोगों ने बलिदान किया है, तो मैंने एक छोटी सी सिनॉप्सिस बनाई और डीएन शैली साहब को दे दी। मैंने कहा यार ये घटना है। डीएन शैली साहब ने उसको पढ़ा, फिर व्यंग से मुस्कुरा के कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो क्या है, ये तो तुमने कुछ मेहनत ही नहीं की, इधर उधर से किया। ये बात मुझको बहुत चुभी मन में।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा यार ये तो मतलब जो चालू जिसको कहते हैं ना चालू माल, अशोक राही, ये तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैंने शोध करना शुरू किया। फिर सर हीरा

0: की क्या कर रही होगी। तो विश्वेश्वर नाथ रेव नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं मारवाड़ के, उनकी पुस्तकें हैं वही 1000 पृष्ठ मारवाड़ का इतिहास, वो मेरे मित्र से लाया। और तो इसके अलावा मेरे मित्र श्री तुलसीराम जी माजू जो बिश्नोई हैं, हितराम जी बिश्नोई, कर्नल बिश्नोई, ऐसे कई बिश्नोई मित्रों के घर गया, उनसे पूछा कि क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या आप पहनते हैं, क्या क्या ये घटना है, कौन लोग थे जो 363 लोग जो मर गए। तो उन्होंने मुझको एक सूची दी कि ये 363 लोग मरे थे
1: जी।
0: और उन सबको मिला के उनका गहन अध्ययन करके मैंने एक नाटक लिखा, और वो नाटक की अवधि मात्र 1 घंटा 20 मिनट
1: जी।
0: लेकिन उस 1 घंटे 20 मिनट को नाटक को तैयार करने में मुझे तो महीनों लगे और हजारों पृष्ठ पढ़ने पड़े, तो वो नाटक तैयार हुआ।
1: लेकिन आप वो मेहनत रंग लाई,
0: इतनी रंग लाई कि पूरे देश में वो जब जहां जहां मैंने नाटक खेला, 20,000 लोगों के बीच में खेला तो उन्होंने पसंद किया, इंडिया इंटरनेशनल में खेला 400 लोगों के बीच में जो देश के बिल्कुल सुपर इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने वो पसंद किया, मंत्रियों के बीच में खेला राज्यपालों ने पसंद किया, सामान्य जन में खेला उन्होंने पसंद किया। उसका कारण ये था कि एक तो वो घटना, दूसरा उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी जबरदस्त हो गई, और सुषमा जी आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद में बिश्नोई संप्रदाय के तो लोग ही मुझको आके बताने लगे कि ये घटना ऐसे हुई थी, जबकि वो पूरी तरह घटनाक्रम मैंने अपने हिसाब से नाटकीय तरीके से बनाया था, लेकिन वो इतना विश्वसनीय हो गया। ये कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं ना, वो अध्ययन के साथ उसमें अपनी कल्पनाशीलता जब तक नहीं करेंगे, एक लेखक का यही सृजन है। अब कोई मुझसे पूछता है कि नाटक तुमने कैसे लिखा, तो मैं यही बताता हूं, बाकी वो ये है कि तो जाम्बो जी ने, गुरु जम्बेश्वर ने और अमृता देवी ने लिखवा लिया, वरना मैं कौन होता हूं। ये नाटक तो उन्होंने लिख दिया जो 300 बरस पहले ये बलिदान कर गए, एक्चुअली नाटक तो ये उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल, लेकिन आपकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी चीजों का समावेश होता है जब एक कृति को तैयार किया जाता है।
0: बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सुषमा जी।
1: एक नाटककार के रूप में आप आज जो अपना आसपास का दौर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स से आपका काफी आप रूबरू होते हैं, है ना, अपने आर्ट को उन तक पहुंचाते हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या बदलना चाहते हैं आज के वक्त में अगर आप नजर डालें तो?
0: नहीं देखिए, ये भी एक बात है, कोई भी लेखक अगर ये सोच के करेगा कि मैं पूरे समाज को बदल दूंगा तो ये उसका रवैया ठीक नहीं, इसमें उसमें उसका अहंकार बोलता है
1: जी।
0: तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी उस समय कतई उनका मंतव्य नहीं था कि मैं कोई समाज को सुधारूंगा, वो उन्होंने एक भाव से लिखी थी। कबीर ने जो दोहे लिखे वो अपने मन के भाव से लिखे, मीरा के जो पद हैं, मीरा का जो प्रेम का है, उन्होंने, मीरा ने ये थोड़ी सोचा कि मैं इस तरह समाज में प्रेम का प्रसार करूंगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जिस तरह से होता हूं, लेखक को ईमानदारी से अपने काल को देखे कि मेरे समय में क्या चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब मैंने खेजड़ी की बेटी नाटक लिखा तो उस समय जो उसका राजनीतिक पोर्शन है वो लिखा, तो उस समय राजनीति में क्या था कि 2 साल में कम से कम 6-7 बादशाह वहां बदल गए थे दिल्ली में, मोहम्मद और जरदार और जरदार शाह, और 6-6 महीने एक एक साल रह के। और संयोग की बात है, जब मेरा यह नाटक लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश में भी ये हो रहा था, पहले चंद्रशेखर, वो राजीव गांधी थे, फिर चंद्रशेखर बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, फिर इंद्र कुमार गुजर, यानी के साल 6 महीने में 5 प्रधानमंत्री हमारे देश में भी बदल गए।
1: अच्छा,
0: अब आप ये देखिए, ये कोइंसिडेंट है क्या है, लेकिन कैसे वो

0: 300 बरस पहले की राजनीति और उस समय की राजनीति बिल्कुल यूं की मिल रही थी। लोगों ने उस समय तो एकदम जोड़ा कि अरे यही तो हो रहा है, वहां पे बादशाह बदल रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। आपको ध्यान होगा उस काल में हमारे देश में कितनी जल्दी प्रधानमंत्री बदले थे।
1: जी जी जी,
0: कुछ घटनाएं कुछ होती। अच्छा, आज भी आज कोई नया लेखक है वो कोई लिखना चाहे, मैं कहता हूँ उस समय देखिए कैसा हमारे समाज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, विशेषकर महिलाओं को लेके क्या प्रॉब्लम, कितने मतलब जिसको कहते हैं कि हम क्या, मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कितने दिखावटीपन हमारे समाज में आ गया है। जिंदगी में सारे दौरों में आ गए, कितने क्या हम इतने सहज हैं जैसे हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हुआ करते थे। आप देखिए, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ब्याह शादी हमारे घरों में, अब मैं देश के सेठों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हमारे घरों की बात कर रहा हूँ, हमारे घरों में जो आजकल शादियां होती हैं, अरे बाप रे कितना दिखावटीपन आ गया उसमें। जबकि हमारे जमाने में 50 बरस पहले जो शादियां होती थी, कैसे सहजता से शादियां होती थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन लगती हैं, ठीक है पैसा आया है, कैसे खाने पीने की चीजें बदल रही हैं, कैसे संस्कार। आप देखिए समाचार पत्रों में जब हम खबरें पढ़ते हैं और विशेषकर बच्चियों को लेकर जो खबरें आती हैं, दिल नहीं टहल जाता है।
1: बिल्कुल
0: आप एक लेखक का ये अपने आप दायित्व बनता है और अपने आप उसको वो लिखता है और लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखा जा रहा, लिख रहे हैं। ये जो सामाजिक ढोंग है, राजनीतिक ढोंग है, अभी मैंने नाटक किया जो मुंबई के लेखक अनुरोध शर्मा उनका लिखा हुआ वनफूल की बत्ती गुल, पूरी राजनीति का ऐसा वो है कि एक राजनेता कैसी कैसी हरकतें कर रहा है उसमें और उसकी आत्मा बदल गई। वो बड़ा एक दिलचस्प नाटक है, वो अभी पिछले दिनों ही शो किए थे उसके। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें रचनाकार के की रचनाओं में अपने आप आते हैं, उनको हास्य से प्रकट कीजिए, आप व्यंग के साथ प्रकट कीजिए, लोग आनंद लेते हैं, लेकिन उस चीज को वो दिल पे लगती है उनके, ऐसा नहीं है वो सोचते हैं कि यार ये गलत है तो गलत है। जी सुषमा जी,
1: अशोक राही जी ने वैसे तो बहुत कुछ अभी तक अपनी जीवन यात्रा में पाया है, लेकिन ऐसा होता है कि बस जीते जीते हमारे जो सपने हैं वो बदलते रहते हैं, तो ऐसा कोई सपना जो अभी भी बाकी है आप देखते हैं और उसे यथार्थ का स्वरूप देना चाहते हैं?
0: मुझे गालिब याद दिला दिया, गालिब ये लिख के गए हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
1: हर ख्वाहिश पे दम निकले,
0: बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले।
1: तो कुछ ना कुछ तो छूट जाता है,
0: निश्चित रूप से छूटता है। एक आदमी अपने अपने जीवन में क्या कर सकता है, एक कितना लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, वो हमारी परंपरा में, हमारे देश की परंपरा में ही, हमारे यहाँ पे कोई रचना, महान रचना गुरु शुरू करता था लिखना और गुरु अपने पूरे जीवन में लिखता रहता था और उसके बाद में उसका जीवन कम पड़ जाता था तो उसके शिष्य उसको लिखते थे,
1: पूरा करते थे। जी,
0: पूरा करते थे। और मजे की बात कि वो अपना नाम भी नहीं देते थे उसमें, शिष्य नाम गुरु का ही चलता था। महाभारत जैसी महान रचनाएं जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, नाट्यशास्त्र जैसी रचनाएं, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है।
1: जी,
0: ये बड़ी लंबी परंपरा है, ये परंपरागत तरीके से लिखी हुई चीजें हैं, ये तय है। लेकिन नाम वेद व्यास जी का ही है और बाकी लोग पूछते भी नहीं है और कहते भी नहीं है और शिष्य भी नहीं कहते थे। हमारे देखिए आज भी लोक के अंदर ये परंपरा चलती है, जैसे एक भगत नाम के एक मान लो लेखक हैं जो लोक गीत लिखते हैं, तो उनके जो शिष्य है ना वो भी भगत नाम से लिखेंगे। और इस परंपरा को कहते हैं भोग लगाना।
1: जी
0: जैसे अपने आते हैं ना शब्द आते हैं कि बीच में गजल के अंत में शायर का नाम आता है, ऐसे वो अपने गुरु का नाम ही उस रचना के अंत में लिखते हैं।
1: जी
0: कबीर के नाम से ऐसी हजारों रचनाएं समाज में घूम रही हैं जिनमें कबीर कबीरा कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर ने लिखी है लेकिन कहत कबीर सुनो, अगर मान लो उनका कोई अनुयायी है तो वो भी यही लिखेगा कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये ऐसा डेडिकेशन, ऐसी ऐसा समर्पण, ऐसी परंपरा, ये हमारी हमारी परंपरा में मिलती है, हमारे देश की साहित्यिक परंपरा में। जी
1: बिल्कुल, हम आपकी जो डेडिकेशन है उसको भी सलाम करते हैं और चाहेंगे कि जो भी यंगस्टर्स हैं जो आप ही के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, ऐसा सपना देखते हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे और क्या कुछ बातें हैं जो उनके साथ, क्योंकि आप शेयर करते ही रहते हैं अपनी वर्कशॉप्स के जरिए, उन नए नए बच्चों को बहुत सारा इंस्पिरेशन देते रहते हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो सुन लीजिए कि इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से राह। आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। बुद्ध कह के गए थे, बुद्ध जब मरने लगे तो उनका जो शिष्य था, जो उनका भाई भी था चचेरा भाई आनंद, 40 बरस तक उनके साथ रात था, वो रोने लगा और कहने लगे कि तथागत आप जा रहे हैं हमारा क्या होगा। तो तथागत ने कहा कि अप दीपो भवे, अपने दीपक खुद बनो।
1: जी
0: नई पीढ़ी को अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो परंपरा है, अपने गुरु हैं, जो अच्छा लिखने वाले हैं, जो अपने बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं सीख सकते, सीखिए उनसे, वो तो सबसे बड़े आपके साथी हैं, लेकिन अंत में आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। और मैं इस बात को उस तरह ना लिया जाए, खुद शिताई में ना लिया जाए, लेकिन मेरा तो नाटक में कोई गुरु ही नहीं रहा कि जिससे मैंने सीखा हो, लेकिन यूं देखते हैं तो हजारों दत्तात्रेय की तरह हर वो साथी, हर वो गलती मेरी गुरु थी, हर नया साथी मेरा गुरु होता है जो एक नई तरीके से एक्टिंग करता है, और वो बात ही बातों में एक ऐसी बात कह जाता है कि जो दिमाग के एकदम एकदम खोल देती है, प्रकाश लग जाता, करे ये बच्चा तो ऐसी बात कर रहा है। तो सीखने का जो जज्बा है ये सबसे बड़ी बात है सुषमा जी। जी
1: सीखने की प्रक्रिया अनंत चलनी चाहिए, जीवन पर्यंत चलनी चाहिए, यह अशोक राही जी का मानना है और उनके साथ भी यही चल रहा है, तो हम यही कहेंगे कि आपका जो ये हसीन सफर है वो यूं ही चलता रहे, बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी आपने क्रिएट किए हैं लेकिन और भी करें जिनको देखकर हम इंस्पायर हो, नए बच्चे इंस्पायर हो और बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ समझें।
0: बस सबसे बड़ी बात है मित्र अच्छे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, आप सरीखे व्यास जी जैसे ऐसे मित्र हो तो फिर तो कहना ही क्या है, आदमी अपने आप आगे बढ़ेगा।
1: तो अशोक राय जी आपका हम दिल की बातें जो आपने हम सभी के बीच रखी हैं आज, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थैंक यू सो मच।
0: मैं भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैंने भी बड़े खुले दिल से अपनी जो भी मेरी समझ है जीवन की वो आपके सामने रखी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हरिशंकर व्यास जी का और साथ ही ओपी शर्मा जी का, थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम बातें दिल की, और दिल की बातें कर रही थी अशोक राही के साथ सुषमा, टेक्निकल निर्देशन रहा ओपी शर्मा का, और अब डॉक्टर गाधा के सुरीले गीतों की।

सुनने का खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा सलिबियो बोर रंग भोर सर भोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

गीत सुहाने आप सुन रहे थे डॉक्टर गाथा महंती की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आज का ये सुहाना सुरीला सफर यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: Get your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार सभी का मूड्स ऑफ रफी प्रोग्राम में मैं अभिनंदन करता हूं दोस्तों रफी जी ने हर तरह के गाने गाए हैं चलिए उनके कुछ प्यार भरे रोमांटिक गीत सुनते हैं प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1967 में रिलीज्ड फिल्म शागिद से जिसमें जॉय मुखर्जी और सायरा बानू थी इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो आज तक तरोताजा है इसी फिल्म का एक सदाबहार रोमांटिक गीत सुनते हैं जिनी और डॉक्टर शरद की आवाज में

वाह क्या बेहतरीन गीत पेश किया। अगला गाना सुनते हैं 1968 में रिलीज्ड फिल्म हसीना मान जाएगी से, जिसमें शशि कपूर और बबीता जी थीं। प्रकाश मेहरा जी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने, जिसमें मोहम्मद रफी जी और लता जी के गाए हुए गाने बहुत फेमस हुए। ऐसा ही एक मधुर और बेहतरीन गीत सुनते हैं डॉली जी और संजय जोशी जी की आवाज़।

वाह, क्या बेहतरीन गीत पेश किया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं 1963 में रिलीज्ड फिल्म हमराही से, जिसमें राजेंद्र कुमार और शोभा खोटे थे। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, जिसमें प्लेबैक किया मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी जी जैसे सिंगर्स ने। आइए इसी फिल्म से एक डुएट सुनते हैं, श्वेता जी और संतोष खेरे जी

0: बहुत खूब। चलिए अगला गाना सुनते हैं 1962 में बनी फिल्म दिल तेरा दीवाना से, जिसमें शमी कपूर और माला सिन्हा थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे कलाकारों ने। ऐसे ही फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं प्राची और सुबोध जी की मधुर आवाज।
1: पिछली की रात के

क्या मधुर गीत पेश किया, बहुत खूब। अगला गाना सुनते हैं 1961 में बनी फिल्म जंगली से, जिसमें शम्मी कपूर और सायरा बानो थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी और लता जी ने। चलिए इसी फिल्म का एक मधुर ड्यूएट सुनते हैं सविता जी और अमित पाठक जी की मधुर आवाज में।

वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। अगला गाना सुनते हैं 1958 में रिलीज्ड फिल्म काला पानी से, जिसमें देवानंद और मधुबाला जी थीं। इस फिल्म का सदाबहार संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी जी और आशा भोंसले जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं सचिन और प्रणीति जी के मधुर स्वरों में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, कहीं ना जाइएगा, रफी जी के मधुर गीतों का सिलसिला अभी जारी है।
1: रफी सोलफुल, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिया गया है मुझे। सोलफुल यानी कि रूहानी गाने, वो गाने जो दिल को छू जाएं, चाहे वो दर्द भरे गीत हों, गजल हों, चाहे रोमांटिक हों, चाहे शरारती हों। रूहानी संगीत हमारी रूह की गहराइयों में पहुंचकर हमारी रूह कभी गमगी कर देता है, कभी प्योर लव का एहसास दिलाता है, कभी एक छोटा बच्चा बनकर गुदगुदाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। कुल मिलाकर रूहानी संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी खुद को उन गीतों से जुड़ा पाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे ही कुछ नगमे, गीत, गज़ल पेश करूंगा आपके सामने आज मैं मनु मृदुल, इंटरनेट रेडियो जयपुर के सौजन्य से, आओ झूमे गाएं समूह की ओर से। सबसे पहले सुनते हैं एक बेहद रुमानी गीत, सूर्य रेखा।

वाह क्या बात है सूर्य रेखा दी और सैंडी। जैसा कि मैंने कहा, रूहानी संगीत सिर्फ रूमानी गीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेचैन दिल की निराशा का भी एहसास दिलाते हुए दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसा ही एक गीत सुनिए श्रुति और मुकेश चोपड़ा की आवाज में, जिसे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में मोहम्मद रफी ने गाया था।

चलिए अब सुनते हैं दिल की अभिव्यक्ति को उजागर करने वाला मोहम्मद रफी का गाया एक गीत अनिल झुमका वाला की आवाज में फिल्म तीन देवियों से।

अगला गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपको अवश्य ही ऐसा लगेगा जैसे जन्नत यहीं उतर के आ गया हो। नौशाद का संगीत और मोहम्मद रफ़ी की गायकी, साजों की आवाज़, सुर लय ताल, जैसे शहद की मिठास और दिल में उमड़ता हुआ प्रेम। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कोई प्रेम की अभिव्यक्ति। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था फिल्म मेरे महबूब में, और आपके सामने ला रहे हैं संजय हार ने।

सिर्फ प्रेम की अनुभूति ही नहीं बल्कि विरह और विरह की उदासी और मोहब्बत की बेचैनी को भी रफी अपने गानों में ऐसे उतारते थे कि चाहे किसी का दिल टूटा हो या ना टूटा हो, हर कोई उस गम को उनके गाए गानों में आसानी से महसूस कर ही लेता है। मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनकर लगता है कि मोहम्मद रफ़ी न सिर्फ महसूस करके गाते थे बल्कि जो सुनता है वह खुद उसमें खो जाता है। इसी को कहते हैं रूहानी आवाज़। सुनते हैं अगला गीत विमल सोनी की आवाज़ में, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म दिल एक मंदिर में गाया था।

कहते हैं सत्य कड़वा होता है, मगर यकीन मानिए मोहम्मद रफ़ी ने इस बात को झुठला दिया है। और यह हो पाया है मोहम्मद रफ़ी के सत्य को अभिव्यक्त करने के अंदाज से। यही नहीं, अगला गाना सुनकर आपको सत्य बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बल्कि उस सत्य के आध्यात्म को सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। शाश्वत सत्य को मोहम्मद रफ़ी ने जिस गंभीरता से गाया है, उससे तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने उसे रूह से महसूस करके गाया है। मगर मुझे विश्वास है कि इस गीत को सुनने के बाद आप भी आत्मविभोर हो उठेंगे। ये गीत फिल्म चित्र लेखा से है, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है रोशन ने, जिसे आज लेकर आ रही हैं बहुत ही सुरीली और बेहद उम्दा गायिका जूही सिन्हा।

बरसात में भीगती हुई नायिका और शायर दूर से उसे निहारता हुआ। क्या यह भूलने की बात है? जिस तरह शायर ने उस माहौल का व्याख्यान किया है और जिस बखूबी से मोहम्मद रफ़ी ने उसे गाया है, लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम रहा हो। यह होता है रूहानी संगीत का असर। पेश करने जा रहे हैं आपके सामने संजय गुप्ता, जम्मू से।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ
1: बने रहिए हमारे साथ।
2: जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। जयपुर रेडियो,
3: उफ़ ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
4: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
5: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
6: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ सही पहचाना, वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं। रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए जैसे कि असमीस, कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाएं। और तो और उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरेबिक, सिन्हला, डच, स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए जैसे कि भक्ति गीत, शास्त्रीय गीत, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत। तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से, जिसमें ऋषि कपूर जी थे। इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों, चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने? कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया ओपी नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शम्मी कपूर के साथ आशा पारिक थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शम्मी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं, और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। अभिव्यक्ति का आंचल, वो आंचल जिसमें नारी शक्ति अपनी आंचल में साहित्यिक सितारों को समेट कर लाती हैं, और इस प्रोग्राम की एक किरदार साहित्यिक किरदार होती हैं। आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ इंदौर, मध्य प्रदेश, जिसको भारत का दिल कहते हैं, उस दिल से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं हेमलता शर्मा। हेमलता मूलतः मालवा प्रदेश जो क्षेत्र है उससे संबद्ध है, बेसिकली वहां से उठ के इंदौर अपना साहित्यिक क्षेत्र बढ़ा रही हैं और शासकीय सेवा दे रही हैं, और साथ साथ बहुत जरूरी जो काम होता है वो ये कि लोक संस्कृति को, लोक भाषा को एक साथ इकट्ठा करके

0: मेरी कमर और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
1: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
2: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम, 100 साल एक आवाज। सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार। एक आवाज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
4: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर

0: संग्रहण संकलन का कार्य भी जारी है और मैं लगी हुई हूँ।
1: बहुत अच्छी बात और इतना शानदार परिचय आपका है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। लोक साहित्य को हिंदी में आपने शामिल किया है और हिंदी में लोक साहित्य है, और हर साहित्यकार जब भी पढ़ता है उसकी अपनी बेसिक आधारभूत जो भाषा होती है, बोली होती है, उससे उसका लगाव होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आपका जो जुड़ाव है वो किस तरह से पनपा शुरू से, या बाद में आप जब इस पद पे आई उसके बाद ये चीजें विकसित होती रहीं, इसके बारे में बताएं।
0: जी, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जन्म आगर मालवा में हुआ, और आगर मालवा में आप यदि अभी भी चले जाएंगे तो पूरे आगर मालवा में मालवी ही बोली जाती है। वहां के व्यापारी हुए, चाहे छोटे दुकानदार हुए, आम जनता हुई, या प्रशासनिक क्षेत्र में भी कोई लोग जो वहां पर कार्यरत होंगे तो वो हिंदी का प्रयोग कम करते हैं, वहां पर मालवी ही चलती है। और मेरे घर में भी संयुक्त परिवार था और मालवी ही बोली जाती थी। मतलब मेरी जो माता जी है उनको तो अभी भी हिंदी बोलना ही नहीं आता, वो मालवी में ही बात करती हैं। तो मालवी से जुड़ाव तो हमारा गहरे तक रहा। बचपन से ही हमने सबको बोलते देखते सुना, और फिर प्रशासनिक सेवा की तैयारी में मैं लग गई, तो मेरा थोड़ा सा वहां से बाहर भी पढ़ाई लिखाई के लिए जाना हुआ। तो फिर जब वहां हम गए और मेरा जब सिलेक्शन हुआ MPPSC में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें मेरा चयन हुआ, तो जब हम एकेडमी में गए, नरोन्नापनिक अकादमी है भोपाल में जहां पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है,
1: जी,
0: वहां पर जब हम गए तो वहां पे सभी क्षेत्रों के, बुंदेलखंड बघेलखंड सभी जगह के लोग आए हुए थे, और वे सभी जब मैं देखती थी तो से तो मैं ही थी। तो जब मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि अरे मालवी, क्योंकि मालवी को सामान्यतः क्या है, गांव पिछड़ी हुई भाषा, लोक भाषा समझा जाता है
1: जी।
0: और सामान्यतः जैसे यदि कोई मालवी में बात करता है तो ये बोला जाता है कि अरे ये तो नवार है, या इसे अंग्रेजी नहीं आती, या इसको कुछ पता नहीं है
1: जी,
0: इस तरीके से। तो फिर वहां से मेरे मन में ये हुआ कि जब ये लोग अपनी लोक भाषा को इतना महत्व दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देते। तो कुछ न कुछ प्रयास अपनी माटी के लिए भी, अपनी बोली के लिए भी करना चाहिए। तो वहीं फिर, क्योंकि कविताएं तो मैं 93 से लिखी रही हूँ, तो हिंदी में पहले मेरा लेखन कार्य चलता था, और कुछ ही समय के लिए कॉलेज टाइम में शेरो शायरी भी करना शुरू किया था
1: जी।
0: तो थोड़ा सा कहते हैं झुकाव उन चीजों की ओर भी हुआ, फिर मालवी की ओर बढ़े। तो कुछ फिर मैंने अपनी कविताएं थी तो उसका एक प्रकाशन, मैंने उसका संग्रह मालवी कविताओं का एक निकाला, और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि वो मालवी काव्य संग्रह मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने उसको मालवी के सबसे बड़े पुरस्कार संत पीपा स्मृति सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान से उस पुस्तक को पुरस्कृत किया। तो ये मेरे लिए एक गौरव का विषय रहा, और मेरी कहना चाहिए कि मातृबोली ने मुझे ये सम्मान दिलाया तो उसका मेरे हृदय में सम्मान और भी बढ़ गया। तो फिर मैंने ठान लिया कि अब तो लोक भाषा के लिए मुझे काम करना ही है, और जो लोग इससे दूर जा रहे हैं उनको इस ओर लाना है। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने जो मालवी के लोग थे जो लिख रहे थे इस पर, तो मैंने उन लोगों से संपर्क साथ कोशिश की। वो सारे साक्षात्कार मेरे YouTube चैनल पर अभी अवेलेबल है
1: जी।
0: लोग लिख रहे थे जिनसे भी मैं संपर्क कर पाई, उन सभी के मैंने साक्षात्कार, उनके सभी के साक्षात्कार मैंने उनको सोशल मीडिया पे प्रचारित प्रसारित किया
1: जी।
0: तो वो एक रहा। फिर मैंने, मुझे लगा कि मालवी कहावतें और मुहावरे हैं जिनको
1: जी
0: जैसे कि वाड़ाया के नावत या इस तरीके से, तो ये एक बहुत अच्छी वाचिक परंपरा की भी लोक भाषा या संस्कृति को नई पीढ़ी से रूबरू कराने के लिए। तो मैंने फिर अपनी उस पुस्तक पर काम करना शुरू किया। तो फिर मैं अपनी मालवी लोकोक्ति और मुहावरों की पुस्तक एक लेकर आई, जिसमें मैंने लगभग 1000-1200

0: मालवी लोगों की और मुहावरों का संग्रहण किया। तो उसके भी लोगों से संपर्क और सोशल मीडिया मेरे लिए अच्छा माध्यम था। वहां पर मैं लोगों से बातचीत करती रहती थी और जो जिन क्षेत्रों तक मैं नहीं पहुंच पाती थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने मुझे चीजें संकलित करने में योगदान दिया, मालवा के लोगों ने। और जो संजा बाई, एक लोक पर्व है हमारे यहाँ मालवा में, संजा
1: जी
0: पर्व।
1: जी
0: तो संजा पर्व ने लोगों को मुझसे बहुत जोड़ा, क्योंकि संजा पर्व जब भी आता था तो वो श्राद्ध के समय आता था और वो 16 दिन का पर्व मनाया जाता है, 16 दिन तक। तो उसमें ये मान्यता है कि जो घरों में कुंवारी कन्याएं होती हैं वो संजा
1: जी
0: बाई की आकृति अपने दीवार पर बनाती है गोबर से, और फिर
1: वाह
0: संजा बाई की मनुहार करती है, उनके गीत गाती है, इस तरह की परंपरा है। तो मैंने वो सारे गीत क्योंकि बचपन में गाए थे और संजा हम भी बनाते थे तो मुझे ये आते थे, तो मैंने वो सोशल मीडिया पे सारे गीत अपने लाइव करना शुरू किए। तो मुझसे मालवा के काफी लोग जुड़े और उससे मुझे काफी प्रसिद्धि मिली। और फिर संजा पर्व नाम की भी एक पुस्तक मेरी उसमें प्रकाशन में आई, तो एक
1: जी
0: पुस्तक वो मेरी हो गई, मालवी लोगों की और मुहावरे की हो गई। फिर इस बीच मुझे कहीं से प्रेरणा मिली कि उपन्यास कोई उपलब्ध नहीं है मालवी में,
1: मालवी में जी
0: तो मैं तत्काल में इतनी जल्दी लिख तो नहीं सकती थी अभी, हालांकि मैं उपन्यास एक लिख रही हूँ जिसका शक है कि भोली सब कर लेगी।
1: जी
0: भोली
1: क्या
0: मतलब
1: बात है,
0: मेरे मेरे ही
1: आपका
0: जीवन
1: उपनाम
0: पर
1: है
0: आधारित है वो
1: जी।
0: जी, और उसको मैं अभी पूर्ण नहीं हो पाया है वो, उसको मैं अभी लिख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी से, क्योंकि उस समय ये था कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, और पुराने समय में जैसे लोग क्या है कहानी किस्से पढ़ते रहते थे, तो जो पुराने लोग थे वो नॉवेल पढ़ने में उनकी रुचि रहती थी। तो मैंने
1: बिल्कुल
0: सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि ये मालवी की ओर भी प्रवृत्त हो और इनका रुझान हो जाए कि मालवी कोई उपन्यास ऐसा आ जाए। तो एक हरिशंकर परसाई जी का लघु उपन्यास था तट की खोज,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: फिर मैंने उसको मालवी में रूपांतरित करने का बीड़ा उठाया
1: वाह
0: और उसको उन्होंने पूरा रूपांतरित किया। तो वो मालवी उपन्यास एक मेरा प्रकाशन में आया किनारा की खोज के नाम से, और ये सभी पुस्तकें मेरी अमेजॉन वगैरह पे उपलब्ध हैं। गूगल पे सर्च करके कोई भी इनको प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से कोशिश करती रही, एक अभी मालवी का शब्दकोश भी मेरा अभी प्रकाशित हुआ है, वो भी काफी मशक्कत भरा काम रहा मेरे लिए। और मालवी रचनाएं और ये लिखने का सारा काम तो मैं करती ही हूँ, और कोरोना काल में एक बड़ी उपलब्धि और मेरी रही कि हाँ मैंने कोशिश की कि जैसे मालवी में अपन अभिवादन जो करते हैं तो मालवी में राम राम या जय राम जी की बोला जाता है, तो
1: जी
0: मैंने सोचा कि ये एक भगवान का नाम भी रहता है, राम जी से ईश्वर से जुड़ने का सब लोगों को मौका मिलेगा, और कम से कम इस बहाने मालवी बोलना सीखेंगे लोग तो उनका रुझान बढ़ेगा। तो मैंने एक मालवी सुविचार प्रतिदिन अपने ब्लॉग पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक वॉल पे पोस्ट करना शुरू किया,
1: वाह
0: तो
1: ये
0: लोग उससे जुड़े और
1: नया प्रयोग
0: उसमें मैंने सबको जय राम जी की बोलने के लिए
1: जी
0: मतलब प्रोत्साहित किया। तो उसपे कई सारे लोग आके कमेंट में, उनको और कुछ मालवी आती हो या ना आती हो लेकिन वो जय राम जी की जरूर लिख देते थे। तो उतना भी मेरे, और मैं सबके जवाब देती थी, मेरी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि मैं सभी जो भी लोग उस पे आ रहे हैं कमेंट कर रहे हैं तो मैं बराबर उनकी उनके प्रश्नों के जवाब देती थी, उनकी कोई ऐसी शंका है तो वो समाधान करती थी, कुछ चीज वो जानना चाहते हैं तो वो मैं उनको बताने का प्रयास करती थी। हालांकि मैं भी कोई बहुत पुराने जमाने की नहीं हूँ, तो मैं भी अपने घर में अपनी माताजी से पूछ के या और कहीं से पता करके वो चीजें बता देती थी। तो सबको लगता था कि हाँ ये तो कितनी मतलब सरल सहज है सारी बातों का, ये बिल्कुल हमें बता देती है कि इसका ऐसा होता है, ये वैसा है, हर बातों का
1: इसीलिए
0: जवाब,
1: तो
0: क्योंकि
1: आपको
0: आजकल
1: भोली बहन कहते हैं। तो भोली बहन, जय राम जी की के साथ हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य और साहित्य की आप स्टूडेंट रही हैं, उनकी शोधार्थी रही हैं, विद्यार्थी रही हैं साहित्य की, तो जो भी हिंदी साहित्य है वो लोक भाषाओं से ही बना है, उपजा है और पैदा हुआ है, तो उसमें मालवीय का कितना योगदान है, कौन कौन से शब्द हैं, क्योंकि हम तो अब उस हिंदी ने उस सबको पचा लिया है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा समुद्र है जो उसमें सारी नदियां मिल गई हैं, भाषा की, लोक भाषा की, बोली की, जो भी है वो सब मिल गई हैं। तो हम यदि पहचाने के, या जो हमारे सुनने वाले हैं, क्योंकि जयपुर रेडियो तो वर्ल्ड लेवल पे सुना जाता है, और हो सकता है कोई मालवीय जो हो दूसरे देश विदेश में सुन रहा हो इस प्रोग्राम को, तो हम कैसे जाने कि हिंदी में कितना मालवीय कोश है, या कितना हिस्सा या कितना शेर है मालवीय का, बताएंगे आप कुछ?
0: हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी की जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि है, और मालवी जो बोली है उसकी भी लिपि देवनागरी ही है
1: जी।
0: तो ऐसा पृथक से कहीं कोई इसका मालवी का जो व्याकरण है वो हिंदी भाषा का ही व्याकरण है
1: जी। बहुत अच्छी
0: तो जो शब्द अपने आते हैं काफी इसमें मिलते जुलते रहते हैं, बस एक बोलने की जो टोन रहती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो जैसे हिंदी भी अपने आप में एक समृद्ध भाषा है, और इसमें भी कई भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी से, उर्दू से शब्दों को उधार लिया है और अपने आप को समृद्ध किया है। इसी तरह से मालवी ने भी कई भाषाओं से चीजें, शब्द लेकर के अपने आप को समृद्ध किया है और अपने आप को बढ़ाया है, और मालवी का शब्दकोश जो है इसी से समृद्ध भी हुआ है। कई सारे शब्द हम मालवी शब्दकोश में मैं समाहित कर पाई हूँ, अभी भी कई सारी चीजें छूटी हुई हैं, तो कोशिश करूंगी कि प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया उसमें जोड़ते जाएं, क्योंकि चीजें तो प्रतिदिन कुछ न कुछ नई हमें मिलती ही रहती है। जैसे अपना अंग्रेजी का एक शब्द है अपना टाइम, तो टाइम को हिंदी में भी एज इट इज मतलब मैंने समाहित किया है। हम लोग जब भी बात करते हैं तो टाइम को हम हिंदी में लिख लेते हैं, उसको इंग्लिश में हम नहीं मतलब मानते हैं, हिंदी ने उसको एकाकार कर लिया है अपने में। तो इसी प्रकार से मालवी ने उस टाइम को टेम, कई टेम हुए ऐसे, तो मालवी के जो लोग थे वो टाइम को टेम मतलब अपने हिसाब से बोलने की जो सहूलियत है, क्योंकि मालवा का जो एक ठेठ गांव का जो आदमी है, ग्रामीण व्यक्ति है, वो उसका उच्चारण इतना स्पष्ट नहीं होता। और वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदी का शुद्ध उच्चारण करते ही नहीं है, मध्य प्रदेश वाले ये अशुद्ध उच्चारण करते हैं, है ना? तो
1: नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जो दिल से करते हैं और दिल से जो बात निकलती है वो तो अच्छी होगी। और
0: देशा जी शब्दों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मतलब दिखाई ही देता है। कोई सी भी हम बात करें या कुछ भी हम लिखना भी शुरू करेंगे, तो हिंदी और मालवी को ऐसे अलग अलग करना बहुत मुश्किल है कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये शब्द हिंदी का है। अब धरती, तो धरती शब्द हिंदी में भी आएगा, मालवी में भी आएगा। फल फूल, तो फल फूल शब्द हिंदी में भी है, मालवी में भी है, तो आप उसको ऐसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकते कि हिंदी एकदम अलग है और मालवी अलग, क्योंकि दोनों की लिपि देवनागरी है और जो उनका पूरा संसार है, भाषा संसार है, वो उसी में रचा बसा है। तो एक दूसरे से आपस में वो शब्द उधार लेते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे कविता लिखते हैं हम, तो रस छंद अलंकार जब हम इसमें प्रयोग करें, तो जैसे ना गजल में काफिया मिलाते हैं
1: जी।
0: तो हम लय ताल मिलाने के लिए भी कई बार हम हिंदी शब्द का भी उपयोग कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आपको अपनी भाषा को समृद्ध बनाना है, उसको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल हिंदी से हम अलग करके चलेंगे, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है।
1: बहुत सही बात कही आपने, और बोली बोली सब कर लेगी, ये तो आपने सिद्ध कर दिया, एकदम पक्की तौर पे सिद्ध हो गया कि बोली सब कर लेगी। वैसे तो आपकी उपन्यास का नाम है, लेकिन वो आपके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है, ये जो शीर्षक है उपन्यास का कि बोली सब कर लेगी। तो आपने ये बात हमें बताई, इसके अलावा जो मालवी में जो मिठास है, मालवी की कोई लघु कथा है, तो वो उसका जरा सा परिचय हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि कोई लोक से जुड़ी हुई ऐसी कोई कथा हो या कोई कहानी हो, तो वो आप सुनाएंगे हमें?
0: बिल्कुल
1: उसी अंदाज में
0: और मालवी बोली को हाँ मीठी भाषा ही कहा जाता है। और जैसे कि हम बोले कि मालवी में जैसे कहा जाता है मैं तुम्हारे किस दू कही, तो किस जो होता है वो मालवी में भुट्टे की एक डिश होती है, भुट्टा जो आता है उसको कद्दूकस करके और उसको बढ़िया तेल में फ्राई करके और उसमें हरी मिर्च राई वगैरह डाल के बढ़िया से फ्राई करके अच्छे से पकाया जाता है और बड़ी स्वादिष्ट डिश होती है वो
1: जी।
0: तो यदि हम किसी को ये बोले कि मैं तुम्हारे किस दू गई तो एक हास्य का माहौल उत्पन्न होता है, क्योंकि किस शब्द इंग्लिश के यदि हम उसमें देखें तो चुंबन से मिलता जुलता है, उसका अर्थ वहां यदि हम निकाले तो इस तरह से मालवी लोक भाषा जो है अपने में मिठास लेके समाहित को किए हुए है। और मालवी में कहा जाता है कि यदि आप गाली भी किसी को दे दो
1: जी
0: तो उसको वो भी मीठी लगती है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: मतलब बोलने का लहजा इतना कि जैसे कोई बोलेगा कि मैं थारे दही पाड़ूंगा रे, मतलब मैं तुझे एक चांटा मार दूंगा, तो मतलब इतना मीठा बोले अरे मैं थारे दही पाड़ूंगा एक समझी जा ऐसे, तो बड़ा वो भी मीठा लगता है। तो मालवी भाषा की मिठास ऐसी है कि वो हर किसी को आकर्षित करती है और उसमें किसी को आप गाली भी दे दो तो भी उसको बुरा नहीं लगता और वो कहेगा कि नहीं नहीं आप तो भैया
1: साहित्य
0: सुनने में अच्छा लग रहा है।
1: ये भी साहित्य का एक अपना स्वरूप है, रूप है और हमारी लोक संस्कृति का इसमें इसे दर्पण कह सकते हैं हम। आपने बातों बातों में हमें बताया कि आपने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, साहित्यिक कार्यक्रम है और नाम है अभिव्यक्ति का आंचल, और उस आंचल में अलग तरह के सितारे जड़े हैं और साहित्य की हवा बह रही है। और हमारे साथ हैं हेमलता शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से। हम सुनने वालों को प्रोग्राम के बीच में भी बता देते हैं ताकि सुनने वालों की जिज्ञासा शांत हो। तो कविताओं के बारे में यदि हम बात करें तो कोई कविता आप सुनाएंगे हमें?
0: जी बिल्कुल, मैं एक खास रस से भरपूर कविता मालवी की सुनाना चाहूंगी। उसमें पति पत्नी की नोकझोंक का मैंने चित्रण करने का प्रयास किया है कि पति पत्नी से वादा करता है कि मैं कल तुमको सिनेमा दिखाने ले चलूंगा और तुम तैयार रहना।
1: अच्छा,
0: मैं आऊंगा और शाम को शाम को हम चलेंगे मूवी देखने और मैं टिकट विकेट लेकर आऊंगा, ऐसा उसका वादा करता है। लेकिन वो काम में इतना उलझ जाता है कि वो टिकट लाना भूल जाता है,
1: जैसे अक्सर होता है।
0: कैसी स्थिति निर्मित होती है जी
1: पुरुषों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है जी
0: जी जी जी जी, तो महिलाएं नाराज हो जाती हैं तो फिर पति का क्या हाल होता है और पत्नी कैसे नाराज होती है, सबका चित्रण मैंने अपनी मालवी कविता में किया है। उस कविता का शीर्षक मैंने रखा है बहिरा को सिनेमा प्रेम।
1: बहिरा
0: तो लाने की बहिरा मतलब जो पत्नी है उसको बहिरा बोला जाता है। हाँ, तो बहिरा को सिनेमा प्रेम
1: जी। अच्छा, पत्नी का सिनेमा प्रेम।
0: आज जिम्मा मलो गरम जी, आज जिम्मा मलो हुओ गरम, राम्यो भूल्यो पति धर्म। राम्यो जो है वो कैरेक्टर है और वो अपना पति धर्म, हाँ पति धर्म वो भूल गया है, आज मामला गरम हो रहा है। आज

0: पण टिकटा लाणो भूली गयो।
1: अरे वाह।
0: बुद्ध बुद्ध भूंदो राम्यो ने तो क्यों ओने अपनो करम। मतलब वो टिकट लाना भूल गया है और घर आया है तो बोले अब मैं क्या जवाब दूंगा,
1: अपने
0: तो
1: सर पे हाथ लगा के कहता है ये तो बस गया।
0: कैसे समझाऊंगा। जी जी बिल्कुल। अब देखिए कि उधर सिनेमा हाउस फुल हो चुका है और पत्नी जिद किया बैठी है कि मैं तो तैयार हूँ, मुझे लेके चलो। तो अब ये वहां जाते हैं
1: जी।
0: वही सिनेमा हाउस फूल हुओ आई बैरा को पारो चढ़ी गयो। ओ की बैरा घणी रिसाणी चंडी को स्वरूप धर्यो। बर्तन भांडा फूटी गया ने राम्या ने पकड़िया चरण। आज मामलो हुओ गरम राम्यो भूल्यो पति धरम। मतलब ये स्थिति आ गई है कि अब बर्तन भांडे तक फूट गए हैं और पति ने पत्नी के चरण पकड़ लिए हैं कि अब क्या करें। सिनेमा हाउस फुल हो चुका है।
1: क्या बात।
0: अब पत्नी तैयार है, उसका बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, वो तो रणचंडी बन गई है। अब देखिए आप आगे क्या होता है
1: जी।
0: रौद्र रूप में आई बैरा ने हाथ अस्त्र बेलन धर्यो। स्त्री का सबसे बढ़िया हथियार बेलन,
1: बेलन होता
0: है।
1: वेरी गुड।
0: रौद्र रूप में आई बैरा ने हाथ अस्त्र बेलन धर्यो। आज कुटुआ हूँ थमके गड़बड़ सगलो काम करियो। मुड़ मारो तमने आप। देखिए मुड़ मुड़ शब्द जो है ये इंग्लिश का है, लेकिन इसमें इसमें मालवी ने इसको अपने आप में समाहित कर लिया है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी पंक्ति बन रही है कि आज कुटुआ हूँ थमके

0: गयो, गावड़ो मतलब गर्दन, बेलन फेंक के मारा तो गर्दन पे लगा और
1: गर्दन पे
0: गर्दन
1: लगी।
0: तोड़
1: आहा,
0: गई। देख
1: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मेरे को लग
0: मुझे
1: रही
0: तो
1: है।
0: स्लो राम आके।

0: गए हो। अंत में फिर क्या करता है वो, हाथ जोड़िया ने हड़िया खाया। हड़िया खाना मालवा में एक ये है कि बहुत ज्यादा हम किसी की मिन्नत करते हैं
1: जी
0: तो घुटनों पे बैठ जाते हैं और अपने हाथों को ऐसे मुंह में लेते हैं उंगलियों को, और ऐसे हड़िया खाना उसको बोलते हैं। तो
1: ये हमारे
0: हाथ
1: लिए नया है।
0: जोड़िया ने हड़िया खाया यो सजलो भरम, मतलब उसका भ्रम सारा टूट गया कि पति परमेश्वर होता है।
1: बह गया
0: पति
1: जी।
0: परमेश्वर होने का भ्रम आज टूट गया जब बेलन से मार पड़ी।
1: बहुत
0: हाथ
1: खूब।
0: जोड़िया ने हड़िया खाया टूटी गयो सगलो भरम, आज मामलो हुओ गरम राम्यो भूल्यो पति धरम। तो ये ऐसी स्थितियां हैं कि ये हर किसी के साथ निर्मित होती रहती है। तो एक ये हास्य रस का मैंने यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश की थी, और ऐसी जो रचनाएं रहती हैं तो वो लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: अपने जीवन में वो सब घटित होता हुआ, हाँ चित्रित होता हुआ दिखाई देता है कि वास्तव में ऐसा होता है हमारे साथ भी। तो जब लोग उसको सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, तो
1: बहुत
0: वो
1: सुंदर, बहुत
0: जुड़ते हैं
1: सुंदर,
0: उससे।
1: बिल्कुल। सभी जो सुनने वाला हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी अपनी अपनी पत्नी को देख के उसकी कल्पना करता है और उसी अनुसार
0: बिल्कुल
1: बेलन से
0: बिल्कुल
1: मार
0: बिल्कुल।
1: खाने
0: और
1: की।
0: चाहे व्यक्ति बाहर मुस्कुराता है पर कहीं ना कहीं वो बीवी से डरता ही है।
1: बिल्कुल ये बात तो सच में।
0: तो मन ही मन मतलब वो मुस्कुराता रहता है कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी होता है।
1: बहुत सही फरमाया आपने। तो इसके अलावा जो आपने बहुत सारा काम है आपका, मैं कहाँ से गिनाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, और श्रोताओं तक जो हमारे सुनने वाले जो रेडियो के श्रोता हैं उनको किस तरह पहुँचाऊँ कि एक पूरा व्यक्तित्व जो है जिसको हम घंटे आधे घंटे के प्रोग्राम में समाहित नहीं कर सकते, उसका प्रयास हम जरूर कर सकते हैं और वो प्रयास ही कर रहे हैं। तो भाषा और बोली, इसके
0: जी
1: जो अंतर को आप किस तरह से देखती हैं और उसकी नज़दीकियां और उसमें आपस में जो मेल होता है, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ी दूर 4 कोस में भाषा या 15 कोस में बदल जाती
0: जी
1: है,
0: जी बोला
1: तो
0: जाता है।
1: हाँ वो बोला जाता
0: बिल्कुल
1: है, तो वो चीज जो है उसको आप किस तरह से लेती हैं? क्या सच में उसका प्रभाव होता है? जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसका, जो पहाड़ में रहने वाले लोग होते हैं वो अलग बोलते हैं, जो मैदानों में रहते हैं वो कुछ अलग रहते हैं बोलते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: उसका जो आसपास की जो प्रकृति है उसका कोई असर हमारे शब्दों पे, हमारी भाषा पे, हमारे चिंतन पे होता है क्या? आप क्या सोचती हैं?
0: बिल्कुल। मेरे इस बारे में ये विचार है कि जैसा आपने कहा कि भाषा और बोली, तो भाषा और बोली में तो अंतर हो ही जाता है क्योंकि भाषा जो है वो अपने एक मानक स्वरूप में है, उसने अपना मानक स्वरूप चूंकि धारण कर लिया है इसीलिए वो भाषा है। उसका अपना व्याकरण है, उसके अपने कारक चिन्ह है,
1: जी
0: उसके अपने अलंकार हैं, उसके अपने रस छंद जो भी हैं, लेकिन बोली में वो सारी चीजें

0: नहीं होती। बोली का कहा जाता है कि कोई व्याकरण नहीं होता, है ना, उसके कोई उसमें जो परंपराएं होती हैं वो मौखिक और वाचिक परंपराएं ही होती हैं, इसीलिए वो बोली है और इसीलिए अभी उसको मानक स्वरूप नहीं मिला है, इसीलिए उसको बोली कहा जाता है। पर हम यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मालवी बोली का जो साहित्य है वो काफी समृद्ध है, उसकी जो परंपराएं हैं मौखिक और वाचिक उसको लिखित रूप में लिपिबद्ध करने का प्रयास काफी समय से हो रहा है। कई जो विद्वान लोक साहित्यकार हैं वो काफी समय से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके जो मालवी लोक भाषा है उसका स्वरूप भी, मतलब बोली का स्वरूप भी अब भाषा के रूप में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि मालवी में कई सारी पुस्तकें प्रचलित हो रही हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, एक अच्छी जानकारी मैं आपको प्रदान करती हूँ। राष्ट्रीय पुस्तक में आप भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसका एक अंग है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, उसने अभी मालवी और निमाड़ी में बच्चों की पुस्तकों का अनुवाद करवाया है हम लोगों से। तो वो पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाएंगी, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को अपनी मातृभाषा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी आप देखेंगे कि हमारी जो नवीन शिक्षा नीति आई है उसमें भी सरकार ने पुरजोर मतलब प्रयास किया है कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के जो बच्चे हैं
1: जी
0: उनको हम अपनी मातृभाषा से जोड़े, वो उसके बारे में जाने, उनके लिए छोटी छोटे बच्चों के लिए हम मालवी की कविताएं बनाएं और वो पुस्तकों में आए, उनको वो पढ़े, उसको वो सीखे, जाने। जैसे कि आप देखेंगे भाषाओं के साथ तो ये हो रहा है, जैसे मराठी भाषा हो गई, गुजराती हो गई, तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये चूंकि भाषा का मानक रूप इनको प्राप्त है तो ये
1: जी
0: तो काफी प्रचार प्रसार इनका होता ही रहता है। लेकिन मालवी और निमाड़ी तो ये अभी बोलियों के रूप में है, इनको अभी भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो हम मालवी निमाड़ी, हमारी जो संघर्ष समिति है वो इसके लिए भी एक अभियान चला रही है और मालवी निमाड़ी को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है। और मालवी निमाड़ी अकादमी बनाने की एक मांग हम लोग कब से शासन से कर रहे हैं, उसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी हम लोगों ने चलाया है काफी विस्तृत, और हमारे यहाँ की जो संस्कृति मंत्री जी थी उनको भी ज्ञापन वगैरह सौंपा गया है। तो हमारा ये प्रयास है कि चूंकि मध्य प्रदेश का 1/3 क्षेत्र मालवा और निमाड़ को कवर करता है और इतना ही जनसंख्या का प्रतिशत भी लगभग 1/3 जनसंख्या जो है ये मालवा निमाड़ में निवास करती है, लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या वहां रहती है और वो सभी मालवी निमाड़ी को बोलते हैं। तो क्यों ना इतने सारे लोगों की जो बोली है उसे भाषा बना दिया जाए और उसके नाम से एक मालवी निमाड़ी अकादमी का निर्माण हो जाए, ताकि वहां पर इन बोलियों का भाषाओं के रूप में संरक्षण
1: संरक्षण हो
0: संवर्धन
1: सके।
0: हो सके।
1: जी
0: और एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी, मैं तो पुस्तकालय बनाना चाहिए जहाँ पे जितने भी पुराने जो लोग हैं वो और अभी जो मालवी का काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी पुस्तकें भी वहां पर उपलब्ध हो, ताकि जो शोधार्थी हैं, अभी आप देखेंगे कि मालवी साहित्य में PhD करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी 100 से अधिक लोगों ने मतलब मालवी के विषय लेकर के और PhD की उपाधि प्राप्त की है। तो एक बड़ा क्षेत्र है मालवी का, निमाड़ी का, तो इसको एक पुस्तकालय इसका तैयार करना चाहिए और इससे शोधार्थियों को बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तो वो भटकते रहते हैं, उन्हें कोई ऐसी कोई ऐसी उन्हें लाइब्रेरी नहीं है, कोई ऐसे एक स्थापित केरल
1: स्थापित
0: की कोई
1: केंद्र
0: ऐसा
1: नहीं है।
0: संस्थान
1: जी
0: नहीं है। हाँ, ऐसा
1: जी
0: कोई संस्थान नहीं है कि वो

0: जानकारी आप के साथ समृद्ध हैं, आप मालवीय बोली और जो भी बोली या भाषा है उसमें लोकोक्तियां भी होती है, मुहावरे भी होते हैं और बहुत कुछ होता है। तो जैसे जिसका राम धनी उसकी क्या कमी, ऐसे कुछ मालवीय में कहा जाता है, तो कुछ लोकोक्तियों के बारे में आप बताएंगे।
1: हाँ, आप लोकोक्ति और मुहावरों की बात कर रहे हैं। आपने जो बोला वो लोकोक्ति ऐसी है कि जिका राम धनी उके कहीं कमी।
0: क्या बात?
1: मतलब जिसका रखवाला भगवान हो उसको किस चीज की कमी, ये इसका अर्थ होता है। और बहुत अच्छा आपने ये विषय निकाला है लोकोक्ति और मुहावरे का। किसी भी भाषा को यदि हमें समृद्ध बनाना है तो उसमें लोकोक्ति और मुहावरों का एक विशेष योगदान होता है। और लोकोक्तियां वो होती है जो लोक अंचल में पुराने लोगों द्वारा कही जाती है और एक परंपरा उनकी चली आ रही है, और वो एक वाचिक रूप में ही भाषा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हस्तांतरित होती हुई चली आती है, और कम शब्दों में उसमें हम अपनी बात को कह पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि टनक बनियानी टनको करे, घर को माटी रीसे बढ़े, रीसे बढ़े तो बलवा देने, मारो टनको चलवा दे। मतलब ये एक मालवी की लोकोक्ति है और जिसका अर्थ ये है कि टनक बनियानी टनको करे, घर को माटी रीसे बढ़े। मतलब ये है कि हम अपना मनचाहा काम करते हैं, जो घर का हमारा मुखिया है चाहे वो हमें मना करे। रीसे बढ़े मतलब गुस्सा होता है।
0: गुस्सा, अच्छा।
1: रीस आना मतलब गुस्सा आना। हाँ, रीस का मतलब गुस्सा आना, ये मालवी का शब्द है। तो जो मनचाहा काम हम अपना करते रहे, चाहे कोई गुस्सा होता है तो होता रहे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ये अर्थ निकलता है। हाँ, और ऐसे ही एक ये है कि तेलन कमनी धोवन घाट, थारो मुंगरो म्हारी लात। मतलब जो दोनों पक्ष हैं वो दोनों ही झगड़ालू है। मतलब तेलन जो है वो भी कमनी है और धोबन है वो भी। तो उसका भैया
0: बहुत जबरदस्त जी,
1: दोनों ही पक्ष झगड़ालू है, कोई भी कम नहीं पड़ता है। इसको मालवी में बोलते हैं अधे बदे। अधे बदे मतलब कोई भी कम नहीं पड़ रहा है। जैसे दो पक्ष कोई झगड़ेंगे, हम किसी को समझा रहे हैं और कोई भी मानने को तैयार नहीं है, तो बोलते हैं कि ये तो दोनों अधे बदे हैं,
0: दोनों ही बराबर बराबर की टक्कर के हैं, यानी टक्कर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की मालवी लोकोक्तियां लोकांचल में प्रचलित है बहुत सारी। और प्रयोग जब जब कहीं भी बोलने की बारी आती है तो जब हम लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं उससे ही सामने वाला जानकार आदमी है वो समझ जाता है कि लोक साहित्य की इनको कितनी समझ है और ये क्या मतलब करते रहते हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक मालवी लोकोक्ति है, जिको मांडवो बिगड़े उनको ब्याह बिगड़नो तय है।
0: अच्छा।
1: तो मांडवो, जैसे मांडवा जो एक शब्द है, हम शादी ब्याह में जब आरंभ होता है शादी ब्याह का तो एक मांडवा बनता है, मांडवा गाड़ा जाता है
0: जी।
1: तो यदि वो मतलब शादी का शुभारंभ होता है, मतलब श्री गणेश है, यदि वहां पर ही कोई गलती हो गई तो फिर आपका पूरा कार्य वो गलत ही होना है। तो इसके कहते हैं कि यदि शुरुआत ही आपकी गलत हो गई तो आपका पूरा काम ही गड़बड़ होना है। मतलब जिको मांडवो बिगड़ियो उको ब्याह बिगड़नो तय है,
0: यानी आरंभ का जो संकेत है वो मांडवा है।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसी तरह से इस बोली में मुहावरे भी होंगे, तो मुहावरे और लोकोक्ति दोनों के बारे में बताएं जरा, बहुत इंटरेस्टिंग।
1: मुहावरे भी प्रसिद्ध है। अच्छा, लोकोक्ति और मुहावरे में बेसिकली अंतर ये है कि मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश होता है। मतलब हमको किसी वाक्य में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य होगा, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। आप लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप से कहीं भी आप उसको प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि अब मुहावरा है अड़ियल टट्टू होनो, तो अब इसको आप ऐसे किसी वाक्य में ही कि अरे राम तो अड़ियल टट्टू है नहीं, या उको नानो अड़ियल टट्टू है, तो हम इस तरीके से वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। तो अड़ियल टट्टू मतलब जो किसी भी काम को रुक रुक के करता है, मतलब अटक अटक के काम करता है, अड़ियल टट्टू टाइप। हाँ, है ना, इस तरीके से। और बहुत सारे शब्द भी ऐसे प्रचलित हैं, जैसे लपक डेंडू। तो

0: लपकडंडू का अर्थ होता है अवसरवादी। तो देखिए कि पुराने लोगों ने कितने, हाँ, एक डेंडू एक सांप की तरह का एक प्राणी होता है, पानी का जीव होता है ये। और ये क्या करता है कि अपना मुंह खोल के उसमें पड़ा रहता है पानी में। जैसे ही कोई भी उड़ता हुआ मच्छर वच्छर या कोई भी आया कीट पतंगा, तो झट से ये उसको लपक लेता है, तो इसका नाम है लपक डेंडू। तो इसको उन्होंने अवसरवादी के रूप में, कि भी कैसा होता है कि वो अवसर के ताक में रहता है, उसको मौका देना, उसने उस अवसर को झपट लिया। तो बड़ा मतलब अच्छा ये शब्द है लपकडंडू, और मालवी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे करम खोल लो। तो करम खोल लो जिसके करने विधाता ने कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, ऐसा व्यक्ति उसको बोलते हैं करम खोल लो, करम आप हो गए। और एक बहुत अच्छा शब्द है घड़िया पाड़ना, या जिस या चितरना भी बोलते हैं। तो इसके साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी के एक मित्र थे, अभी आजकल तो वो एक बहुत बड़े ज्योतिष हैं और काफी बड़े बड़े लोगों के हाथ वगैरह देखते हैं और उनको वो ज्योतिष का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए मतलब पुराने जो लोग रहते थे वो कैसे हिंदी में मालवी के शब्दों को कैसे समाहित कर लेते थे, उसका मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। कि वो उस वक्त हम बहुत छोटे होते छोटे हुआ करते थे, मतलब मैं मुश्किल से 7-8 साल की रही होगी और वो हमारे घर आए होंगे। तो हमारे जो पहले जो कुंडली पत्रिका जो होती थी वो पहले हाथ से बनाई जाती थी, अभी आजकल तो सब कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर से बन जाती है। तो हम लोगों की जो कुंडलियां थी वो हाथ से बनी हुई थी। तो हमारे पिताजी ने बोला कि अरे घनश्याम आया है मेरा मित्र, इसको दिखाओ इनकी बच्चों की पत्रिकाएं, मतलब क्या है क्या नहीं है, इसमें राजयोग वगैरह है कि नहीं, इसका ऐसा वैसा। तो उनको, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ, बोले कुछ मुझे ऐसे पे लिख के बताओ कॉपी पे। तब हम तो बच्चे ठहरे, तो हमको तो मस्ती मजाक सूझता है, ऐसे एकदम से कोई बोलेगा तो काम करने वाले रहते नहीं है। तो मैंने क्या किया, ऐसे कॉपी ले जाके उसके ऊपर ऐसे ऐसे चित्र दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपने ये घड़िया क्यों पाड़े, मतलब उन्होंने हिंदी हिंदी की टोन में वो घड़िया पाड़ने वाला मालवी का शब्द घुसाया बीच में। तो मेरे को, मैंने उसको पहली बार सुना ये शब्द, तो मेरे को इतनी हंसी आई, मतलब मैं काफी देर तक हंसी, बच्चे तो थे और हंस के भाग गए, मतलब वो क्या कह रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। और ये भी ध्यान नहीं है कि भाई पिताजी के मित्र हैं तो बुरा ना मान जाए, अब बच्चे जो ठहरे, बच्चों को कोई इन सब चीजों का वो नहीं रहता है। तो बाद में फिर अब जाके वो समझ में आता है कि ये घड़िया पाड़ना मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा जो भी हम चित्र दे रहे हैं कॉपी पे, उसके लिए मालवी का शब्द था। तो ऐसे बचपन में हमारा क्या संयुक्त परिवार था, हमारे जो बास्ताप थे वो हम सब बच्चों को बिठाते थे और गिनती वगैरह बुलवाना करवाना। तो अभी जब मालवी निमाड़ी का जब अनुवाद करवाया एनबीटी ने, तो उसमें एक शीर्षक आया था कि चंदा गिनती भूल गया। तो गिनती के लिए मैंने पराच शब्द का उसमें उपयोग किया। तो एक जो बहुत पुराने वहां पे बुजुर्ग साहित्यकार थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुमको ये शब्द कैसे पता, ये तो बहुत पुराना मालवी का शब्द है। तो मैंने कहा कि ये शब्द हमको इसलिए पता है क्योंकि बचपन में हमारे बासाब हमको पराच माचने के लिए बिठाते थे, मतलब गिनती बुलवाते थे और बोलते थे चलो बच्चों सब यहाँ बैठो पराच माचो। तो मुझे मालूम है कि गिनती को पराच बोलते हैं। तो इस तरीके से शब्दों का ये कलेक्शन है, और ऐसे ही मतलब मेरा मालवी शब्दकोश भी प्रकाशन में आया है। और इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और मालवी शब्दों में तो वैसे भी मिठास है ही, जैसा कि आपने कहा, और मालवा की मिठास
1: बिल्कुल
0: का आपने भी रसपान किया ही होगा, और जो लोग
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल।
0: कार्यक्रम
1: और
0: देख
1: आज
0: रहे
1: तो
0: होंगे
1: हम
0: उनको भी
1: रसपान
0: बड़ा।
1: नहीं, आज तो हम जो है वो मालवी की गंगा में नहा लिए हैं, ये समझ लिए, हमने स्नान कर लिया है और उसका स्वाद हमारे श्रोता भी ले रहे हैं। भोली बहन हेमलता हमारे साथ हैं, हेमलता शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से, और बात कर रहे हैं हम प्रोग्राम आंचल की अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति का जो आंचल है उसमें क्या क्या लेके आई हैं, ये सच में जब हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो वो मालामाल हो गए होंगे, क्योंकि मालवीय और उस बोली की बात हो रही है। हेमलता, हम जिस युग में जी रहे हैं, एक संक्रमण का दौर है। आपने जैसा अभी उल्लेख किया कि वो एक जमाना था जब कुंडलियां हाथों में और भोजपत्र में बनी होती थी और कागज पे हुआ करती थी, हाथ से बनाई जाती थी। आज कंप्यूटर का युग है, तकनीक क्रांति इतनी आ गई है कि हम उसका शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकते। उसका विस्फोट जो होगा वो जरूर हमारे सामने आएगा और हमारे बच्चों के सामने आएगा, तब उनको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, पर हो गया जरूर। तो वो होता जा रहा है, तो इस बदलाव को आप किस तरह से साहित्य में देखती हैं? क्योंकि इस इन सब चीजों को, जैसे आप जैसे कुछ पुरोधा लोग हैं वो लिख रहे हैं, वो संयोजित कर रहे हैं, पर जो 2-30 सेकंड की रील है उसमें देख के उतनी देखने तक की फुर्सत नहीं है। यानी हम में जितनी तकनीक को हमने विकसित कर लिया है, उस तकनीक का उपभोग भी तो हमें करना चाहिए। तो जब हमें, तो इन किताबों का, इन साहित्य का जो आप कर रही हैं, हम कर रहे हैं, उनका उपयोग कैसे होगा, उसका भविष्य क्या होगा? साहित्य का भविष्य, भाषा का भविष्य, बोली का भविष्य, लोक संस्कृति का भविष्य, इन सब पे जब सोचते हैं तो कई बार चिंता लगती है, चिंता का विषय बनता है। तो क्या हम इससे उबर पाएंगे? आप एक चिंतक है, साहित्यकार हैं, लिखती हैं, तो क्या सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? इस संस्कृति को बचाने में लगे हैं, आप जैसे, हमारे जैसे लोग तो इसको बचाने के लगे लगे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको इससे कोई सरोकार नहीं है, तो क्या होगा इसका भविष्य? क्या सोचती हैं आप इस विषय में?
0: बहुत अच्छा आपने ये विषय उठाया है, और केवल अभी ही नहीं, किसी भी लोक भाषा के लिए ये प्रश्न बड़ा महत्व का साबित हो सकता है। और वाकई में उस बोली या लोक भाषा के चिंतकों को, साहित्यकारों को, लोक साहित्यकार जो हैं, इस विषय पर अवश्य चिंतन करना चाहिए कि भाई हमारी जो लोक बोली है, लोक भाषा है, उसका वर्तमान संदर्भ क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कितनी प्रासंगिक है, और आगे जाकर के उसका भविष्य कैसा होगा, क्या वो वाकई में विलुप्त हो जाएगी या वो बची रहेगी। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, तो हम क्या अपनी जो नई पीढ़ी है उसको ये सारी चीजें जो कि त्यों हस्तांतरित कर पाएंगे, और इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने होंगे, ये इसीलिए चिंतन का विषय बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर यहाँ मेरा वही कहना है कि मैं बात करती हूँ मालवी की, तो मन में प्यार ने भोजन में मनवार होए, ने आशीष ने माँ तरीखो दुलार होए, मालवा की मालवी की मिठास ऐसी है कि पल में मनक बोलने वास्ते तैयार हो। तो आप किसी से भी मालवी में यदि एक शब्द भी आप बात करते हैं तो वो आप बड़े सरल सहज, क्योंकि मालवी बड़ी मीठी भाषा है, तो एक आकर्षण जो है वो ये लोगों में पैदा करती है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी पिछले में विगत आप 5 वर्षों पहले की यदि हम बात करें कोरोना काल के समय से, तो उस वक्त तक मालवी का उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन कोरोना काल में एक कहना चाहिए कि क्रांतिकारी जैसे परिवर्तन, क्योंकि लोग थोड़े से फ्री थे और हमने भी उस समय बहुत ज्यादा गति पकड़ी, क्योंकि हमें भी वर्क फ्रॉम होम करने की छूट मिली हुई थी और घरों में कैद थे, लॉकडाउन था, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। तो वो समय का हमने काफी उपयोग किया और लोगों को जोड़ने के लिए हमने मालवी में छोटी छोटी जो मूवीज होती हैं, शॉर्ट मूवीज, तो वो हमने बनाई, सोशल मीडिया पे उसको हमने प्रचारित प्रसारित किया। उसके कारण लोगों में एक आकर्षण, क्योंकि मूवी और सिनेमा ये शब्द ऐसे हैं कि आज भी इनका लोगों को क्रेज है। आप किसी को कह दो कि आपको टीवी पर आना है या आपको आकाशवाणी पर आपका कविता रिकॉर्ड होगी, तो उनको बड़ा क्रेज है आज भी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों को आकर्षित करती है। तो हमने उस समय करीब 35-40 हमने छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज बना के हमने उस वक्त डाली थी, तो उसका बड़ा फायदा एक ये हुआ कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे मतलब मूवी में आना है करके, तो इस तरीके से वो बच्चे सक्रिय हो गए। और अभी आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे भी कई लोग मतलब सुपरस्टार जिसको कहते हैं मालवी के छोटे छोटे बच्चे, मालवा के सुपरस्टार टाइप बने हुए। उन्हें भाषा बोली से मतलब नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि हम भाषा को बढ़ा रहे हैं या हम हमारे क्षेत्र की बोली के लिए काम कर रहे हैं। उनको जो है वो एक नेम और फेम कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है उस तरीके से। तो इस रूप में मैं देखती हूँ कि मालवी बोली का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ऐसे बच्चों के अभी भी आप देखेंगे लाखों फॉलोअर्स हैं। तो कहीं भी मैं ये नहीं मानती, और वो बच्चे भी यदि मालवी में कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो हाथ से हो, चाहे वो कुछ भी बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, तो उसके माध्यम से बोली का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार संवर्धन तो हो ही रहा है, संरक्षण भी हो रहा है।
1: बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात और बहुत तो अच्छा सुझाव आपने दिया।
0: बढ़ ही रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ, लेकिन अब उसको ये है कि एक साहित्यबद्ध रूप में भी होना चाहिए, तो उसके लिए जो प्रयास है वो साहित्यकारों को, चिंतकों को और स्थानीय स्तर के जो है प्रबुद्ध लोग उनको एक दिशा, शासन को जरूर उसमें सहयोग करना होगा, क्योंकि व्यक्तिगत जो प्रयास होते हैं वो सीमित होते हैं, उनकी एक सीमा होती है, और कोई भी व्यक्ति निरंतर कोई भी कार्य को जारी रखने में अक्षम सिद्ध होता है, क्योंकि हर चीज के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। तो
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हम जो है वो
0: एक कार्य है किसी भी लोक बोली भाषा को बचाना, संरक्षण संवर्धन करना एक बड़ा कार्य है। कोई एक व्यक्ति जिसको कहते हैं अकेला छोड़ सकता,
1: बिल्कुल,
0: तो एक व्यक्ति इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। इसके लिए जो कह रहा है कि लोक स्तर पे लोगों को आगे आना होगा, प्लस शासन को भी इसमें कुछ योगदान, कुछ अपना सहयोग, कुछ मदद ऐसी देनी होगी, और एक दिशा निर्देश कुछ ऐसा करना होगा। और मुझे थोड़ा प्रसन्नता भी होती है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ये कार्य शुरू हो गया है, क्योंकि जो अपनी शिक्षा नीति है उसमें लोक भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो अब धीरे धीरे करके जो है बोली से जोड़ने के लिए, बच्चों को भी जोड़ने के लिए और सारे प्रयास हो रहे हैं। अब इस पर शोध भी हो रहे हैं मालवी को लेके। अभी आज ही मेरे पास एक कॉल था मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी से कि हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी मतलब आवश्यकता है हमको, तो आप अनुमति प्रदान करें। तो एक अच्छी चीज है, अब यूनिवर्सिटीज में
1: बिल्कुल
0: लोक बोली लोक भाषा के लिए अलग से एक संभाग बनाया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। शोधार्थियों को वहां पर सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये होना ही चाहिए और हो रही है, और धीरे धीरे मालवी इससे निश्चित तौर पर बढ़ेगी और मालवी लोक भाषा का भविष्य उज्जवल है। पहले आप गूगल पे सर्च करते थे तो कुछ एक चीजें नजर आती थी, अब आज आप यदि उस पर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मालवी का बहुत सारा साहित्य और बहुत सारी चीजें, आपको वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम की रील्स हैं और लोकगीत हैं इस तरीके से। और मालवा में एक लोकगीत के साथ साथ लोकनाट्य और एक निर्गुणी गायन भी यहाँ पे प्रचलित है। भर्तरी गायन की परंपरा चलती है उज्जैन में, और कबीर गायन यहाँ पे काफी प्रचलित है। एक हमारे कबीर गायन करने वाले जो हमारे प्रहलाद टिपाणिया दादा हैं, उनको तो पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। तो ऐसे जो सम्मान और ये प्रयास, यही शासन का योगदान होता है कि कम से कम काम करने वाले लोगों को शासन सम्मानित करता है। अभी भी इस बार भी साहित्य अकादमी के जो कार्य घोषित हुए हैं उसमें मालवा के काफी सारे लोगों को पुरस्कृत किया गया है, तो इससे लोगों का रुझान इस ओर बढ़ेगा और ये एक बहुत अच्छा साहित्य अकादमी का मैं मानती हूँ कि मध्य प्रदेश किया है। इसके लिए उसके निदेशक को भी साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, शासन को साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, और निश्चित तौर पे मालवी का भविष्य उज्जवल है। और अच्छा, मालवी में ऐसा है कि कहीं भी आप कोई सी भी चीज बढ़िया से उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, लोग उसको सुनता है। और मालवी ऐसे मराठी या सिंधी या वैसी नहीं है कि किसी को समझ नहीं आएगी, हिंदी से मिलती जुलती है। तो आप जैसे कुछ भी बोलते हो तो वो आपको एक उसका भाव तो समझ में आ ही जाता है, मतलब जैसे पूरा आपको
1: पूरी तरह ना आए पर

0: है, जैसे
1: भाव,
0: मैं आपको
1: भाव बोध हो जाता है।
0: हाँ, जैसे मैं आपको मालवी की चार लाइन में जैसे आपको सुनाऊं
1: जी।
0: कि त्रिपुरा को पावन घाट जा पे माहर सिद्धि को वास है, त्रिपुरा को पावन घाट जा पे माहर सिद्धि को वास है, जा विराजा महाकाल राजा उन्हीं उज्जैनी की बारे, तम नहीं समझोगा।
1: वाह, समझ में आ गया, बहुत समझ गया।
0: समझोगा वाली, हाँ, ये टेक लगा के और कि उसमें क्या रस है, क्या आनंद है, क्या बात है,
1: समझ गए। जहाँ महाकाल विराजता है उसको हम क्या समझेंगे,
0: बिल्कुल
1: नहीं समझ सकते,
0: बिल्कुल।
1: वो तो विराट है। और तो भोली बहन यानी हेमलता शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस प्रोग्राम में रही, इस प्रोग्राम का नाम तो आप जानते ही हैं, अभिव्यक्ति का आंचल। और
0: जी,
1: इस प्रोग्राम में भोली बहन जिसको कहते हैं हेमलता शर्मा हमारे साथ रही और मालवीय साहित्य और हिंदी साहित्य पर अपना प्रकाश डाला शब्दों का, उसके लिए हम बहुत विनम्र रूप से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली और एक अच्छी साहित्यकार जयपुर रेडियो वर्ल्ड से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि हम बार बार भोली बहन से आपकी बात करवाते रहेंगे। आज
0: मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक मिनट का समय मैं आपसे और लेना चाहूंगी।
1: जी जरूर।
0: आज क्योंकि जयपुर रेडियो है और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है,
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ मालवी दोहे में महाराणा प्रताप जी के लिए भी कहना चाहूंगी, ताकि राजस्थान के आनबान शान और चित्तौड़ और मेवाड़ की भी आनबान शान के लिए भी कुछ बात हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मालवों में

0: मालवों में वाड़ गूंजे राणा जी को गान। तो ये कुछ दोहे मैंने महाराणा प्रताप पर भी आज लिखे थे,
1: बहुत
0: उनको
1: अनुपम
0: जयंती पर
1: शौर्य का
0: उनको सादर
1: प्रतीक,
0: नमन करते हुए। जी
1: बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत आभार आपका कि आपने राजस्थान पे और महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व पर अपने शब्दों से प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत आभार,
0: जी
1: बहुत
0: भारत
1: शुक्रिया।
0: का गौरव है हमारे। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान का गौरव और भारत का गौरव और
0: बिल्कुल
1: दुनिया का
0: बिल्कुल
1: गौरव है महाराणा प्रताप।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल
1: महाराणा है उसको आपने अपने शब्दों से चित्रित किया है, आज के दिन विशेष रूप से उसके लिए आपको धन्यवाद, आभार और प्रणाम,
0: जी
1: सल्यूट है आपको, आपकी सोच को, आपके चिंतन को, कि आपने इतनी अच्छी विचार धारा को अपने शब्दों से प्रवाहित किया, उसके लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हेमलता शर्मा भोली बहन, और भोली बहन है तो सब कुछ संभव है, भोली बहन सब कर लेती हैं, तो आगे भी हम आपके साथ यूं ही गाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। आज इस प्रोग्राम
0: जी
1: को यहीं विराम देते हैं, बहुत
0: जी बहुत
1: प्रणाम।
0: धन्यवाद।

डिजिटल वॉइस वर्ड के जयपुर रेडियो वर्ड से आपने सुना प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ रही हेमलता शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से। आप सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं और शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने सुना और पसंद किया, हम उनके नाम लेना चाहेंगे जिनके फीडबैक हमें मिले। मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, लखनऊ से आरजे प्रीत, अहमदाबाद से हीना भट्ट, नेपाल से अनीता डूगर और कल्पना अग्रवाल, दुबई से संगीता माल्या, छत्तीसगढ़ एमपी से मीता ठक्कर, सोमा द्रोन जयपुर राजस्थान से, हीना मनीष मेहता अहमदाबाद गुजरात से, मानी मालिक अंबाला कैंट से, राणा समीक्षा जलंधर से, चेतन चौहान महाराष्ट्र मुंबई से, बड़ोदरा गुजरात से अमीषा पटेल, विपिन जोशी जगह का नाम नहीं लिखा, विदेही ठक्कर अहमदाबाद गुजरात से, और आरती करवड़े यूएसए से। आप सभी का बहुत आभार धन्यवाद। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। हाँ, संगीता माल्या दुबई से और चेतना शाह दुबई से। आप सभी का आभार और धन्यवाद। यूं ही सुनते रहें जयपुर रेडियो, जिसका नाम है आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

चांदी के पर्दे पे जो चांदनी थी, जो बेजान सीन को अपने प्रेजेंस से जिंदा कर देती थी, और जिनकी आंखों में इन्फेक्शस सी चमक थी, एन एक्ट्रेस हु लिटरली ब्रॉट स्क्रीन टू लाइफ, वो लाइफलेस कैसे हो सकती हैं? श्रीदेवी, आपने हमें जादू दिखाया और जादू सिखाया। मेरी आंखों के सामने उभर रहे हैं वो इंफेक्शियस एक्सप्रेशंस, वो चमकती आंखें, वो दमकते एक्सप्रेशंस, और हम तो उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंट छतरी, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंसेस, श्रीदेवी सच में इस जादू के लिए शुक्रिया। फिल्म लम्हे को 30 साल हो चुके हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तानिया और जगदीश की मधुर आवाज़।

क्या आप जानते हैं दोस्तों, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा अय्यर अय्यप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। बता दें कि श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 16 सावन से डेब्यू किया, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में से 13 उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। सुनते हैं ये हमारा अगला गाना फिल्म हिम्मत वाला से, बोल इंडिवर के, म्यूजिक दिया बपीदा ने और गाया बेहद खूबसूरती से किशोर दा और लता मंगेशकर ने। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके लिए किशोर और संगीता अपनी सुरीली आवाज़।

श्रीदेवी ने 90s में आई थिंक लड़कियों से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया है ना। हमेशा स्लिम होना, हमेशा खूबसूरत दिखना, एलिगेंट होना, प्रॉपर होना, स्टाइल मारना कोई जरूरी नहीं, ये समझा दिया। बी योर नेचुरल मैड क्रेजी सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई मीन जो मूछे लगा के आंखें भेंगी करके भी पूरे देश का दिल जीत सकती थी, वो कितनी हेल्दी रोल मॉडल थी, सोच के देखिए। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली थी हवा हवाई, हर उम्र के लोगों की पसंदीदा थी। अगर आप भी तनाव फील कर रहे हो, अपना मूड अच्छा करने के लिए बस ये गाना सुन लीजिए और आपका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। इसे सुनाने आ रही हैं गायत्री और मनीषा आपके लिए।

सिग्नेचर श्रीदेवी इन ऑल हर ग्लोरी, एक ही इंसान एक साथ मैड, इनसेन, सेक्सी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड स्टेलर परफॉर्मर कैसे हो सकता था। एक तरफ ऐसे गानों की मैडनेस सच एज न जाने कहाँ से आई, या करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, या फिर ऑफकोर्स हवा हवाई न जाने कितने, तो दूसरी तरफ सेंसुअलिटी जो स्क्रीन पे आग लगा दे, मतलब जाबाज ले लो या मिस्टर इंडिया का दूसरा गाना ले लो एंड मेनी अदर्स, बीच में हम मेस्मराइज्ड। सुनते हैं दोस्तों वो गाना जाबाज मूवी का, हर किसी को नहीं मिलता, श्रीदेवी की स्टेलर परफॉर्मेंस जिसने आग लगा दी थी, मेरी यानी रति और गगन की आवाज में।

हिंदी फिल्मों में समाज को संपूर्ण बनाने की सारी विधा मौजूद है। नायक की खुद्दारी हो या नायिका का त्याग, या फिर आपसी प्रेम भाव का आचार विचार हो या समाज को एकजुट रखने का संदेश, यह सभी चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नायक और नायिकाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गीत कांटे नहीं कटते, दिन ये रात इश्क और हुस्न की इंतहा को जग जाहिर करता है। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज ने इस गीत को मधुरतम बनाया है। गीत आई लव यू के भाव से शुरू होता है और इसी भाव के साथ खत्म भी होता है। आइए सुनते हैं ये गीत प्रेरणा और रेस की आवाज में।

1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी का ये गीत, इसमें श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने पानी में आग लगा दी थी। हुस्न की अदा बारिश के मौसम में इस गीत में काफी सुहावनी बन पड़ी है। गीत संगीत और श्रीदेवी के बेजोड़ नृत्य के गीत को मधुर अंदाज दिया है आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में। गीत काफी मनोहरी बना। इसे सुनते हैं मानवेंद्र और संगीता की सुमधुर आवाज में।

मैं आपके साथ रति भार्गव अपने आओ झूमे गायें के कलाकारों के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट में याद कर रहे हैं उन्हें जो कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गईं। हम उन्हें तो मिस करेंगे ही और अभी उन्हें जितनी बेहतरीन फिल्में करनी थी उन्हें भी मिस करेंगे। 80 के दशक में एक और गीत देखने और सुनने को मिला जिसमें हुस्न और इश्क का बेजोड़ संगम था। हमारा अगला गाना हुस्न और इश्क की अदा पर चांदनी मूवी का ये गाना सुनते हैं प्रियंका और गिरीश की मधुर आवाज में।

श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चाल पास, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसे कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में शानदार वापसी की। सुनते हैं हमारा अगला नगमा दो दोस्तों की दास्तान पे, और इसे सुनाने आ रहे हैं मुकेश और मंदार अपनी मधुर आवाज में।

रानी मेरा नाम, जूली और सोलवा सावन जैसी चुटपुट फिल्में करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने वाली श्रीदेवी 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी उनको नजर ही नहीं आई। इसके बाद श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज और कर्मा जैसी फिल्म करने के बाद वह 3 साल में ही नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बाद मिस्टर इंडिया, निगाहें से होते हुए करियर उनका अगला टर्निंग पॉइंट था चांदनी। श्रीदेवी को सफेद लिबास में ढली चांदनी देख उस समय हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। श्रीदेवी की ये फिल्म गवाही देती है इस बात की कि आज 30 साल के बाद भी चांदनी की चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना रूही और विश्वजीत की सुमधुर आवाज में।

मुझे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: कौन मैं?
1: यस यस यस यस।
0: क्यों?
1: कोई फूल कोई तोहफा, तुम कुछ भी साथ नहीं लाते, बड़े बहू समझाऊं तुम्हें।

0: सपनों से सुंदर लग रही थी चांदनी बनकर इस गाने में, याद रहेंगी वो हमें हमेशा। रेस्ट इन पीस श्रीदेवी जी, थैंक्स फॉर द मैजिक। श्रीदेवी के जितने सॉन्ग्स करो कम है, इतने सॉन्ग्स हैं, इतनी बातें हैं, पर ट्रिब्यूट पूरा नहीं लग रहा। भरपूर तब होता है ट्रिब्यूट जब भरपूर जी कर जाए वो जिन्हें हम चाहते। ऐसे ही अचानक से बेवक्त बीच में से जब कोई चला जाए, व्हाट डू यू से, हाउ डू यू रिमेम्बर देम। जिस चेहरे में इतनी जान थी वो अब बेजान है, अभी तक यकीन नहीं होता है। इतनी जिंदा दिल परफॉर्मेंस जो दे गई वो अब खुद जिंदा नहीं है, पर रहेंगी ना हमेशा उसी चांदी के पर्दे पर जिसकी वो चांदनी थी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिलों में भी।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

माँ ललिता जी अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हरने जी।

0: संजय जी, हम मन विभोर हुए।
1: मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलयालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागा से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

अति सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमयी संगीतमयी साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चाचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते और जयपुर।
4: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
0: आज की हमारी सिंगर हैं दुबई की संगीता माल्या।

जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम भी हमने यही रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आप सुन रहे हैं राम रेडियो। जी हाँ, स्वतः ही ये नाम मुंह से निकला है और आप तक पहुंचा है। और जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया, जयपुर रेडी के सभी सिंगर्स ने हमें बहुत ही उत्साह दिया और हर्ष से भरे हुए अपने गीत अपनी आवाज में हमें प्रेषित किए। हम उन सब का आदर करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और सभी के गीत हम इस मंच पर इस प्रोग्राम के तहत रखेंगे, जिसका नाम है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आज की इस संगीत यात्रा की शुरुआत हमने की है दुबई की बहुत ही सुरीली सिंगर संगीता माल्या। कुछ गीतों में आपका साथ देंगे यूके के रवि कुमार। तो शुरू करते हैं ये सुरीली यात्रा का विशेष प्रोग्राम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

हे राम, तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कोई सिंगर बन जाए सहज सौभाग्य है, और ये सहज सौभाग्य जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स को प्राप्त है। राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे सभी सिंगर्स पे, लिस्टर्स पे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वेलकम करते हैं संगीता माल्या का। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

राम स्वनाम है धाम, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम। आइए राम को बार बार प्रणाम।

राम भजन कर मन। राम है स्वनाम धाम, राम है स्वनाम धन, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम, राम धाम को प्रणाम। अयोध्या में आए हैं श्री राम, वो राम जो केशव है, जो माधव है, जो अच्युत है और जो सबके दृष्टा हैं, उस राम को प्रणाम, उस केशव को प्रणाम। अगले भजन में संगीता माल्या, अच्युतम केशवम।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का राम रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम पायू जी मैंने राम रतन धन पायू। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दुबई से संगीता माल्या। हे राम, जग में सबसे सांचा तेरा नाम। हे अवध बिहारी, पधारो, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। इस गीतमाला में इसको सफल बनाएं और हमारे सिंगर्स के साथ आप भी गाएं। मैं खोजता रहा अपने आप को, खोजता रहा सच को, लेकिन सच तो केवल केवल और केवल आपका ही नाम है। संगीता माल्या के साथ।

आप सुन रहे हैं राम रेडियो और राम से कृपालु कौन है? कोई नहीं ना, उसकी दयालुता, उसकी कृपालुता को प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है।

श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये खूबसूरत भजन आपने सुना रवि कुमार और संगीता माचिया की आवाज में। आप सुन रहे हैं रामदेव जी।

0: ये जो जीवन की लय है, सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए जय रघुनंदन, जय सियाराम।
1: श्री रामचंद्र आशीष पारिजात,
0: तुम ही प्रणाम। आप सुन रहे हैं

जय रघुनंदन जय सियाराम, आप सुन रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रेडियो का ये खास प्रोग्राम हमारे संग संगीता माल्या दुबई से। और जब राम जी

आप सुन रहे हैं पायो जीवनी राम रतन मोहन पायो प्रोग्राम राम रेडियो से डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये राम रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान। आज की पायलट सिंगर

अद्भुत अनुपम छवि श्री राम की और अपने शब्दों से, अपनी आवाज से

ऐसा ही सुख हमें मिला है इस प्रोग्राम को सुन के संगीता जी। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। बहुत आभार इस प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट को सार्थक।

0: डिजिटल वॉइस पर राम रेडियो का विशेष आयोजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
1: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और जयपुर रेडियो वर्ल्ड से अभी आप सुनते हैं, यानी ये समय है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और गीतों की ये बाहर लेके आई है अर्चुरानू 16। हर रविवार को एक नया प्रोग्राम अपने सुरीले सिंगर्स के साथ हमारे साथ होती हैं अर्चुरानू 16, आपकी आवाज आपकी पहचान। वैसे तो तारे निकलने का समय है, लेकिन गीतों के सितारे इसी वक्त निकलते हैं, आपके साथ होते हैं। पहले गीत में हम रूबरू होते हैं अर्चुरानू के साथ। छुप गए तारे नजारे, हाय क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, और तूने गीत सुनाया शाम से रात हो गई। और पहली मुलाकात में मनोज जोली के साथ अर्चुरानू 16। आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, इस अंक का पहला गीत।

सच में दिन से रात तो हो गई। मनोज जोली और अर्चुरानू 16 को हमने सुना। सच में अर्चना जी, एक गीत और हो जाना चाहिए, जिसे क्या कहें, सॉन्ग फॉर पीस, शांति के लिए भी कोई गीत होना चाहिए, अपनी बात रखने के लिए भी कोई गीत होना चाहिए।

हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है वफा की, क्योंकि शीशे की अरमा लेके हम घूमते हैं और शीशा है कि टूट जाता है, और वादा भी टूट जाता है। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। राम किंग आ गए हैं अर्चुरानों के साथ सुरीला सॉन्ग।

मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। राम किंग साथ दे रहे थे अर्चना अग्रवाल का। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये विशेषंक, आपकी आवाज आपकी पहचान जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। और अब आ गए हैं बबलू आर्य, रिम झिम रुंझुन रुंझुन, गीत में संगीत, संगीत में गीत, बबलू आर्य और अचुरानु 16।

रिमझिम भी है, रुनझुन भी है, बरसात भी है, पानी भी है, रात भी है और ये मुलाकात भी है। आइए अगली मुलाकात मनोज जोली के साथ इस गीत में अर्चुरानू कर रही हैं।

भीगी रातों की प्रतीक्षा है, उन भोली बातों की मुलाकातों की प्रतीक्षा है, तारे छुप जाने की प्रतीक्षा है और आपके आ जाने की प्रतीक्षा है। इस बार इस गीत में सुरीला साथ देने के लिए आ गए हैं संजीव शुक्ला। अर्चुरानू का ये गीत छुप गए तारे सारे नजारे, हाय क्या बात हो गई। और इस गीत को हमने इस प्रोग्राम में आज दो बार लिया है क्योंकि आमंत्रण ऐसा ही था।

या यूं कहीं छिप गई हैं, और बादल ने थोड़ी देर के लिए अपना दामन लहराया है। संजीव शुक्ला साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का, और आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये अगला सॉन्ग।

0: थैंक यू।
1: उम्मीद इंतजार बादल लेके आएगा बारिश, और सरगम स्टूडियो साथ दे रहा था अर्चरानू का इस गीत में, और उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसी का नाम तो है जिंदगी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

ये दुनिया ये महफिल ये गीत यूं ही हमारे संग सदा साथ रहें। पब्लू आर्या और अर्चुरानो का ये सुरीला गीत हमने सुना और ये दुनिया है चलती रहती है और इसमें हमारे गीत गूंजते रहते हैं और हम गुनगुनाते रहते हैं। अगले गीत में अपना स्वर लेके आए हैं इस मंच के मेल सिंगर अनुराग। वेलकम है अनुराग, अपनी आवाज के नूर का निखार लेकर आ गए हैं अनुराग। आइए सुनते हैं, आ गए हैं तो

तुम आ गई हो तो नूर आ गया है। सच में नूर लेके आए हैं। और पिछले दिनों हमने ऋषि कपूर अभिनेता को याद किया था, और आज इसी सप्ताह में हम अनुराग का ये गीत लेके आए हैं, फिल्म प्रेम रोग का, जिसे ऋषि कपूर साहब पर अभिनित किया गया था। फिल्म प्रेम रोग का ये गीत, इस रोग की माया ऐसी पलट दे जो गीतों की पूरी काया, अनुराग

जाओ जाओ जाओ मेरे यार को बुलाओ, जाने तो अभी नहीं देंगे हम तो यही कहेंगे कि चलते रहो, चलना ही जिंदगी है। अनुराग, एक गीत और हो जाए इस प्रोग्राम में।

हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, और ना चलेंगे तो मंजिले मकसूद पर कैसे पहुंचेंगे। तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, और ना चलेंगे तो मंजिले मकसूद पर पहुंचेंगे कैसे। नाना पीछे ना देखें, गीतों की ये सुरीली दास्तां अपनी जुबानी लिख रहे थे इस मंच पर अनुराग, इस मंच के मेल सिंगर। और आज का ये सुरीला कारवां यहीं तक, अनुमति दें, नमस्कार।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरूर सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत

नहीं तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बहुत खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय।

0: माँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार की।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू 16 के साथ। आज

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्जुन रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्जुन रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्जुन रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अच्युत रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है, लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत।

प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम। भूमिका आज के सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चुल रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत जिसमें अर्चुल रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

0: ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
1: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बाम वेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाए।
2: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
3: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: Oh no, no need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ सही पहचाना, वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं। रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए जैसे कि असमीस, कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, मैथिली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाएं। और तो और उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरेबिक, सिन्हला, डच, स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए जैसे कि भक्ति गीत, शास्त्रीय गीत, गजल, कव्वाली, देशभक्ति गीत, मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत। तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से, जिसमें ऋषि कपूर जी थे। इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

0: करें।
1: क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसमें प्रदीप कुमार के साथ शशिकला थी। इस फिल्म के सारे गाने खूब हिट हुए। इस फिल्म का बेहद शानदार संगीत दिया रवि जी ने और गीतों को शब्दों से पिरोया असद भोपाली जी ने। आइए इसी शानदार गीत को सुनते हैं अनिल झुमका वाला जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों, चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने? कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया OP नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शम्मी कपूर के साथ आशा पारिक थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शम्मी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है, और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं, और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: Oh no, no need to be sad, Ma. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: उफ, ये सरदर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
2: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा जेएमडी का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सरदर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाए।
3: जेएमडी, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम। 100 साल एक आवाज, सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी, और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफ़ी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज़ को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार। एक आवाज़ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर और आज के दिन आपके सामने रफी जी के गाने पेश करना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं है। सबसे पहले थैंक यू जयपुर रेडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बोलना चाहूँ आज के बारे में, आज के दिन के बारे में, रफी जी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि समंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा अगर कुछ है तो वो रफी जी का सुर है। रफी जी को जब सुनते हैं हम दूर से, सिर्फ सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कितनी मुलायम आवाज, कितने आसानी से गा रहे हैं। लेकिन वही जब हम कोशिश करने जाते गाने की, तब समझता है एक एक सुर कितना गहरा है। और आज मैंने जो कुछ भी कोशिश की है वो शायद उनके नाखून के बराबर भी ना हो, लेकिन ये मेरी तरफ से आज के दिन उनके 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से एक आदरांजलि है उनको।
0: थैंक यू सो मच सुदर्शन जी, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। फ्रेंड्स, सुनते रहिए जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। 100 साल पहले एक आवाज ने इस दुनिया में कदम रखा जो हर दिल के दर्द का मरहम बन चुका था, मोहम्मद रफी। रफी साहब का हर सुर एक दुआ बन के उठा और उनकी हर धुन मोहब्बत का पैगाम बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं पहला नगमा हर दिल अजीज सुदर्शन की आवाज।

बेहद खूबसूरत अंदाज सुदर्शन जी का, और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, हुजूर चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। फ्रेंड्स, जिस तरह आपकी महबूबा का नूर कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह रफ़ी जी के किरदार की खुशबू कभी फीकी नहीं हो सकती। तो आइए ले चलती हूँ उनकी लाइफ के कुछ अनमोल किस्सों की तरफ और सुदर्शन फाटक के साथ उनके गीतों की तरफ। रफ़ी जी के परिवार का म्यूजिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका दुनिया का सबसे महान सिंगर में शुमार होना सिर्फ उनके जुनून और हार्डवर्क का सबूत है। जिस तरह सैगल साहब के शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला और म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क। चलिए इतिहास के एक पन्ने में से निकला एक सुकून भरा अगला गीत सुनते हैं, दिल को छूने वाली सुदर्शन की आवाज़ में।

बिल्कुल ऐसे ही तबीयत बहलती थी नन्हे रफी जी की, जब एक फकीर गाते हुए उनके गांव की गली से गुजरता था, जो रफी जी की इंस्पिरेशन थे। और रफी साहब उस फकीर से इतने इंस्पायर्ड थे कि उस फकीर के आने से उनका हर दिन मानो रोशन हो जाता और बहार छा जाती थी। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गीत सुदर्शन की नर्म आवाज में।

सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये सफर सुदर्शन और गुरप्रीत के संग? मुझे पूरा यकीन है कि दिलदार गायक के दिलदार श्रोताओं का दिल भी बड़ा होगा, जैसे रफी साहब का किरदार। क्या आपको पता है कि नए आने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया था रफी जी ने, और सिर्फ एक रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर गीत गाए? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? तो जिनका किरदार एक राजा जैसा हो, उनके लिए ये गीत तो बनता ही है। फ्रॉम अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सुदर्शन, जो वर्चुअल सिंगिंग प्लेटफॉर्म स्टार मेकर की फैमिली BML यानी बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड के कैप्टन यानी राजा हैं। तो चलिए सुनते हैं।

तक है जमाने पे जिस आवाज का जादू, उसके मेरे ऊपर उपकार बड़े थे। कहना है रफी के लिए बड़ा मुश्किल, इंसान बड़े थे या कलाकार बड़े थे, ऐसा कहना था हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना काका और संगीत जगत के मसीहा मोहम्मद रफी की ऐसी जुगलबंदी हुई कि आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए वो गीत गाकर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता है। उस गीत का जादू आज भी बरकरार है, तो सुनते हैं सुदर्शन की जादुई आवाज में वो गीत।

सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो गीत सुने, हर गीत ने हमारे दिल में रफी जी के रंग छोड़े हैं सुदर्शन की आवाज में। अब जो अगला गीत है वो एक लाइवली एंड प्लेफुल सॉन्ग है, नहीं शम्मी जी पर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के एक सौम्य और संजीदा एक्टर नवीन निश्चल पर फिल्माया गीत। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं मस्ती और जोश से भरे अगले गीत का।

0: नशीला।
1: सुदर्शन फाटक की आवाज में ये गीत एक नए रंग में दिखाई दिया। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ती से सरोबार एक और गीत की तरफ।

भर गए ना आप जोश में? ये जोश और उमंग ऐसे ही बरकरार रखी हमारे जोशीले गायक सुदर्शन फाटक ने। और मोहम्मद रफी जी की बात करें तो चाहे जॉनी वॉकर का मजाक मस्ती भरा अंदाज हो, दिलीप कुमार की गहरी और दर्द भरी गजल, अमिताभ बच्चन का पावरफुल परसोना हो या शम्मी कपूर का एनर्जेटिक और फ्लर्टेशियस स्टाइल, रफी साहब की आवाज हर हीरो के लिए एकदम फिट लगती थी। जब उनका गाना सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद ही गा रहे हों। और इसी तरह हमारे आज के कलाकार सुदर्शन फाटक भी हर गीत उसी अंदाज से बखूबी निभा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, तो सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

जैसे रफ़ी जी के रोमांटिक नंबर्स उनके सिग्नेचर बन चुके थे, उसी रोमांटिक इमोशंस को सुना सुदर्शन की रोमांटिक आवाज़ में। सुनते हैं अगला क्लासिक सॉन्ग।

ऐसे तो रफ़ी साहब के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र जी के लिए जट्टियम्मला पगला दीवाना नाच नाच कर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया रफ़ी जी ने, तो धर्मेंद्र ने उनको गले लगा कर कहा, वाह क्या अंदाज में गाया है। तो रफ़ी ने उनसे कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब पर्दे पर लाना तुम्हारा काम है। तो सुनते हैं धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना से कहीं हटकर अगला गीत।

यूं तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे इतना सताते हो तुम? तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फायदा उठाते हो तुम? सुदर्शन की आवाज ने इस गीत को पूरी तरह महसूस करवाया। और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, 100 साल एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं अगला गीत।

0: मेरी हालत को देखकर, पाया तबस्सुम तेरा, दवा उनकी काम कर गई। रफ़ी जी का बेहद खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना सुदर्शन की आवाज़ में। किसी को उसके कद का गुमान न था, वो आसमान था, सर झुका कर बैठा था। रफ़ी जी की सिंगिंग इतनी एफर्टलेस और सोलफुल थी कि लगता ही नहीं था कि कोई गाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सैड सॉन्ग में वो दर्द भर देते जो सीधा दिल को छू जाता, और कॉमेडी सॉन्ग में ऐसी मस्ती कि चेहरे पर हंसी आ जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और रंग सुदर्शन की आवाज में।
1: मारे,

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज के कलाकार हैं सुदर्शन फाटक पुणे से, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। चेहरे पर इसी हंसी को बरकरार रखें, और आज की शाम अपने अंतिम पड़ाव पर है तो थोड़ा और करीब आ जाएं और सुनिए ये गीत।

दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज की शाम का आखिरी नगमा, ये गीत उन्हें हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रखेगा। तो दोस्तों, इस गीत और अपने जज्बात के साथ रफ़ी साहब को एक सच्चे ट्रिब्यूट में महसूस कीजिए। सुदर्शन की आवाज़ और गुरप्रीत यानी मेरे साथ पहली बार, सुनते हैं उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुदर्शन की आवाज़ में।

0: नौशाद साहब के कुछ अल्फाज रफ़ी साहब के लिए। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, यह सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके समक्ष पेश है और ये प्रोग्राम लेके आए हैं यूके से रवि कुमार। रफी साहब के गीतों को खूबसूरत तरीके से आपने पिरोया है, आपने अपने स्वर में गाया है और उन गीतों को हम तक पहुंचाया है। तो हम वेलकम करते हैं रवि कुमार साहब का जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान। और हम क्या दें मिसाल।

आवाज में जो एक्टिंग अदायगी थी रफी साहब के, वही अदायगी रवि कुमार साहब की है। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता जिसे लेके आए हैं रवि कुमार साहब यूके से हमारे साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो पर।

अमानत फिल्म के लिए इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था और आज हमारे साथ गा रहे हैं रवि कुमार साहब। इस गीत का संगीत दिया था रवि ने और गीत था साहिर लुधियानवी का। बेहद खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं रवि कुमार साहब की आवाज़ में। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जी हाँ, जयपुर रेडियो की पहचान बन चुकी है आपकी आवाज़। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।

गीत की अपनी जुबान होती है, गीत की अपनी कहानी होती है, और रवि कुमार ये कहानी कह रहे हैं अपनी जुबानी। आपकी आवाज, आपकी पहचान, अब क्या

इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दू मैं तुम्हारे शबा की। एक खूबसूरत गीत आरती फिल्म से लिया गया है और ऑन स्क्रीन प्रदीप कुमार और मीना कुमारी एक्ट्रेस पे फिल्माया गया था। इस गीत का संगीत दिया था रोशन ने और इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। बेहद खूबसूरत गीत है ये और इस गीत को हम रोमांटिक गीतों में अमर गीत कह सकते हैं। और हमारे आज के जो स्वर हैं रवि कुमार साहब, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस गीत को अपनी आवाज से सजाया और आप तक पहुंचाया। बहुत बधाई, आपकी आवाज आपकी पहचान।

शर्मसार नहीं देखा। इस फिल्म का ये गीत शमी कुमार साहब पर ऑन स्क्रीन फिल्माया गया था और अमिताभ ही साथ में एक्ट्रेस के रूप में था और गीत था साहिर लुधियानवी साहब का और आवाज हमारे इस प्रोग्राम में रही रवि कुमार साहब की। आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी स्पेशल प्रोग्राम और उसको स्वर दे रहे हैं हमारे आज के स्वर रवि कुमार। आपकी आवाज आपकी पहचान।

फिल्म असली नकली का ये गीत देवानंद साहब और साधना एक्ट्रेस पर फिल्माया गया ऑन स्क्रीन। म्यूजिक शंकर जयकिशन साहब का था और गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और अपनी आवाज अपने स्वर में सजाया हमारे लिए यूके से रवि कुमार साहब ने। ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान और रफी साहब का एक बहुत मशहूर गीत है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। आइए सुनते हैं रवि कुमार साहब से ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान

इस गीत को फिल्म महबूब की मेहंदी के लिए रफ़ी साहब ने गाया था। म्यूजिक इस गीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रहा और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, और आपके लिए आज के स्वर में रवि कुमार साहब ने ये गीत आप तक पहुंचाया। आपकी आवाज़, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

जब भी मौसम की बात चलेगी तो लोफर फिल्म का ये गीत कभी भी हमारे जहन से दूर नहीं हो सकता। इस गीत को ऑन स्क्रीन एक्टर धर्मेंद्र साहब और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने।

आपने सुना फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत। ऑन स्क्रीन धर्मेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमारे आज के स्वर रवि कुमार आप तक पहुंचा रहे थे ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जी हाँ, गीत को संगीत से सजाया था एसडी बर्मन साहब ने और इसको ऑन स्क्रीन देवानंद साहब और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। और आप तक इस गीत को पहुंचा रहे थे हमारे आज के स्वर, आज के कलाकार रवि कुमार साहब। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

आज के छोर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। अभी आपने सुना ये गीत जिसे आवाज दे रहे थे रवि कुमार आज के स्वर। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का था और धर्मवीर फिल्म से इस गीत को लिया गया। ऑन स्क्रीन जीनत अमान और धर्मेंद्र पे फिल्माया गया था ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के स्वर प्रोग्राम में रवि कुमार साहब के वो गीत जो रफी साहब ने गाए हैं।

मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ये खूबसूरत गीत आकाशदीप फिल्म से था। इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और आज इसको स्वर दे रहे थे हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, जयपुर रेडियो वर्ल्ड। खूबसूरत गीतों का ये गुलदस्ता लेके आए हैं यूके से रवि कुमार साहब, जयपुर।

0: हसरत जयपुरी साहब का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और ऑन स्क्रीन शमी कपूर साहब और आशा पारिक पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म पगला कहीं का से था और इसे आज स्वर दे रहे थे इस मंच से हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब यूके से। दुआ है हमारी आवाज सुने आपकी दुनिया सारी। रवि कुमार साहब बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं, यूं ही गाते रहें और यूं ही हमारे लिसनर तक अपने गीत पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये संगीतमय सफर यहीं तक, आपकी आवाज आपकी पहचान, बहुत आभार बहुत शुभकामनाएं रवि कुमार साहब यूके से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हे हाय दोस्तों, मेरा नाम है, अब तक तो आप मेरी आवाज पहचान गए होंगे। इतना पुराना और लंबा रिश्ता जो बन गया है आप लोगों के साथ, कोई फेमस सेलिब्रिटी तो नहीं, फिर भी खजाने की कमी नहीं है मेरे पास। अनमोल खजाने लेके आई हूँ अपने आओ झूमे गाए म्यूजिक ग्रुप से, सिर्फ जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान पे। मेरा नाम है रति भार्गव और पास में मेरे जो कोहिनूर हैं, नवरत्न हैं, उनके नाम कुछ यूं हैं: किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, गुलजार और हमारी बॉलीवुड जगत के जगमगाते सितारे जैसे माधुरी, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, शर्मिला टैगोर, जूही चावला, जय

प्रदा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, आशा पारेख, शर्मिला, नीतू वगैरह वगैरह। हमारा आज का ये एपिसोड है बॉलीवुड की चांदनी और लोगों के दिलों पर राज करने वाली हवा हवाई पे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की, जो सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार रह चुकी हैं। श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन और पहली सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का जन्म हुआ था शिवकाशी तमिलनाडु में। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और चाइल्ड एक्टर के तौर पर साल 1967 में तमिलनाडु कंदन करुणे में काम किया था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थी। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों को अपनी एक्टिंग से मनोरंजन किया। तो चलिए दोस्तों, आपको श्रीदेवी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से सुनाते हैं और उनके कुछ बेहतरीन गाने जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो सुनते हैं श्रीदेवी का ये जादू भरा परफॉर्मेंस बिमल और कविता की मधुर आवाज।

चांदी के पर्दे पे जो चांदनी थी, जो बेजान सीन को अपने प्रेजेंस से जिंदा कर देती थी, और जिनकी आंखों में इन्फेक्शस सी चमक थी, एन एक्ट्रेस हु लिटरली ब्रॉट स्क्रीन टू लाइफ, वो लाइफलेस कैसे हो सकती हैं? श्रीदेवी, आपने हमें जादू दिखाया और जादू सिखाया। मेरी आंखों के सामने उभर रहे हैं वो इम्पेक्शियस एक्सप्रेशंस, वो चमकती आंखें, वो दमकते एक्सप्रेशंस, और हम तो उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंट छतरी, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंसेस, श्रीदेवी सच में इस जादू के लिए शुक्रिया। फिल्म लम्हे को 30 साल हो चुके हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तानिया और जगदीश की मधुर आवाज़।

क्या आप जानते हैं दोस्तों, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा अय्यर अयप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। बता दें कि श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 16 सावन से डेब्यू किया, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में से 13 उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। सुनते हैं ये हमारा अगला गाना फिल्म हिम्मत वाला से, बोल इंडिवर के, म्यूजिक दिया बपीदा ने और गाया बेहद खूबसूरती से किशोर दा और लता मंगेशकर ने। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके लिए किशोर और संगीता अपनी सुरीली आवाज़।

श्रीदेवी ने 90s में आई थिंक लड़कियों से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया है ना। हमेशा स्लिम होना, हमेशा खूबसूरत दिखना, एलिगेंट होना, प्रॉपर होना, स्टाइल मारना कोई जरूरी नहीं, ये समझा दिया। बी योर नेचुरल मैड क्रेजी सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। जो मूछे लगा के, आंखें भेंगी करके भी पूरे देश का दिल जीत सकती थी, वो कितनी हेल्दी रोल मॉडल थी, सोच के देखिए। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली थी हवा हवाई, हर उम्र के लोगों की पसंदीदा थी। अगर आप भी तनाव फील कर रहे हो, अपना मूड अच्छा करने के लिए बस ये गाना सुन लीजिए और आपका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। इसे सुनाने आ रही हैं गायत्री और मनीषा आपके लिए।

सिग्नेचर श्रीदेवी इन ऑल हर ग्लोरी, एक ही इंसान एक साथ मैड, इनसेन, सेक्सी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड स्टेलर परफॉर्मर कैसे हो सकता था। एक तरफ ऐसे गानों की मैडनेस सच एज न जाने कहां से आई, या करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, या फिर ऑफ कोर्स हवा हवाए न जाने कितने, तो दूसरी तरफ सेंसुअलिटी जो स्क्रीन पे आग लगा दे, मतलब जाबाज ले लो या मिस्टर इंडिया का दूसरा गाना ले लो एंड मेनी अदर्स, बीच में हम मेस्मराइज्ड। सुनते हैं दोस्तों वो गाना जाबाज मूवी का, हर किसी को नहीं मिलता, श्रीदेवी की स्टेलर परफॉर्मेंस जिसने आग लगा दी थी, मेरी यानी रति और गगन की आवाज में।

हिंदी फिल्मों में समाज को संपूर्ण बनाने की सारी विधा मौजूद है। नायक की खुददारी हो या नायिका का त्याग, या फिर आपसी प्रेम भाव का आचार विचार हो या समाज को एकजुट रखने का संदेश, यह सभी चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नायक और नायिकाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गीत कांटे नहीं कटते दिन ये रात इश्क और हुस्न की इंतहा को जग जाहिर करता है। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज ने इस गीत को मधुरतम बनाया है। गीत आई लव यू के भाव से शुरू होता है और इसी भाव के साथ खत्म भी होता है। आइए सुनते हैं ये गीत प्रेरणा और रेस की आवाज में।

1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी का ये गीत, इसमें श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने पानी में आग लगा दी थी। हुस्न की अदा बारिश के मौसम में इस गीत में काफी सुहावनी बन पड़ी है। गीत संगीत और श्रीदेवी के बेजोड़ नृत्य के गीत को मधुर अंदाज दिया है आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में। गीत काफी मनोहरी बना। इसे सुनते हैं मानवेंद्र और संगीता की सुमधुर आवाज में।

0: आग लगाई।
1: दिल्ली ने किरत आई।
2: मैं आपके साथ रति भार्गव अपने आओ झूमे गायन के कलाकारों के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट में याद कर रहे हैं उन्हें जो कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गईं। हम उन्हें तो मिस करेंगे ही और अभी उन्हें जितनी बेहतरीन फिल्में करनी थी उन्हें भी मिस करेंगे। 80 के दशक में एक और गीत देखने और सुनने को मिला जिसमें हुस्न और इश्क का बेजोड़ संगम था। हमारा अगला गाना हुस्न और इश्क की अदा पर चांदनी मूवी का ये गाना सुनते हैं प्रियंका और गिरीश की मधुर आवाज में।

श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चाल पास, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसे कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में शानदार वापसी की। सुनते हैं हमारा अगला नगमा दो दोस्तों की दास्तान पे, और इसे सुनाने आ रहे हैं मुकेश और मंदार अपनी मधुर आवाज में।

नानी मेरा नाम, जूली और सोलवा सावन जैसी छुटपुट फिल्में करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने वाली श्रीदेवी 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मतवाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी उनको नजर ही नहीं आई। इसके बाद श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज और कर्मा जैसी फिल्म करने के बाद वह 3 साल में ही नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बाद मिस्टर इंडिया, निगाहें से होते हुए करियर उनका अगला टर्निंग पॉइंट था चांदनी। श्रीदेवी को सफेद लिबास में ढली चांदनी देख उस समय हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। श्रीदेवी की ये फिल्म गवाही देती है इस बात की कि आज 30 साल के बाद भी चांदनी की चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना रूही और विश्वजीत की सुमधुर आवाज में।

बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: कौन? मैं?
1: Yes.
0: क्यों?
1: कोई भूल कोई तोहफा तुम कुछ भी साथ नहीं लाते, बड़े बहू समझाऊं तुम्हें?

0: सपनों से सुंदर लग रही थी चांदनी बनकर इस गाने में, याद रहेंगी वो हमें हमेशा। रेस्ट इन पीस श्रीदेवी जी, थैंक्स फॉर द मैजिक। श्रीदेवी के जितने सॉन्ग्स करो कम है, इतने सॉन्ग्स हैं, इतनी बातें हैं, पर ट्रिब्यूट पूरा नहीं लग रहा। भरपूर तब होता है ट्रिब्यूट जब भरपूर जी कर जाए वो जिन्हें हम चाहते। ऐसे ही अचानक से बेवक्त बीच में से जब कोई चला जाए, व्हाट डू यू से, हाउ डू यू रिमेम्बर देम। जिस चेहरे में इतनी जान थी वो अब बेजान है, अभी तक यकीन नहीं होता है। इतनी जिंदा दिल परफॉर्मेंस जो दे गई वो अब खुद जिंदा नहीं है, पर रहेंगी ना हमेशा उसी चांदी के पर्दे पर जिसकी वो चांदनी थी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिलों में भी।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

माँ ललिता जी अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदी वर्जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है, प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर।

0: संजय जी, हम मन विभोर हुए।
1: मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलयालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंदे जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागज से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

बड़ी सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमयी संगीतमयी साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चाचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
0: आज की हमारी सिंगर है दुबई की।

जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम भी हमने यही रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आप सुन रहे हैं राम रेडियो। जी हाँ, स्वतः ही ये नाम मुंह से निकला है और आप तक पहुंचा है। और जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया, जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स ने हमें बहुत ही उत्साह दिया और हर्ष से भरे हुए अपने गीत अपनी आवाज में हमें प्रेषित किए। हम उन सब का आदर करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और सभी के गीत हम इस मंच पर इस प्रोग्राम के तहत रखेंगे, जिसका नाम है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आज की इस संगीत यात्रा की शुरुआत हमने की है दुबई की बहुत ही सुरीली सिंगर संगीता माल्या। कुछ गीतों में आपका साथ देंगे यूके के रवि कुमार। तो शुरू करते हैं ये सुरीली यात्रा का विशेष प्रोग्राम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

हे राम, तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कोई सिंगर बन जाए सहज सौभाग्य है, और ये सहज सौभाग्य जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स को प्राप्त है। राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे सभी सिंगर्स पे, लिस्टर्स पे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वेलकम करते हैं संगीता माल्या का। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

राम स्वनाम है धाम, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम। आइए राम को बार बार प्रणाम।

राम भजन करमन। राम है स्वनाम धाम, राम है स्वनाम धन, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम, राम धाम को प्रणाम। अयोध्या में आए हैं श्री राम, वो राम जो केशव है, जो माधव है, जो अच्युत है और जो सबके दृष्टा है, उस राम को प्रणाम, उस केशव को प्रणाम। अगले भजन में संगीता माल्या अच्युतम केशवम।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का राम रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम पायू जी मैंने राम रतन धन पायू, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दुबई से संगीता माल्या। हे राम, जग में सबसे सांचा तेरा नाम, हे अवध बिहारी पधारो, स्वागत है अभिनंदन है आपका। इस गीतमाला में इसको सफल बनाएं और हमारे सिंगर्स के साथ आप भी गाएं। मैं खोजता रहा अपने आप को, खोजता रहा सच को, लेकिन सच तो केवल केवल और केवल आपका ही नाम है। संगीता माल्या के साथ रवि कुमार।

आप सुन रहे हैं राम रेडियो और राम से कृपालु कौन है? कोई नहीं ना। उसकी दयालुता, उसकी कृपालुता को प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है।

श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये खूबसूरत भजन आपने सुना रवि कुमार और संगीता माचिया की आवाज में। आप सुन रहे हैं राम रेडियो।